0: शरीर में मन मुख्य है। मन में कुत्सित विचारों के पैदा होते ही शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। मन को उपयोगी कार्यों में लगाए रखना स्वास्थ्य प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। नदी की प्रवाहमान धारा की तरह हमारे काम सरल स्वाभाविक रूप से होते रहें तो स्वास्थ्य बहता हुआ आकर स्वयं हमारे चरण धोएगा। रोगी होना शरीर का स्वभाव नहीं है, रुग्णता प्रकृति नहीं विकृति है। रोगी व्यक्ति कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। आध्यात्मिक उन्नति की पहली शर्त शारीरिक स्वास्थ्य है। शरीर की थकान से पहले मनुष्य का मन थक जाता है। शरीर के रोगी होने से पहले मनुष्य का मन रोगी हो जाता है। इसलिए हमें मानसिक क्लांति पर विजय पाने का उद्योग करना चाहिए। जब तक चरित्र में अवगुण रहेंगे आदर्श स्वास्थ्य की आशा व्यर्थ है। कुविचार मानसिक विकार है और चूंकि शरीर मन का अनुयायी है मानसिक विकार शरीर को विकृत कर देते हैं।
1: शुभ प्रभात, नमस्कार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है जिसका प्रसारण किया जा रहा है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज के पहली प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी प्यारे श्रोताओं का मैं आपका रेडियो दोस्त कारगर रिवा आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सन 2024 के अक्टूबर महीने के आज 10 तारीख है और दिन है शनिवार। आज के हमारे पहली प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ती थांगजंग तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ देश और दुनिया के ताजा तरीन खबरें। तो आइए

7:10 पर आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार। 7:15 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम मॉर्निंग इंफोटेनमेंट।

7:35 पर आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार। 7:40 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सदाबहार।

और इन सब के अलावा आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज तथा शिलांग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज आप सुनेंगे 8:30 पर।

0: 8:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर। 9 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। 9:10 पर आप सुनेंगे जनसेवा से देश सेवा का अगला श्रृंखला। 9:45 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। 10:10 पर आप सुनेंगे आपके पसंदीदा रेडियो शो रेडियो ऑन डिमांड। 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। तो प्यारे श्रोताओं, ये था आज के हमारे पहली प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों के रूपरेखा। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देश के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि CJP को पहले भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन पार्टी ने निर्धारित दिशा निर्देशों और दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रस्तावित सभा के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने भी सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े कानूनी प्रावधानों का पालन करने पर जोर दिया है। आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वे प्रतिभागियों को संबंधित नियमों और बिना अनुमति सभा में शामिल होने के परिणामों के बारे में जानकारी दें। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में यातायात के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने कहा है कि आज सुबह 6 बजे से यातायात में परिवर्तन किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। इस बीच सुरक्षा कारणों से कल रात 9 बजे से दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन बंद हैं। इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और

0: حضرت نظامالدین ریلوے اسٹیشنوں پر پہنچنے والی سبھی میل اور ایکسپریس ریل گاڑیاں رد کر دی ہیں۔ निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 7 के आवेदनों की संख्या सीमित कर दी है। अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि के दौरान कोई भी मतदाता अधिकतम 10 आवेदन कर सकता है। वहीं मतदाता सूची के लगातार अद्यतन के दौरान हर महीने अधिकतम 5 आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आयोग ने संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां दर्ज कराने पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है। विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर कथित आरोपों के मुद्दे पर कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों की सेहत, पोषण और सर्वांगीण विकास पर ज्यादा ध्यान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल महिला एवं बाल विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनवाड़ियों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ के सहयोग से नई दिल्ली में आज किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज झारखंड में देवघर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अरकेल। The Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar in the national capital today, citing previous violations of guidelines and public safety concerns. Addressing the media in New Delhi yesterday, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said applications seeking permission to hold protests or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance. Ms. Prasad noted that the CJP had previously been granted permission to hold a protest at the venue but had failed to comply with the prescribed guidelines and the undertakings given by the party.
2: We have received an application from Sarov Das, co-convener of Cockroach Janata Party. The application is regarding an intimation for protest on 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation was considered and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior to the protest which is planned.
1: Ms. Prasad further stated that prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita are currently in force in the area and warned that Delhi police will take appropriate legal action against anyone found violating the law. Meanwhile, security arrangements have been strengthened across the national capital. The Delhi Metro Rail Corporation DMRC has announced that entry and exit facilities at 45 metro stations will remain closed till 6 6 this evening for security reasons. The situation will be reviewed by security agencies and further updates will be issued accordingly. Namo Bharat train services between Saraikala Khan and New Ashok Nagar stations in Delhi will remain suspended till 10 p.m. tonight. Prime Minister Narendra Modi has called for greater focus on the health, nutrition and overall development of adolescent girls. The Prime Minister made the remarks while chairing the valedictory section of the new two-day National Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi yesterday. Mr. Modi emphasized the importance of Jan Bhagidari, people's participation, and called for Anganwadi centers to be developed as centers of community participation. He said families living near Anganwadi centers should be encouraged to contribute on special occasions by sharing nutritious food, toys and other locally relevant items for children. Prime Minister Narendra Modi has stressed the need for young people to continuously upgrade their skills and adapt to emerging technologies amid rapid technological advancements. He made these remarks while interacting with members of Team India who participated in the World Skills Competition Shanghai 2026 at his residence in New Delhi yesterday. Congratulating the participants on representing India on the global stage, Mr. Modi urged them to develop skills in line with the requirements of the international market. The ruling Bharatiya Janata Party, BJP, has swept key by-elections in West Bengal and Assam, while the ruling Tamilaga Vetri Karagam, TVK, has won two assembly by-polls in Tamil Nadu. In Puducherry, the ruling All India NR Congress, AINRC, has retained the Tattanchavadi assembly seat. Meanwhile, in Assam, BJP candidate Devashish Sharma won the Nagaon Lok Sabha by-election, defeating his nearest rival, All India United Democratic Front Chief Badruddin Ajmal, by over 1,42,000 votes. Congress candidate Sibomani Bora finished third. In men's cricket, West Indies defeated India by 6 wickets in the second T20 international in Ranchi last night, levelling the 5-match series to 1-1. Chasing a target of 250 runs, West Indies overhauled the score, posting 250 runs for the loss of 4 wickets in 18.3 overs, winning the match with 9 balls to spare. Captain Shai Hope led from the front with a magnificent 102 of 45 balls, while Sherfain Rutherford's 84 of 37 set the chase alight. And that is the end of this news bulletin.
3: श्रोता अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार. आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर. हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम भक्ति गीत के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका अपना आरजे कारग, लेकर आया हूं श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्मिक सुकून से सजा हुआ आपका अपना कार्यक्रम भक्ति गीत। श्रोताओं, भक्ति वो एहसास है जो मन की बेचैनी को शांत करता है, दिल में विश्वास जगाता है और हमें जीवन के सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। और जब बात हो भगवान श्री राम की, तो मन में अपने आप ही मर्यादा, सत्य, त्याग और कर्तव्य की भावना जाग उठती है। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में वचन, कर्तव्य और रिश्तों की मर्यादा को सर्वोच्च स्थान दिया। आज के इस पावन भक्ति सफर में हम सुनने जा रहे हैं कुछ सुंदर राम भजन भक्ति संगीत के लोकप्रिय और मधुर स्वर सुरेश वादेकर जी की भावपूर्ण आवाज में। तो आइए श्रोताओं, कुछ पल के लिए दुनिया की भागदौड़ के पीछे छोड़ दें, मन को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करें और भक्ति के इन मधुर सुरों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें।

श्रोता, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम भक्ति गीत। श्रोताओं, भगवान श्री राम का नाम लेते ही मन में सत्य, मर्यादा और आदर्श जीवन की तस्वीर उभर आती है। उन्होंने हमें सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहा जाता है, राम नाम में ऐसी शक्ति है जो अशांत मन को भी शांति दे सकती है। जब दिल परेशान हो, जब रास्ते मुश्किल लगे, तो कुछ पल प्रभु श्री राम का स्मरण कीजिए। मन को अपने आप एक सहारा महसूस होगा। श्री राम ने पुत्र के रूप में कर्तव्य निभाया, भाई के रूप में प्रेम निभाया, पति के रूप में जिम्मेदारी निभाई और राजा के रूप में प्रजा के प्रति अपना धर्म निभाया। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है।

0: श्रोताओं, इसी के साथ आज के भक्ति गीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का समाचार।
1: से आकाशवाणी ईटानगर तनकदम रोकम जाबे पुरा पोल ग लोर नन अरसो गन नुक तलुरु नम गलो मेन कि नग मेन जिदु मेन कि मेन जिना से कोई जिरदो मरो साउथ अफ्रीका आलो एडवोकेट नविटन नवी फिलेने नविल प्राइस पीस प्राइस एम बुक प्रमोटिंग पीस एंड इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट नम अबालोक जितो बुम ने 1941 लो दुर्बन तमिलनाडु लो बुम आओ बतो बु तमिलनाडु फैमिली लोक बु साउथ अफ्रीका law law for fashion ba rul rato ok bum un human chief ok international court of justice ba chin bu rul rato ok bu south africa court lok rito yaru ba black woman judge ba rito maro ufia lok deputy commissioner office lok conference hall lo dc mamu hage bu dog sidukula narcotic drug aba sok lagaba monthly ba कबा दोन में दोगतो सोक रिपोर्ट लोक कान में 2025 अन्य लोक ड्रग अतमाव तीन दोने गदम ने निदुम चामनी गोला केंगा गोबे पतगला तो ओके इजा 2026 अन्य सोक इजा लोब कान में अचम केंगा गोला निदुम कान गोबे पतकम लादा तो अम्ला काल दोदु कुला डीसीब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ओके एमने योब रिला चिंदोनु ड्रग लोक डी एडिक्शन treatment facilities sigim tinchiruba rigurut laka amla mentu ok education health ok women and child development department amchin tinchiruba ndunu omem ennam kanam drug at sigim yob rilachin ritum nam avam tinchiba rulajka amla kaba dukum sago disibu tinchi jaga chakka maro siang district bolenglo new labor code ok child labor aba lagaba grip camp lo awareness camp go rigaka sogo awareness ridaglo labor lok law labor law worker rights child labor prevention legal remedies ok social security benefit aba am the stakeholder ok public gadam awareness am jidula lodum gaka kenlo upper seven city डिप्यूटी कमिश्नर तासो गुम्बो बु जारिंग सर्कल ओके कब कब सोकुम्बो ओके सोक पब्लिक लगा बद डेवलपमेंट अगर गरनम नरुंग कागो तागो हम रिल रदूला दिसे बु स्कूल का दम चिन इंगोला रदू कुला आदो आदो ने स्कूल रिमोट एरिया लोके स्कूल का दिसे के लोके आओ पोरी ने का दिसे कम चिन पोरी पोता हम दोनों अल रूब रुग मेंगम रू तोला का अमला दीन ची जाव मेंगो इंदूला कागो रीन तो तन गद मेंग के नाम हम दोनों आकाशवाणी ईटानगर लोक तपादू पासिगत मोकलो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन अमेन लोक सोसाइटी फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चरल अमंग्स यूथ अमेन अमेन लोक लोदुम गतु सोक लोदुम गनम सिगे वर्क स्टेट सोक अदक अदक डिस्ट्रिक्ट लोक अदो अदो ने दोलू ओक बोर्डर दोको लोक पोरी ना आओ गद्दम दे इंडियन म्यूजिकल ओक डांस एम अलुब चेन्नम लगाब सकना बाम लोदुम गतु सिगम लोदुम गनम सिगम स्टेट चनेकिया वेसित एम डेप्यूटी कमिश्नर ओक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लेकेंदुला रिगदु सिग नॉन फॉरफिट वॉलंटियर यूथ मोमेंट इंडिया सोक स्टूडेंट एम ने traditional indian culture classical music classical dance folk art yoga meditation ok craft narusigam alba pormot nam lagaba lodunga namgo maro seva sankal utsal amne district level traditional sport competition am da for jo lok rejo mini outdoor stadium lo rika सकने लोदुम नाम से दापो रिजो लोक नी ओक सोक गिचा सिचा ने निजरिया में गदम ने ट्रेडिशनल स्पोर्ट इंडिजेनियस कल्चर ओक यूथ पार्टिसिपेशन एम अल रूब रिग दुकुला आयग अमराम अल्ब हेल्डी ब अनाम लगाब लोदुम गनाम को अमला मेंकेन जितु सगम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर ऑफिस ओके आईसीआर अपर सुबनसिरी दापोरिजो ओके डिस्ट्रिक्ट लोके एडमिनिस्ट्रेशन लेकिन दुला रिगेबा अमला मेंबर जीतो मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर येलो अलर्ट वेस्ट कमिंग ईस्ट कमिंग लोअर सुबनसिरी पपुमपाड़े सीओमी तिरप ओके लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट लो कातम दुला निदो दोगुम दोरक मोदे दो एकलगाब अल्व एनसिला दूत लका अमला मेलतो का सिरगा गालो मेंकिनागुम अगा पानगा देखा जो सिरोग का लॉजिक में को मिन सको मोगा दो जी के गोगी रोग नाम को तत्यारुब तलाजु
0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम सुबह सवेरे के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुबह सवेरे में। दोस्तों कहते हैं कि अगर सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन खुशनुमा बन जाता है, और जब सुबह की शुरुआत हो योग से, व्यायाम से और सेहत से जुड़ी अच्छी बातों से तो बात ही कुछ और होती है। तो चलिए अपनी सुबह को बनाते हैं और भी खूबसूरत, क्योंकि हाजिर है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुबह सवेरे। तो दोस्तों उठिए, थोड़ा मुस्कुराइए, अपने शरीर को प्यार दीजिए और याद रखिए सेहत सबसे बड़ा धन है, और अच्छी सेहत की शुरुआत होती है छोटी छोटी अच्छी आदतों से। तो दोस्तों आज की योग सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं सुबह उठते ही शरीर में अकड़न। जब अकड़न हो तो आसान योग क्रियाएं से हम इसे बच सकते हैं, आज हम इसके विषय में जानेंगे। आज के हमारे सुबह सवेरे के योग सेगमेंट में हम जानेंगे पांच आसान योग और स्ट्रेचिंग क्रियाएं जिन्हें आप सुबह अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। इनका उद्देश्य शरीर को धीरे धीरे गतिशील बनाना, लचीलापन बनाए रखने में मदद करना और दिन की शुरुआत आराम से करना है। और दोस्तों एक जरूरी बात, सुबह की हल्की अकड़न कई कारणों से हो सकती है। अगर अकड़न लगातार बनी रहती है, बहुत दर्द होता है, जोर सूझ जाते हैं या समस्या बार बार होती है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गर्दन की हल्की मूवमेंट यानी नेक मोबिलिटी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गर्दन से, क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करने के कारण कई लोगों की गर्दन और उसके आसपास की मांसपेशियों में तनाव महसूस हो सकता है। इसे करने का तरीका है, बिस्तर से उठकर आराम से कुर्सी पर बैठ जाएं या सीधे खड़े हो जाएं। अपनी पीठ को आरामदायक स्थिति में सीधा रखें और कंधों को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे सिर को दाएं और घुमाएं जितना आराम से घूम सके, फिर वापस बीच में आए और बाएं और घुमाएं। इसके बाद तुद्दी को हल्का सा नीचे लाएं और सिर को सामान्य स्थिति में ले आएं। हर दिशा में 3 से 5 बार धीरे धीरे अभ्यास करें। इसके फायदे हैं, गर्दन की सामान्य मूवमेंट बनाए रखने में मदद मिल सकती है, लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहने से होने वाली जकड़न में राहत मिल सकती है, गर्दन और कंधों को धीरे धीरे सक्रिय करने में मदद मिलती है।

अगला है मार्जरी बिटलासन। दोस्तों अब चलते हैं रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन की ओर। यह अभ्यास पीठ को धीरे धीरे हिलाने और उसकी सहज गति बनाए रखने के लिए उपयोगी हो सकता है। इसे करने का तरीका है, योगा मैट पर हाथों और घुटनों के सहारे आ जाए, दोनों हथेलियों कंधों के नीचे और घुटने कुल्हों के नीचे रखें। सांस लेते हुए पेट को हल्का नीचे जाने दें और छाती को आराम से आगे की ओर खोले। गर्दन को बहुत ज्यादा पीछे ना ले आए। सांस छोड़ते हुए पीठ को धीरे धीरे ऊपर गोल करें और टुड्डी को हल्का अंदर की ओर लाए। शुरुआत में 5 से 10 बार दोहराए और सांस को सहज रखें। इसके फायदे हैं, रीढ़ की हड्डी की गति और लचीलापन को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। पीठ की हल्की अकड़न कम करने में सहायक हो सकता है। सांस और शरीर की गति के बीच तालमेल बनाने में मदद मिलती है।

अगला है तारासन, शरीर को सीधा और सक्रिय करने का अभ्यास। अब दोस्तों बारी है तारासन की। यह एक सरल खड़े होकर किया जाने वाला योगासन है जिसमें शरीर की मुद्रा और संतुलन पर ध्यान दिया जाता है। इसे करने का तरीका है, पैरों को आरामदायक दूरी पर बनाए रखकर सीधे खड़े हो जाएं। जरूरत हो तो दीवार या मजबूत कुर्सी का सहारा लें। दोनों पैरों पर शरीर का वजन बराबर रखने की कोशिश करें। घुटनों को लॉक ना करें, कंधों को ढीला रखें और सामने की ओर देखें। सहज सांस लेते हुए सिर को ऊपर की ओर लंबा करने की कल्पना करें। चाहे तो आराम से दोनों हाथ ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन कंधों में दर्द हो तो हाथ ऊपर ना उठाएं। 10 से 20 सेकंड सामान्य सांस लेते हुए रुकिए और फिर आराम करें। इसे 2 से 3 बार कर सकते हैं। इसके फायदे हैं, शरीर की मुद्रा के प्रति जागरूकता बढ़ती है, संतुलन और सीधे खड़े रहने की आदत पर काम किया जा सकता है। सुबह शरीर को सक्रिय करने का एक सरल शुरुआत मिलती है।

अगला है शोल्डर रोल्स, कंधों की जकड़न के लिए। दोस्तों कई बार सुबह उठते ही ऐसा लगता है कि कंधे बारी है या गर्दन के पास खिंचाव हो रहा है। ऐसे में कंधों की हल्की मूवमेंट मददगार हो सकती है। इसे करने का तरीका है सीधे बैठे या खड़े हो, दोनों कंधों को धीरे धीरे कानों की तरफ उठाएं, फिर कंधों को आराम से पीछे और नीचे ले जाएं। इस गति को 5 से 10 बार दोहराएं। इसके बाद चाहे तो कंधों को आगे की ओर भी धीरे घुमा सकते हैं। इसके फायदे हैं, कंधों की हल्की जकड़न में राहत मिल सकती है, लंबे समय तक बैठने के कारण होने वाले तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है, कंधों की सामान्य गति बनाए रखने में भी सहायक मिलता है।

अगला है टखनों और पैरों की हल्की मूवमेंट। सुबह उठने के बाद सिर्फ कमर और कंधों पर ही नहीं, पैरों पर भी ध्यान देना जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं। इसे करने का तरीका है, मजबूत कुर्सी पर बैठ जाए और दोनों पैर जमीन पर रखें। एक पैर को थोड़ा आगे उठाएं, यदि आरामदायक हो। टखने को धीरे धीरे ऊपर नीचे करें, फिर पैर के पंजे से छोटे छोटे गोल घुमा बनाए, हर पैर से 5 से 10 बार करें, फिर दोनों पैर जमीन पर रखें। इसके फायदे हैं, टखने की सामान्य गति बनाए रखने में मदद मिल सकती है, पैरों की गतिविधियों के लिए तैयार करने में सहायता मिलती है, चलने फिरने से पहले एक सरल वार्म अप मिलता है। यदि पैर में अचानक सूजन, ललिमा, गर्माहट या तेज दर्द हो तो इसे सामान्य अकड़न मानकर नजरअंदाज ना करें। तो दोस्तों, आज के योग सेगमेंट में हमने सीखा कि सुबह की हल्की अकड़न के लिए गर्दन की सहज मूवमेंट, कैट काउ स्ट्रेच, तारासन, शोल्डर रोल्स और टखनों की हल्की एक्सरसाइज किस तरह हमारी सुबह की दिनचर्या का हिस्सा बन सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, योग का मतलब शरीर के साथ जबरदस्ती करना नहीं, बल्कि अपने शरीर को समझाना है। जितना शरीर सहजता से कर सके उतना ही कीजिए, धीरे धीरे अभ्यास कीजिए और दर्द को नजरअंदाज मत कीजिए। और हाँ दोस्तों, सुबह उठते ही तुरंत कठिन व्यायाम शुरू करने के बजाय शरीर को थोड़ा समय दीजिए। नियमित हल्की गतिविधि, संतुलित खानपान और अच्छी नींद, ये सब मिलकर स्वस्थ जीवन शैली बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए, आज खुद से एक छोटा सा वादा करते हैं, हर दिन अपने शरीर के लिए कुछ मिनट जरूर निकालेंगे। इसी सकारात्मक संदेश के साथ आज के योग सेमेंट को यही विराम देते हैं। आप सुन रहे हैं सुबह सवेरे अरुण FM 103.1 MHz पर। चलिए, कार्यक्रम में सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुबह सवेरे, जहां हर सुबह हम बात करते हैं योग की, व्यायाम की और सेहत से जुड़ी ऐसी जरूरी जानकारियां कि जो आपकी जिंदगी को स्वस्थ और बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, सुबह सुबह एक सवाल आपसे, क्या आप रोज नाश्ता करते हैं या फिर कभी जल्दी के चक्कर में नाश्ता छोड़कर सीधे अपने काम पर निकल जाते हैं? कई लोग सोचते हैं कि नाश्ता छोड़ देने से वजन कम होता है, तो कुछ लोग सिर्फ एक कप चाय पीकर अपनी सुबह की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन क्या सिर्फ चाय पीना पर्याप्त है? नाश्ते में क्या खाना चाहिए और क्या सचमुच नाश्ता छोड़ना हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है? तो चलिए आज की सेहत की बात में इन्हीं सवालों के जवाब आसान भाषा में जानते हैं। नाश्ता क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों, रात के भोजन और सुबह के बीच कई घंटों का अंतर होता है। सुबह का संतुलित भोजन शरीर को ऊर्जा देने, भूख को नियंत्रित करने और दिन भर के खान पान को व्यवस्थित रखने में मदद कर सकता है। अगर आप सुबह स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाते हैं तो पौष्टिक नाश्ता आपकी दिनचर्या का एक उपयोगी हिस्सा हो सकता है। कुछ लोगों को नाश्ता करने से सुबह की भूख और ऊर्जा बेहतर महसूस होती है। वही हर व्यक्ति की भूख, कामकाज और स्वास्थ्य की जरूरतें अलग अलग होती हैं, इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि नाश्ता छोड़ना हर व्यक्ति के लिए हमेशा नुकसान

आरामदायक होता है। अगला है, क्या सिर्फ चाय और बिस्कुट पर्याप्त हैं? दोस्तों, सुबह की चाय बहुत लोगों की पसंद होती है, चाय पीने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन सिर्फ चाय और बिस्कुट पर निर्भर रहने से आपको पर्याप्त प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज नहीं मिल पाते। इसलिए नाश्ते में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल कीजिए जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ जरूरी पोषक तत्व भी दे, जैसे कि सब्जियों वाला पोहा या उपमा, दलिया या ओट्स, साथ में दूध या दही, मूंग दाल का छीला या बेसन का छीला, इडली या सांभर, अंडा, साबुत अनाज की रोटी और फल। याद रखिए, स्वस्थ नाश्ता महंगा होना जरूरी नहीं है। हमारे घर में उपलब्ध साधारण और मौसमी खाद्य पदार्थों से भी अच्छा नाश्ता तैयार किया जा सकता है। नाश्ते में प्रोटीन क्यों जरूरी है? दोस्तों, हमारे शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है। प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ पेट को अधिक समय तक भरा हुआ महसूस कराने में भी मदद करते हैं। इसलिए अपने नाश्ते में दूध, दही, अंडे, दाल, चुना, मूंग या अन्य उपयुक्त प्रोटीन स्रोत शामिल करने की कोशिश कीजिए। क्या नाश्ता छोड़ने से वजन कम होता है? ये एक बहुत आम सवाल है। दोस्तों, केवल नाश्ता छोड़ देने से वजन कम होने की गारंटी नहीं है। वजन में बदलाव पूरे दिन के भोजन, कुल कैलोरी सेवन, शारीरिक गतिविधि, नींद और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को नियमित नाश्ता करने से भूख नियंत्रित रखने में मदद मिलती है, जबकि कुछ लोग अपनी दिनचर्या के अनुसार बाद में पहला भोजन करते हैं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो भोजन की गुणवत्ता, मात्रा, नियमित शारीरिक गतिविधि और लंबे समय तक अपनाए जा सकने वाले स्वस्थ आदतों पर ध्यान कीजिए। यदि आपको मधुमेह है, आप ऐसी दवाई लेते हैं जिससे रक्त सार को कम हो सकती है, या डॉक्टर ने भोजन का निश्चित समय बताया है, तो बिना सलाह के भोजन छोड़ने की आदत ना अपनाएं। सुबह की शुरुआत के लिए तीन आसान सुझाव। दोस्तों, अब जान लेते हैं कुछ आसान टिप्स। पहला है, सुबह ऐसा नाश्ता चुनिए जिसमें साबुत अनाज, फल या सब्जियां और प्रोटीन का कोई स्रोत शामिल हो। दूसरा, सिर्फ चाय या मीठे पिये पदार्थ पर निर्भर रहने के बजाय पर्याप्त पौष्टिक भोजन लीजिए। तीसरा, अपने शरीर की भूख और जरूरत को समझिए। बहुत ज्यादा भूख रहने के बाद एक साथ जरूरत से ज्यादा खाने से बचे और दिन भर संतुलित भोजन की आदत बनाए रखिए। और हाँ, सुबह थोड़ी पैदल सैर या अपनी क्षमता के अनुसार हल्का व्यायाम भी आपके स्वस्थ दिनचर्या का अच्छा हिस्सा हो सकता है। तो दोस्तों, आज की सेहत की बात से हमने जाना कि पौष्टिक नाश्ता शरीर को जरूरी पोषक देने में मदद कर सकते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने का आधार सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि पूरे दिन का संतुलित खानपान और अच्छी जीवन शैली है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हेल्थ सेगमेंट यही समाप्त होता है। आइए कार्यक्रम में सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत, राहत फतेह अली खान और सुनिधि चौहान की आवाजों में।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज की सुबह सवेरे कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार।

0: अभी आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का कार्यक्रम. ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है. आइए अब सुनते हैं आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम.
1: सी आकाशवाणी ईटानगर से तानुपुला विषय में मलिम बोली सरो नुनु कप्योपा तानुपुमी तपाकिंडो सरो पुमी लुकोजिन से दाइन नोबिंग Indian origin South African jurist Navinetam Navi Pillemi Moka Peace La International Lohoka Ano Ayapaka Kamnila Mukohopa Nobel Peace Prize 2026 Ni Bulyo Bila Mutu Ho Navi Pillemi 1941 Anyaho Tamil Anabahu Darwan Ho Ngabula Mutu Homo UN Human Rights Ka Chipa Ho International Court of Justice Ka Judge Pata Dula Mutu Homo Miu atu atami ain tongepa sambagyaba sekindupa human rights equality la justice ka digo ho ano uropa limbo pagla mun kone hela lukola mudo papumpare deputy commissioner mamu hage bujo pulo pulo hoka encode committee meeting dukung magnemi yupya ho magla mute hosaka review meeting dukung musko ho desamana drag dintan atami ka Dutumutu Sakuhoka, Limbopan, Anti Drug Awareness Major Lan Atami, Takasala Mutu. Ho Inekun, Anyan 2025 Ho, Nikahela, Midinkwa Hemi, Eresmala, Latula Mutu Hela Ho, 2026 Anyanka, Bun Puloka, Lopinyan, Alojepa, Midinkwa Mu Atami, Drug Digo Ho, Latula Mutu Hela, Lukola Mudo. Ho DC. Medical district medical officers me pulovanye ka myodu loepa hospital ata ho addiction treatment facility me dodopa mulimbidopa lola mutte ho student la nyumya pa atampa awareness program mulami mugdopa tere lola mutte IIM Shillong satellite center tawang he Indian Himalayan peatlands conserving nature's carbon stores for सेपर प्लानेट हेला वर्कशॉप कोने मी बुजो मगला मते होसका वर्कशॉप मी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ला नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज नी मिंसला मगला मते नीति लेवर्स कोड ला चाइल्ड लेवर का दिगो मी लुको गला अवेयरनेस कैंप कोने मी सियांग डिस्ट्रिक्ट का ग्रिप कैंप बोलेन हो बुजो मगला मते होसका प्रोग्राम मी मुको हो लेबर राइट्स ला चाइल्ड लेबर मिका दितिमुतिन सको हो वर्कर्स ला स्टेक होल्डर्स अतामी लुको गला मुते अपर सुबनसरी का डिप्टी कमिश्नर तसोगाम्बो जारिंग सर्कल ला अरुआरे लिंबा अतांहो का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ला पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मला दोनों अतामी ककादुपा तुर एला कातेला मुते हसका तुर एला ककाताला मुको हो लिंबोसा हो बूथ म्यू Atampaka network connectivity la khube public facility donodoma atami kakala mutu homo himi atanka ayapur likopa uskul ode jitami ano ayapa pubisako ho limopadopa lula mutu district level traditional sport competition mi daporijoka rijo mini outdoor stadium ho bujo mugla mutu hosika program mi सेवा संकल्प उत्सव लका मग्न का लिंबो हो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिस ला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नी महिला इंडिजिनियस स्पोर्ट कल्चर हेरिटेज यूथ पार्टिसिपेशन ला हेल्थी कंपटीशन मी दो किंदो पा मगला मुते सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग्स यूथ हला का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन सो को लिंबो हो अरुणाचल का यूथ अतामी क्लासिकल म्यूजिक मी चिन्याकिन दुपा अरुणाचल का मलांजा डिस्ट्रिक्ट का पोंसा पोंसा लिंबा आता ला बॉर्डर एरिया आता हो इला लुको गला मुन्याते होस का प्रोग्राम मी स्टेट कोऑर्डिनेटर चाइनिका वासित हे डिप्टी कमिश्नर्स आताला स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आगे हो मुइला मगला मते Meteorological Center Itanagar Dali Hok West Kaming East Kaming Lower Subansiri Papumpare Si Yomi Tirap ला लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का ताचेलो इन गंदासको आता हो अन ओरोपा मुदो होला मने दो हला येलो अलर्ट वार्निंग मी बिकोला मुदो सरोका पुइलु कसन हम कने सी आकाशवाणी इटानगर सिसि बुशायमी मुलिमबुली कप्योपा हागे तदेका ओन्यांग का ओन्याला का बुस्नेमी तपाकिंदो
2: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आपातानी श्रोताओं का समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम मॉर्निंग इंफोटेनमेंट के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
3: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart powered tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
4: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: नई सुबह की ताजगी, सुनहरी किरणों और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप सभी का स्वागत है अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम मॉर्निंग इंफोटेनमेंट। दोस्तों, हर सुबह अपने साथ लेकर आती है नई उम्मीदें, नए अवसर और नई जानकारियां। इसलिए हम भी हर दिन की तरह आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की ताजा और भरोसेमंद खबरें, अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय दैनिक समाचार के और दिन भर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां। आइए सबसे पहले देखते हैं आज के ताजा राष्ट्रीय खबरों पर। दिल्ली में आज प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी। दिल्ली में आज कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन के सामने चुनौती है कि सुरक्षा बनाए रखने के साथ आम लोगों की आवाजाही भी प्रभावित ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने परिवहन पर व्यापक पाबंदियों को लेकर चिंता जताई और आवश्यक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जारी रखने पर जोर दिया। दिल्ली में कई रेल सेवाएं प्रभावित। प्रदर्शन के मद्देनजर नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों से जुड़ी कई रेल सेवाओं को रद्द या प्रभावित किए जाने की सूचना है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के उपचुनाव नतीजों पर राजनीतिक चर्चा। हाल ही में

सिद्ध विधानसभा उपचुनाव परिणामों ने क्षेत्रीय राजनीति में नई चर्चा छोड़ दी है। तमिलनाडु में विजय के पार्टी टीवीके को मिली सफलता को उनकी सरकार के लिए राजनीतिक समर्थन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी उपचुनाव परिणामों के बाद विभिन्न दल अपनी अपनी जीत और राजनीतिक प्रभाव को आकलन कर रही है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम को लेकर खबर। उत्तर प्रदेश के नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे रखने के प्रस्ताव की खबर सामने आई है। यह घटनाक्रम हवाई अड्डे की पहचान और उसके नामकरण को लेकर चर्चा में है। मध्य प्रदेश में आदिवासी बच्चों की मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। मध्य प्रदेश में 32 आदिवासी बच्चों की मौत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। कर्नाटक के में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल की बड़ी खेप जब्त। कर्नाटक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले सब्सिडी वाले चावल के लगभग 565 टन खेप जब्त किए जाने की खबर है। ये कार्रवाई सरकारी का ध्यान के वितरण और उसके संभावित दुरुपयोग को लेकर निगरानी के महत्व को सामने लाने की है। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। नोबेल शांति पुरस्कार 2026 दक्षिण अफ्रीका की नेवी पिल्ले को। इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के न्यायविद नेवी पिल्ले को अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों की रक्षा में उनके लंबे योगदान के लिए दिया गया है। वही संयुक्त राष्ट्र के पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं में न्यायाधीश रह चुके हैं। यह सम्मान ऐसे समय आया है जब दुनिया में मानवाधिकार युद्ध अपराधों की जवाबदेही और अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था को लेकर बहस तेज है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिकी प्रशासन ने शुक्रवार 9 अक्टूबर को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। पनामा के पास 6.6 तीव्रता का भूकंप, प्रशांत क्षेत्र में सुनामी की आशंका। यूक्रेन का रूस के मिसाइल उत्पाद केंद्रों पर हमले का दावा। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी सेना ने रूस में मिसाइल उत्पादन से जुड़े 3 ठिकानों पर हमला किया है। ट्रंप का दावा, रूस वैश्विक बाजार के लिए डीजल जारी करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वैश्विक बाजार और अमेरिका के लिए बड़ी मात्रा में डीजल उपलब्ध कराने पर सहमत हुए हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तेल टैंकर पर हमले की खबर। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निशाना बनाया। तो दोस्तों, आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बस इतना ही। चलिए रुक करते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित अरुणाचल टाइम्स अखबार के मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। गवर्नमेंट इन्वोक्स अपुआपा ओवर एसयूएमपी प्रोटेस्ट फॉर डिटेन्ड। अपर सियांग जिले के गेकू इलाके की 4 निवासी जिनके लापता होने की खबर थी, उन्होंने प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट स्टडीज का विरोध करने के आरोप में अरुणाचल प्रदेश गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया। 72nd स्टेट लेवल वाइल्ड लाइफ वीक्स कंक्लूड्स। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने शुक्रवार को यह स्टेट बैंकेट हॉल में एक कार्यक्रम के साथ 72वें राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह के सप्ताह भर चलने वाले समारोह का समापन किया। प्रोक्स अंडर सेवा संकल्प उत्सव हेल्ड। खेल और युवा मामलों के विभाग ने शुक्रवार को नामसाई में नमो सेवा अनकही कहानियां नाम का एक नुक्कड़ नाटक आयोजित किया। यह आयोजन सेवा संकल्प उत्सव का हिस्सा था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के जनसेवा के उपलक्ष्य में मनाया गया था। डीसी कॉल्स फॉर सस्टेन रिडक्शन इन ड्रग ऑफेंसेस। पापुमपारे के डिप्टी कमिश्नर मामू हागे ने ड्रग्स से जुड़े अपराधों को प्रभावी रोकथाम, जागरूकता और आपसी तालमेल वाली कार्रवाई के जरिए लगातार कम करने पर जोर दिया है। मोंट लॉन्ग वंदे मातरम सेलिब्रेशन कंक्लूड्स एट अपू। वेस्ट सियांग जिले में अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी

सिटी में वंदे मातरम एट द रेट 150 का महीने भर चलने वाला जश्न गुरुवार को एक राष्ट्रीय सेमिनार के साथ संपन्न हुआ, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से 95 पेपर प्रेजेंटेशन किए गए। वर्कशॉप ऑन हिमालयन फिटलैंड्स हेल्ड इन तवांग शुक्रवार को आईआईएम शिलोंग के सैटेलाइट सेंटर में इंडियन हिमालयन फिटलैंड सुरक्षित ग्रह के लिए प्रकृति के कार्बन भंडार का संरक्षण विषय पर एक वर्कशॉप आयोजित की गई। द रोल ऑफ फैमिलीज इन सपोर्टिंग यूथ मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेंथनिंग एजुकेशनल इंटरवेंशन। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम अनुभवों को सुनना, असली आवाजें, असली बदलाव। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे लोगों के अनुभवों को समझने और यह सुनिश्चित करने पर जोर देती है कि उन्हें मिलने वाली मदद और देखभाल उनके अपने नजरिए के आधार पर तय हो। ये बात खासकर बच्चों और युवाओं के लिए अहम है, क्योंकि उनकी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को अक्सर उनके आसपास के बड़ों के नजरियों से ही समझा और उन पर ध्यान दिया जाता है। अवेयरनेस कैंप ऑन न्यू लेबर कोड्स चाइल्ड लेबर हेल्थ। सियांग जिले के ग्रेप कैंप में शुक्रवार को नए लेबर कोड और बाल मजदूरी पर एक जागरूकता कैंप लगाया गया। इसका मकसद मजदूरों और दूसरे संबंधित लोगों को लेबर कानूनों, मजदूरों के अधिकारों, बाल मजदूरी की रोकथाम, कानूनी उपायों और सामाजिक सुरक्षा के फायदों के बारे में जागरूक करना था। तो दोस्तों, आज के न्यूज सेगमेंट में बस इतना ही। चलिए कार्यक्रम के में सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत लता मंगेशकर और एम जी श्री कुमार के आवाजों में, फिल्म दिल से।

श्रोता इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का मॉर्निंग एंटरटेनमेंट कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, आपसे थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार।

0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। दोस्तों हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम सदाबहार के साथ इससे छोटी सी अंतराल के बाद।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz और मैं हूं आपका अपना आरजे कर्ग, अगले कुछ पलों तक आपका साथी बनकर कार्यक्रम सदाबहार में। दोस्तों हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, अगर उस सुबह की शुरुआत हो ताजा मौसम की जानकारी और मधुर संगीत के साथ तो पूरा दिन और भी खूबसूरत बन जाता है।

तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के मौसम का बिल्कुल ताजा हाल। दोस्तों आज ईटानगर में सुबह के समय आसमान में बादल छाए हुए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार आज अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम करीब 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम सामान्यता बादलों से घिरा रह सकता है। दोस्तों आज यानी 10 अक्टूबर शनिवार को ईटानगर में सुबह के समय आसमान में बादल छाए हुए हैं। दोपहर तक का मौसम, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तापमान में बढ़ोतरी होगी। दोपहर में पारा 30 से 31 डिग्री तक पहुंच सकता है। बादल बने रहने के कारण धूप बीच बीच में निकल सकती है, लेकिन आसमान साफ रहने की गारंटी नहीं है। आज के आधिकारिक पूर्व अनुमान में मौसम सामान्यतः बादलों से घिरा रहने की बात कही गई है। राज्य के लिए आज IMD की ओर से कोई विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि स्थानीय स्तर पर मौसम बदल सकता है, इसलिए बारिश की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। शाम के समय तापमान धीरे धीरे कम होगा। रात में मौसम अपेक्षाकृत आरामदायक रह सकता है और बादल बने रहने की संभावना है। तो दोस्तों आज के मौसम की जानकारी में बस इतना ही। चलिए सदाबहार कार्यक्रम का आगाज करते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत फिल्म जिंक से हरिहरन और साधना सरगम की आवाजों में।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सदाबहार। आइए कार्यक्रम में एक और सदाबहार गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के आवाजों में फिल्म तोहफा से।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का सदाबहार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज, तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद किया गया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल। अमेरिका ने वैश्विक बाजार में रूसी डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में अगले वर्ष अप्रैल तक ढील दी। ये फैसला ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच लिया गया। खेलों में पुतुल सोनवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को मजबूती से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन

0: दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन न करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर आज प्रवेश और निकास बंद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है।
3: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन है, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
2: वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुर स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंबर्स अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है।
2: हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अप्रोक्सीमेटली 60% अधिक है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव तथा रिटर्निंग अधिकारी अजित वर्मा ने इसकी पुष्टि की।
3: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य और देश के विकास में योगदान देंगे। समाजवादी पार्टी के 10वीं सीट के लिए तीसरा उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद ही ये तय हो गया था कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों का

0: कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद इस्तीफा देने के कारण उनकी राज्यसभा सीट भी खाली हो गई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में दो विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा विट्री कशगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टांचावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। श्री मोदी ने विजयी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी है और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प और जनसेवा के मंत्र के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि किस तरह ये दृष्टिकोण धरातल पर साकार हो रहा है। इसी कड़ी में बात होगी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को समर्पित संग्रहालयों और गौरव दिवस की।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। विजन के तहत रांची की पुरानी केंद्रीय जेल में 142 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ने देश में एक नई चेतना जगाई है। आदिवासियों के आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनजातीय समाज के योगदान के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है।
3: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
2: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता एक अनूठा जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्नेशियस हाई स्कूल परिसर में भी स्थापित है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इस भव्य जनजातीय संग्रहालय में पूर्वजों के पारंपरिक औजारों, कपड़ों और दुर्लभ कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है।
4: आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था।
2: वहीं दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि खूंटी जिले में भी जनजातीय नायकों के सम्मान और जनसेवा की योजनाओं का व्यापक असर देखा जा सकता है। ऐतिहासिक क्रांति के केंद्र रहे इस जिले में अब सुदूर गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा कहते हैं कि गौरव दिवस के जरिए हमारे नायकों के बलिदान को आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है।
5: बिरसा मुंडा गाँव गाँव संगठन बनाने के लिए घूमे और संगठन बना करके लोगों के साथ समझाया और संगठन बनाया, इसीलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और अपने धन का जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग अच्छे हैं और देश का विकास अच्छा हो रहा है।
2: सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आज झारखंड की नई पहचान बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ मैं रांची से पूनम केरकेट्टा।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा जेवर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेन देन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है।
6: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
7: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
6: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
7: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज

0: करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद कनकलता। जंतर मंतर पर आज होने वाले प्रदर्शन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट चेतावनी, अनुमति नहीं मिली तो प्रदर्शन अवैध। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम को अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर नागरिकों को लिखे गए खुले पत्र की चर्चा करते हुए लिखा, खाकी वर्दी वाले भी इंसान है जिसका अपना परिवार अपने लोग, फर्क सिर्फ वर्दी का है इंसानियत का नहीं। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश रही भारतीय मूल की नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi calls for greater focus on health, nutrition and overall development of adolescent girls. Chairs valedictory session of National Departmental Summit on Women and Child Development. Delhi Police denies permission for proposed protests at Jantar Mantar in National Capital today. Tightens security across National Capital. Delhi Metro shuts entry and exit at 45 stations. All 10 candidates from Uttar Pradesh, including 8 from the BJP and 2 from Samajwadi Party, elected unopposed to Rajya Sabha. US lifts sanctions on sale of Russian diesel in global markets until April next year amid unprecedented price surge. In sports, Putul Sonowal assures country's first ever medal at World Bowls Champion of Champions after reaching semi-finals in Australia. And in men's cricket, West Indies beat India by 6 wickets in the second T20 international to level 5 match series 1-1. Prime Minister Narendra Modi has called for greater focus on the health, nutrition and overall development of adolescent girls. The Prime Minister made the remarks while chairing the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi yesterday. Mr. Modi emphasized the importance of Jan Bhagidari, people's participation, and called for Anganwadi centers to be developed as centers of community participation. He said families living near Anganwadi centers should be encouraged to contribute on special occasions by sharing nutritious food, toys and other locally relevant items for children. Discussing issues related to women's safety, Mr. Modi advised the development of age-appropriate modules for children on women's safety, dignity and empowerment. He also stressed the importance of preventive measures through coordinated efforts across various departments. Prime Minister Modi has stressed the need for young people to continuously upgrade their skills and adapt to emerging technologies amid rapid technological advancements. He made these remarks while interacting with members of Team India who participated in the World Skills Competition Shanghai 2026 at his residence in New Delhi yesterday. Congratulating the participants on representing India on the global stage, Mr. Modi urged them to develop skills in line with the requirements of the international market. He also encouraged them to contribute to strengthening India's skill training ecosystem by sharing their experiences and suggestions, and urged them to become ambassadors of skill development.
5: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है, उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
4: The Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar in the national capital today, citing previous violations of guidelines and public safety concerns. Addressing the media in

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम हेलो ईटानगर के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार दोस्तों, अरुण एफएम पर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हेलो ईटानगर में। दोस्तों, आज का यह सफर होने वाला है जानकारी, इतिहास और मधुर संगीत से भरपूर। सबसे पहले आइए देखते हैं ट्रेन हिस्ट्री सेगमेंट में 10 अक्टूबर के दिन गठित भारत और विश्व के इतिहास में 10 अक्टूबर क्यों खास है, आइए एक नजर डालते हैं। 10 अक्टूबर 1952

विद्यासागर सेतु का उद्घाटन। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर बने प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु का उद्घाटन 10 अक्टूबर 1992 को हुआ था। ये पुल कोलकाता और हावड़ा को जोड़ता है और हावड़ा ब्रिज पर यातायात का दबाव कम करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसे सेकंड हुगली ब्रिज भी कहा जाता है। अपने केबल स्टे डिजाइन के कारण यह भारत के आधुनिक पुल निर्माण की एक उल्लेखनीय उपलब्धि बनी है। 10 अक्टूबर 1910 प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास में आज की तारीख का विशेष महत्व है। 10 अक्टूबर 1910 को वाराणसी में पहला हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता महामना मदन मोहन मालवीय ने किया था। इस आयोजन में हिंदी भाषा साहित्य और देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया। 10 अक्टूबर 1906 आर के नारायण का जन्म। इसी दिन भारतीय अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक आर के नारायण का जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम राशिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। वह अपने काल्पनिक शहर मालगुड़ी और वहां के आम लोगों के जीवन पर आधारित कहानियां तथा उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध हुए। उनकी लेखन शैली सरल, सहज और मानवीय संवेदनाओं से भरी थी। उनकी चर्चित रचनाओं में स्वामी एंड द फ्रेंड्स, द गाइड एंड द मालगुडी डे शामिल है। 10 अक्टूबर यानी आज ही के दिन गजल गायक जगजीत सिंह का निधन हुआ। भारतीय संगीत जगत के लिए 10 अक्टूबर एक भावुक स्मृति भी लेकर आता है। मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह का निधन 10 अक्टूबर 2011 को हुआ था। अपनी मखमली आवाज और भावपूर्ण गायकी से उन्होंने गजल को व्यापक श्रोताओं तक पहुंचाया। उनकी लोकप्रिय प्रस्तुतियां में होश वालों को क्या खबर, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो और चिट्ठी ना कोई संदेश जैसी गजलें शामिल है। 10 अक्टूबर 1954 अभिनेत्री रेखा का जन्म। हिंदी सिनेमा के चर्चित अभिनेत्री रेखा, जिनका पूरा नाम बानू रेखा गणेशान है, का जन्म 10 अक्टूबर 1952 को हुआ था। दशकों तक लंबे करियर में उन्होंने रोमांटिक, सामाजिक और गंभीर भूमिकाओं से अपनी अलग पहचान बनाई। आइए रुक करते हैं विश्व इतिहास पर। 10 अक्टूबर 1845 अमेरिकी नौसेना एकेडमी की शुरुआत। अमेरिका में मैरीलैंड राज्य के एनाफोलिस में 10 अक्टूबर 1845 को नौसिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए नेवल स्कूल का पहला सत्र शुरू हुआ। 10 अक्टूबर 1946 नेपच्यून के उपग्रह ट्राइटन की खोज। ब्रिटिश खगोलविद विलियम लेजल ने 10 अक्टूबर 1846 को नेपच्यून के सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह ट्राइटन की खोज की। ये खोज नेपच्यून ग्रह की खोज के कुछ ही सप्ताह बाद हुई थी। 10 अक्टूबर 1967 ब्रह्मा अंतरिक्ष संधि लागू हुई। अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के इतिहास में 10 अक्टूबर 1967 महत्वपूर्ण तारीख है। इसी दिन आउटर स्पेस ट्रीटी लागू हुई। यह संधि चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित ब्रह्मा अंतरिक्ष में देशों की गतिविधियों के लिए मूलभूत अंतर्राष्ट्रीय नियम तय करती है। दस अक्टूबर 1903 महिला मताधिकार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। ब्रिटेन में एमिलिन फैंक्सहर्ड ने 1903 में वुमेन्स सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन की स्थापना की थी। ये संगठन महिलाओं को मतदान का अधिकार दिलाने के लिए चलाए गए आंदोलन में महत्वपूर्ण बना। तो दोस्तों, टुडे इन हिस्ट्री सेगमेंट में बस इतना ही। चलिए हेलो ईटानगर कार्यक्रम में सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत अलका याग्निक की आवाज में, फिल्म राज से।

0: श्रोता, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर। अब बात करते हैं टुडेज डे स्पेशल पर। 10 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, मानसिक परेशानियों से जुड़े भेदभाव को कम करना और लोगों को समय पर सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिन का संदेश है कि मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। तनाव, अकेलापन, चिंता या भावनात्मक परेशानी का सामना कर रहे व्यक्ति को बिना किसी झिझक के भरोसेमंद व्यक्ति या योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करने का अवसर मिलना चाहिए। किसी की बात ध्यान से सुनना और उसका साथ देना भी मदद का एक महत्वपूर्ण रूप है। तो दोस्तों, आज के हेलो ईटानगर कार्यक्रम में बस इतना ही। चलिए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति के आवाजों में।
1: मन करता है तुमसे बातें करता रहूं, शाम हो, रात हो, सुबह दोपहर, बस बोलता ही रहूं।
2: तो बोलो ना, ये जो तुम्हारी आवाज है ना, गहरी, ये सुन के दिल में कुछ होता है।
1: तो बोलता रहूंगा सपना, मुझे तुमसे इतनी बातें करनी है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर मेरी बातें नहीं।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का हेलो ईटानगर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे जन सेवा से देश सेवा का अगला श्रृंखला।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजीपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने सीजीपी द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों का और आश्वासनों का पालन नहीं करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति और लोगों की सुरक्षा तथा नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर ये सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सराय काले खां और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के डीसीपी बी भरत रेड्डी ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 जवान तैनात किए गए हैं।
2: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन है, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिल का वेत्री कजगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टान चावड़े विधानसभा सीट बरकरार रखी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और यातायात और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और वितरण, अनलोडिंग तथा आयात से संबंधित लेन देन को अनधिकृत किया गया है। अमेरिका के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर को सम्मानित किया। इस बीच इसराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने घोषणा की है कि कैप्टन स्मिथ को उनके कार्यों के सम्मान में इसराइल का नागरिक वीरता राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाएगा। मौसम विभाग ने केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारीकाल में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान

0: आइए सुनते हैं स्पेशल सीरीज जनसेवा से देश सेवा की 23वीं कड़ी का पुनः प्रसारण। 9:11 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 23वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। इसमें भाग ले रही हैं भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और राजनीतिक विश्लेषक रवि पाराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: कल्पना कीजिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच चिनाब नदी के उफनते पानी से 359 मीटर ऊपर टिकी एक विशाल फौलादी मेहराब का, जहां कभी पहुंचना महज एक सपना था, वहां आज भारत की तरक्की की ट्रेन फर्राटा भर रही है। सोचिए पंबन के नीले समुद्र पर खड़े उस पुल के बारे में, जो जहाजों को रास्ता देने के लिए समुद्र के सीने पर किसी विशाल पंख की तरह हवा में ऊपर उठ जाता है, या कच्छ के रण से लेकर कन्याकुमारी तक फैले उन चमचमाते एक्सप्रेस वे का, जिन्होंने दूरियों को सिर्फ किलोमीटरों में नहीं वक्त के पैमाने में भी आधा कर दिया है। ये केवल कंक्रीट, क्रेन और स्टील की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस अदम्य इच्छा शक्ति की, जिसने चुनौतियों को संभावनाओं में बदला, जिसने भारत के भूगोल को एक नए भारत के भविष्य से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम रुख कर रहे हैं एक ऐसी ही बदलाव की कहानी की ओर। प्रस्तुत है विशेष अंक बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार।
3: ये फ्रेट कॉरिडोर माल गाड़ियों के लिए बिछाई गई स्पेशल पटरियां है। इससे उत्तर भारत की बंगाल और गुजरात के समंदर से कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है और दादरी वो स्थान है जहां ये दोनों कॉरिडोर आपस में मिलते हैं, यानी यहां किसान जो उगाते हैं, यहां उद्योग जो कुछ बनाते हैं, वो जमीन से, हवाई मार्ग से दुनिया के कोने कोने तक तेजी से जा पाएगा।
2: श्रोताओं, जब किसी राष्ट्र के महान बनने की गाथा लिखी जाती है तो उसकी नींव में उसकी रीढ़ यानी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। पिछले वर्षों में भारत ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जो गति, पैमाना और इंजीनियरिंग का चमत्कार देखा है, उसने न केवल देश की कनेक्टिविटी बदली है बल्कि हर नागरिक की आकांक्षाओं को नए पंख दिए हैं। इसी अभूतपूर्व कायाकल्प और इसके दूरगामी प्रभावों को समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर नीति को दिशा देने वाले पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी और इस पूरे विजन के सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत प्रभावों के विश्लेषक, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार रवि पाराशर जी। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद।
5: धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी।
2: मिश्रा जी, आपके साथ शुरू करते हैं। और पिछले करीब एक दशक में भारत ने सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स,

0: हर क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव देखा है। आपसे समझना चाहते हैं कि क्या ये बदलाव सिर्फ इतना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का स्केल बढ़ा है या प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का तरीका भी बदला है, खासकर पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के जरिए क्या अब इन अलग अलग प्रोजेक्ट्स को एक दूसरे से जोड़कर एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क की तरह देखने की सोच बन रही है?
1: बिल्कुल आनंद जी, आपने सही कहा कि पहले हमारे लिए रोड रोड थी, रेल रेल थी, हवाई अड्डे थे जहाँ पे कुछ पैसेंजर जाते थे, कुछ गाड़ियां चलती थी, कहीं पे अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन पिछले 10-12 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नई सोच, जो शहरों को जोड़ करके, स्थानों को जोड़ करके, लोगों की मोबिलिटी को करके, फ्रीट के मूवमेंट को, अनेकल मूवमेंट ही नहीं बल्कि उसको कितने सस्ते अफोर्डेबल तरीके से उसको कर सकते हैं, कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, तो ये एक ऐसा नया व्यवस्था बनाया है पिछले 10-12 सालों में कि पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सारी की सारी बुनियादी सुविधाएं एक नए स्वरूप ले रही हैं। और वो स्वरूप है हमारा विकसित भारत, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 आजादी का 100वीं सदी मना रहे होंगे, सभी वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हमारा देश जो विकसित होगा उसके लिए पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, एयरपोर्ट में ले लीजिए, जिस प्रकार से एयरपोर्ट की संख्या आज दूने से ज्यादा हो गई है, और केवल एयरपोर्ट की संख्या नहीं बढ़ी है बल्कि एयरपोर्ट पे चलने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। एक साधारण सा आदमी जो कि कभी सोच नहीं सकता था, वो उड़ान इस योजना के तहत अब उसको कहीं से कहीं, देश में लगभग 95 ऐसे एयरपोर्ट है जहां पे उड़ान योजना के अंतर्गत वो चल के जा सकता है। तो उसको एक नई चीज, आप कभी एयरपोर्ट पे जाइए तो देख करके लगता है कि ये क्या है, ये नया भारत है। आप रेलवे को देख लीजिए, रेलवे में जिस प्रकार से न केवल हमारे जितने डबल ट्रैक उसको बनाया गया बल्कि लगभग 99% से ज्यादा, ऑलमोस्ट लाइक 100% ये सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, और उसमें स्पीड पे ध्यान दिया गया। आज काफी करीब 80% ट्रैक हमारे ऐसे जिसके ऊपर 110 किलोमीटर की रफ्तार से रेल चल सकती है, तो स्पीड पे ध्यान दिया गया, सुरक्षा पे ध्यान दिया गया, पीपुल्स कन्वीनियंस जो हम कभी सोचते नहीं थे, चाहे शौचालय से लेकर के आपको पावर पॉइंट प्लग जिससे कि आप अपना मोबाइल को चार्ज कर सके, आपके जो है खाने पीने की सुविधा हो सके, सारी की सारी हर तरह से, और स्पीड तो है ही, अफोर्डेबिलिटी, जैसे एक आनंद हमारे जो अमृत भारत से ट्रेनें चली अफोर्डेबिलिटी के ऊपर उस पर ध्यान दिया गया, तो वंदे भारत ट्रेनें चली जिसको स्पीड के ऊपर ध्यान दिया गया, एक अमूल चूल परिवर्तन पूरा का पूरा, या फ्रीट कॉरिडोर में ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, तो मुझे लगता है कि पूरी सोच में बदलाव आया। आप मेट्रो का नेटवर्क का देख लीजिए, जो मेट्रो कभी थोड़े से शहरों में हुआ करता था, हम इस पर बाद में विस्तार में बात करेंगे, तो एक छोटे शहर में जो करके आज हमारे लगभग 30 शहरों में मेट्रो चल रही है और तमाम सारे शहरों में चल रही है। पहले बार हमारे देश में रैपिड रीजनल ट्रेन की जो शुरुआत हुई है, जो नमो भारत के नाम से जो पहली शुरुआत हुई, तो ये एक नई सोच है कि कैसे हम व्यक्तियों को, जो व्यक्तियों के जो हमारे काम करने के, चाहे कारखाने से लेकर के उत्पादन के केंद्रों से लेकर के, जो व्यवसायिक केंद्रों से लेकर के विदेशों तक, क्योंकि आज हम अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे बल्कि हम दुनिया के लिए बना रहे, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे, तो उसको कैसे हम जहाज रानी के माध्यम से उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक नई आर्थिक सोच जो पिछले 10-12 साल में बढ़ी है, और मुझे लगता है कि ये विकसित भारत का बहुत बड़ा एक बुनियाद उसको आगे रंग देने के लिए, उसको ताकत देने के लिए तैयार हुआ है।
0: रवि जी, अगर एक एक करके बिंदुओं पर आए और सबसे पहले शुरुआत सड़क से करते हैं, नेशनल हाईवे नेटवर्क जो 91,287 किलोमीटर था वो बढ़कर लगभग 1,46,572 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। फोर लेन हाईवेज की संख्या बढ़कर लगभग 45,000 किलोमीटर तक पहुंच गई है। आपसे ये समझना चाहते हैं कि 2014 के बाद से जो ये परिवर्तन हुआ है आम नागरिक के जीवन में, ये जो आंकड़े हैं बढ़े हुए, इनका वास्तविक मतलब क्या है और देश की प्रगति में इनके क्या मायने हैं?
2: आनंद जी, राष्ट्रीय राजमार्गों का जिस तरह से विकास हो रहा है, न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, तो जाहिर है कि इससे आम आदमी के दैनिक रोजमर्रा के जनजीवन पर काफी सकारात्मक असर पड़ा है। दूरियां घटी हैं, कनेक्टिविटी बढ़ने से बहुत सारी चीजें हुई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से फसल को अच्छी मंडियों तक लाना ले जाना, इलाज के लिए अच्छे अस्पतालों तक पहुंच बढ़ना, और बहुत सारे स्तरों पर अगर हम देखें तो जैसा आपने कहा कि देश में सड़कों का जाल एक तरह से बिछ रहा है, और जो आपने आंकड़ा बताया कि 2014 में जो भी प्रतिदिन सड़क निर्माण का आंकड़ा था वो अब बढ़कर 28 से 30 किलोमीटर रोज हो गया है, उल्लेखनीय वृद्धि है। 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग थे देश में, उनकी कुल लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, अभी 2025-26 में ये आंकड़ा 1,46,572 किलोमीटर तक पहुंच गया है।

0: करीब परसेंटेज में देखें तो ये 61% बढ़ोतरी है
1: जी।
0: ये अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है किसी भी सरकार के लिए। गति शक्ति मास्टर प्लान
1: जी,
0: इसका उल्लेख करना हमें यहाँ पर बहुत आवश्यक है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम गति शक्ति योजना में सड़क, रेल और दूसरे ट्रांसपोर्ट, जैसे दुर्गा शंकर जी ने कहा, साधनों को, सारे जो यातायात के साधन है उनको एकीकृत किया गया है और इसका बहुत बड़ा फायदा अलग अलग सेक्टर्स को बिल्कुल मिला है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात आई है, देश के चारों कोनों में हर जगह एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, उनसे दूरियां बहुत घट गई हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है ये। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इसकी लंबाई 1350 किलोमीटर है और दिल्ली से मुंबई जाएं या मुंबई से दिल्ली के बीच हम एक्सप्रेसवे के जरिए सफर करें बाय रोड तो 24 घंटे की बजाय 12 घंटे में ये सफर संभव है। अब ये कितना बड़ा अंतर है, जो यात्रा आप 24 घंटे में कर पाते थे वो अब करीब करीब आधे समय में आप कर सकते हैं, तो न केवल समय की बचत है बल्कि ऊर्जा की भी बचत है। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो इंजीनियरिंग के, भारतीय इंजीनियरिंग के जो अद्भुत चमत्कार हैं वो भी आप देखेंगे। इसी दौरान कुछ प्रोजेक्ट जो है संभव हुए, तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला एक ब्रिज है जो अंग्रेजों के शासन काल में 1914 में शुरू हुआ था उसका बनना, और करीब करीब इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर है। जंग लगने की वजह से और कुछ पुराना पड़ने की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। अब जो नया पंबन ब्रिज बना है वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। अटल सेतु की बात कर ले, इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है और ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। दक्षिण मुंबई के सेवरी को नवी मुंबई से जोड़ता है ये। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जो समुद्र पर इसका हिस्सा बना है उसकी लंबाई 16.5 किलोमीटर है और जमीन पर इसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर है। ये 6 लेन का अटल सेतु है। मुंबई से नवी मुंबई तक 20 मिनट में इसके जरिए जो यात्रा करते हैं इसके माध्यम से, उसमें केवल अब आजकल 20 मिनट लगते हैं, पहले घंटों लगते थे क्योंकि ट्रैफिक जैम बहुत लंबे लंबे लगते थे और इसकी लागत थी 17,840 करोड़ रुपए। इसी तरह सुदर्शन सेतु को ले, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है ये। गुजरात के द्वारका जिले में अरब सागर पर ये सुदर्शन सेतु स्थित है। ओखा को बेट द्वारका से ये जोड़ता है। इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है, लागत आई थी करीब 979 करोड़ रुपए। ये 4 लेन का पुल है और दोनों किनारों पर लोगों की सुविधा के लिए 2.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ है जिस पर वो चहलकदमी भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में सड़क कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी पर बहुत ध्यान दिया गया है और इसका लाभ बहुत सारे सेक्टरों को मिल रहा है।
1: मिश्रा जी, अगर सड़क से सफर को आगे बढ़ाएं और रेल की तरफ चलें, जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जिक्र भी किया अमृत भारत स्टेशन का, तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है। साथ ही साथ नमो भारत और वंदे भारत जो ट्रेनें चली हैं उससे यात्रा समय में तकरीबन 30-40% की समय की कमी आई है, जो आप स्पीड की भी बात कर रहे थे। सवाल यह है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने और देश की जीडीपी में इस आधुनिक कनेक्टिविटी का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं?
2: आनंद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं इसके पहले इसको बात करूं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा जो पराशर जी बोल रहे थे। देखिये, पहले दिल्ली से मैं रहने वाला हूँ पूर्वांचल का। दिल्ली से अगर आपको बलिया या आजमगढ़ जाना हो तो बहुत टाइम लगता था, समझे कि पूरा दिन भर आपको नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 20-22 घंटे लग जाते थे। और आज आप दिल्ली से लेके लखनऊ तक एक्सप्रेसवे है जो कि मुश्किल से 5 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं और वहां से अगले 3-3.5 घंटे में 4 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। जो दूरी हम लगाते थे 20-20 घंटे लगा देते थे, वो हम 9 घंटे के भीतर भीतर वहां पहुंच जाते हैं। उसका क्या नतीजा निकला? आज जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था तो पहले पूर्वांचल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था क्योंकि वहां कोई सामान ले जाना अपने आप में बहुत दुरू हुआ करता था। आज पूर्वांचल में तमाम सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, बुंदेलखंड में काफी सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को इस प्रकार से कनेक्टिविटी जोड़ा है हाईवे के, नेशनल हाईवे के माध्यम से, एक्सप्रेसवे के माध्यम से, या तमाम सारे इंजीनियरिंग मार्बल जिसका भी जिक्र कर रहे थे, जैसे अटल सेतु की बात कर रहे थे, अटल सेतु मैं उसको सेतु नहीं लेता हूं, मैं उसको समझता हूं कि दो इकोनॉमिक सेंटर, दो ग्रोथ सेंटर, एक तरफ तो मुंबई है, दूसरे नवी मुंबई है, या आगे चलिए पुणे का देख लीजिए, इन दोनों के बीच की दूरी को कम करके उसने एक बिल्कुल नया चीज ला दिया। मैंने आर्थिक विकास के लिए जो हम, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक हमारा ये पाई, इकोनॉमिक पाई बढ़ेगा नहीं, तब तक हमारे देश के लोगों की समृद्धि, लोगों की

0: जीवन की जो स्तर में उसमें सुधार नहीं हो। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा काम हमारे एक्सप्रेसवे, हाईवेज और इसके माध्यम से भारत सरकार कर रही है, और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राज्य सरकार भी इसके ऊपर काफी सारा, आज महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमाम सारे जगह इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अब आपका जहां तक रेल का सवाल है, रेल में देखिए कि पिछले 10-12 साल में टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक उनका एक संदेश है कि पहले चीजों को स्केल अप करिए, पहले चीजों को नई टेक्नोलॉजी को लाइए, फिर स्पीड अप करिए और फिर स्केल, बड़े ऐसे स्केल जो कि संभव न हो, तो स्किल, स्पीड एंड देन स्केल। तो आज देखिए कि जिस प्रकार से रेलवे का ट्रैक हमारा लगभग 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया, रेलवे जो नए ट्रैक बने हैं, पिछले जो अगर हम देख रहे थे, जो डाटा देख रहा था, जो पिछले 10 साल में बना थे उससे दूने से ज्यादा जो पिछले 10 साल में बना, यानी उस रफ्तार से बना। और उसमें रेल में वंदे भारत से जो था, वंदे भारत से इतना सारा जो जुड़ रहा है बहुत हाई स्पीड। और सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है, ये हमारा आत्मनिर्भर भारत है। इसकी जो वंदे भारत की जो ट्रेन है, वो हम विदेशों से, पहले तो इस तरह की चीजें विदेशों से लाते थे, कितना हमारा पैसा खर्च होता था, कितना हमारा फॉरन एक्सचेंज लगता था, आज सब कुछ चीजें हमारे देश बन रही है। न केवल हमारे जो कोचेज बन रहे हैं, बल्कि हमारी पूरी टेक्नोलॉजी, चाहे कम्युनिकेशन सिस्टम हो, या सारा का सारा चीज हमारे यहाँ पे बन रहा है। अब एक तरफ तो हमने स्पीड लाई, दूसरे तरफ हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जगह जगह अपनी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अफोर्डेबल ट्रेन, अफोर्डेबल, कंफर्टेबल, स्पीड भी और सारी फैसिलिटीज भी, सिक्योरिटी के लिए जो कवच ऑटोमेटिक सिस्टम, जो हमारा जो कवच का जो सिस्टम है, आज तेजी से कवच का पूरा प्रसार हो रहा है
1: जी।
0: अब ट्रेन का तो एक तो डिस्टेंस हो रहा है, अगर आप देखेंगे शहरों के भीतर एक जो नेटवर्क होता है मेट्रो का, अब मेट्रो नेटवर्क हम 2014 में तक 5 शहर में 250 किलोमीटर भी नहीं था, आज करीब 1150 किलोमीटर मेट्रो हमारे 26 शहरों में चल रहा है, और जो काम चल रहा है अदर 100,000 किलोमीटर पर काम चल रहा है, और लगभग हम पूरी तरह से इसमें आत्मनिर्भर हो चुके हैं। मैं तो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रहा हूं, जिस प्रकार से आज हम मेट्रो कोचेज जो ले रहे हैं सारे के सारे हिंदुस्तान में बन रहे हैं, हम विदेशों में अपने कोचेज, यहाँ के हिंदुस्तान के बने कोचेज विदेशों में, मुझे बड़ी खुशी होती थी कि जब कोई हमारे पास एक ट्वीट करता था, ब्रिस्बेन से ट्वीट कर रहा है, कोई जोहान्सबर्ग से कर रहा है, कोई कनाडा के शहर से कर रहा है, कि हम आज मेड इन इंडिया कोच में बैठे हुए, तो हम पूरी टेक्नोलॉजी को आत्मनिर्भर कर रहे हैं। और जो पहला जो हमारा एक, पहले तो हम ये मेट्रो को लेकर के इतने सारे शहरों के भीतर कनेक्टिविटी किए, अब शहरों से शहरों के बीच में
1: जी,
0: जैसे दिल्ली से मेरठ के बीच में जो हमारा नमो भारत, अब 82-83 किलोमीटर की दूरी करीब 15 स्टेशनों पर रुकते हुए आप केवल 55 मिनट में कर लेते, कहां 3 घंटे पहले लगते थे, 55 मिनट में कर सकते हैं, और इसे उसका क्या फायदा हुआ, आज उसके बीच तमाम सारे ग्रोथ सेंटर बनने चालू हो गए, तमाम सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी पूरा का पूरा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, वो सोच कनेक्टिविटी तो एक बेसिस है, लेकिन कनेक्टिविटी के आधार पर आर्थिक उन्नयन
1: जी,
0: कैसे लोगों की, हम अपने बिजनेस की, मैन्युफैक्चरिंग की, लोगों की अदर एक्टिविटी को बढ़ा करके कैसे लोगों का जीवन का स्तर को सुधार करें।
1: बिल्कुल ठीक बात है। रेल की चर्चा को थोड़ा रवि जी आपकी तरफ मोड़ते हैं, और दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज की बात करें, या देश के पहले केबल स्टेड अंजी खड ब्रिज, और भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट न्यू पंबन ब्रिज का निर्माण की बात करें, यह सिविल इंजीनियरिंग की उपलब्धि तो है ही, साथ ही ये सामरिक और भौगोलिक दुर्गमताओं पर भारत की तकनीकी विजय है। आपसे समझना चाहते हैं कि ऐसे कठिन प्रोजेक्ट्स में इंजीनियरिंग विल पावर और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की गति को किस तरह साधा गया, और इसे देश में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला।
2: देखिए आनंद जी, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी योजना परियोजना हो, इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो वो पूरी नहीं हो सकती। अभी दुर्गा शंकर जी ने बताया कि दैनिक यात्रियों की रोजमर्रा की जीवन में मेट्रो रेल बहुत उपयोगी है, शहर टू शहर, छोटे शहर से छोटे शहर तक रैपिड रेल यानी नमो भारत जो सेवा शुरू की गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और देश के दुरूह और दुर्गम क्षेत्रों में भी रेलवे के इंजीनियरों ने बहुत कमाल दिखाए हैं। आपने चिनाब रेलवे ब्रिज का उल्लेख किया, पहले कितनी लंबी यात्रा होती होगी जब ये रेलवे ब्रिज नहीं रहा होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनाया गया है, ये इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है, और ये एफिल टावर जो पेरिस में है उससे भी 35 मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई 1315 मीटर है, लागत इसमें आई 1486 करोड़ रुपए की, और इसकी मजबूती इतनी है कि ये 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने वाली हवाओं और रिक्टर स्केल पर अगर कोई 8 की तीव्रता तक भूकंप आता है उसको भी ये सहज ही झेल सकता है। इसके अलावा आपने अंजी खड ब्रिज का उल्लेख किया,

0: की विशेषता यह है कि यह भी जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर बना भारत का पहला केबल के सहारे लटका हुआ पुल है। कटरा और रियासी को ये पुल आपस में जोड़ता है। ये उधमपुर श्रीनगर बारापुला रेल लिंक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी लंबाई 725.5 मीटर है, ऊंचाई नदी तल से 331 मीटर है। इसमें 96 केबलों का इस्तेमाल किया गया है और मुख्य स्तंभ नींव से 193 मीटर ऊंचा है और इसकी क्षमता है कि 213 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली जो हवाएं हैं उनको ये झेल सकता है। वो इस रफ्तार से चलने वाली हवाएं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और इस पर रेलगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर सकती हैं। एक और दक्षिण भारत के ऐसे ही अद्भुत पुल की बात कर लें, ये है पाम्बन ब्रिज जो तमिलनाडु में मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला है। मोदी सरकार के कार्यकाल में इसको नया स्वरूप दिया गया, नया बनाया गया। जो अब नया पुल बना है ये पाम्बन ब्रिज तमिलनाडु में, वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ये आधुनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ऑटोमेटेड सिस्टम पर काम करता है। डबल ट्रैक वाला ये ब्रिज, इस पर ट्रेनें 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजर सकती हैं। जब आपने बताया, उल्लेख किया कि जब कोई जहाज निकलना होता है पुल के रास्ते से, तो ये अद्भुत तकनीकी क्षमता है इस पुल की कि 5 मिनट के अंदर पूरा पुल दो हिस्सों में विभाजित होकर ऊपर की ओर उठ जाता है। तो ऊंचे समुद्री जहाज हैं वो इसके रास्ते से निकल जाते हैं और फिर अगले 5 मिनट में इसको वापस पुल की शेप में लाया जा सकता है।
1: श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में प्रस्तुत है विशेष अंक बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर नीति को दिशा देने वाले पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार रवि पाराशर जी। रेलवे के बाद अगर एयरपोर्ट की चर्चा करें मिश्र जी, तो और हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि जो धौलेरा एक्सप्रेसवे बना या जो धौलेरा एयरपोर्ट बना, उसको भारत के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन के नजरिए से विकसित किया गया। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में जो कुछ समय पहले तक, अगर 2014 से पहले की बात करें, तो सरकारी लाल फीताशाही बहुत ज्यादा चरम पर थी, तो गवर्नेंस रिफॉर्म्स किस तरीके से किए गए कि ये बड़े प्रोजेक्ट सफल हुए? साथ ही साथ ये जो धौलेरा एयरपोर्ट या फिर एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ी, इससे भारत का वैश्विक स्तर पर कितना समृद्ध प्रभाव पड़ा? और जो हम निवेश की बात करते हैं कि विदेश से निवेश आए, उसमें एयरपोर्ट्स ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई?
2: बिल्कुल ठीक आपने कहा, धौलेरा एयरपोर्ट जो अभी बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है
1: जी।
2: धौलेरा एक ऐतिहासिक स्थान है, लोथल का आपने नाम सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है जुड़ा हुआ वो स्थान है। मुझे वहां भी जाने का सौभाग्य मिला। वहां किसी समय इतना बड़ा सी पोर्ट हुआ करता था, इतनी सारी समृद्धि उस जमाने में, बहुत सारे बीट्स के काम दुनिया भर से वहां का संबंध हुआ करते थे। आज वहां पहुंचना भी बड़ा मुश्किल था। तो जैसे मैंने बताया कि एक तो वहां पे जाने के लिए अहमदाबाद से डायरेक्ट वहां के सड़क धौलेरा के लिए बन गई है,
1: धौलेरा एक्सप्रेस वे।
2: अभी हाल में जो कैबिनेट के डिसीजन के साथ एक अप्रूवल किया गया, एक वहां पे भी रेल लिंक भी, फास्ट रेल लिंक भी जो है अहमदाबाद से डायरेक्टली वहां धौलेरा से जोड़ने के लिए एक रेल लिंक भी सैंक्शन कर गई और वहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। अब धौलेरा जो है एक बहुत बड़ा स्पेशल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट सेंटर, जहां पे आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रही है, तमाम सारे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को मतलब के जुड़ने का मतलब बहुत सारी किस्म की इंडस्ट्रीज वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है
1: जी।
2: आज एक वो नया स्वरूप लेकर के आगे बढ़ रहा, और केवल धौलेरा की कहानी नहीं है बल्कि उसके जैसे आज देश में तमाम सारे जो नए नए एयरपोर्ट बने, जो 174 मैंने आपने बताया कि 64 से करके 170-175-74 से बढ़ करके 160-170 के आसपास आज एयरपोर्ट बन गए हैं और सारे चालू हो गए हैं। उन एयरपोर्ट्स पे अब जैसे नवी मुंबई का एयरपोर्ट है
1: जी,
2: या गुवाहाटी का जो नया एयरपोर्ट बना है
1: जी,
2: जेवर का जो नया एयरपोर्ट बना है, आपका चित्तूर का वहां साउथ का जो एयरपोर्ट बना, जो गोवा में एक अल्टरनेटिव एयरपोर्ट बना, मोपा का जो एयरपोर्ट बना
1: जी,
2: मैंने इतने सारे देश में जो एयरपोर्ट्स बने, एयरपोर्ट से हमने दुनिया से कनेक्टिविटी, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है, तो दुनिया से अपने आप को जोड़ा। हमने लॉजिस्टिक्स को बहुत सारा, इससे हमारा काफी सारा जो है, इससे जो व्यापार होगा, व्यापार हमारे इसमें काम आएगा। और एक आम आदमी के लिए जिस प्रकार का जो एक एयर फेयर हो गया है, आम आदमी को भी, क्योंकि समय बचाना उसको, उसके लिए भी उतना मत पड़े। तो वो जो आपने जो बात कही, एक हवाई चप्पल में चलने वाला आदमी हवाई सफर कर रहा है, एक देश का एक नई तस्वीर उभर करके सामने आई है।
1: रवि जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, बतौर पत्रकार आप कितना बड़ा बदलाव देखते हैं 160

0: 60 से ज्यादा एयरपोर्ट्स इस देश में हैं और हम उड़ान योजना की बात कर रहे हैं और अब उड़ान 2.0 की भी बात हो रही है जिसमें और सुविधाएं आम नागरिकों को मिले। हमने ये भी देखा कि सरकार ने एयरपोर्ट्स पर मिलने वाली सुविधाओं को भी आम नागरिक के ध्यान में रखकर बहुत बदलाव किए हैं, चाहे वो वहां पर फूड आइटम्स के प्राइस को कम करना हो या फिर पैसेंजर्स के लिए लाउंज की सुविधा उपलब्ध कराना हो। बतौर पत्रकार जमीनी स्तर पर कितना बदलाव देखते हैं आप?
1: आनंद जी, जमीनी स्तर पर एक पत्रकार के तौर पर जो मेरे अनुभव है, मेरा करियर 1988-89 में पत्रकार के तौर पर शुरू हुआ था और उस समय मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि जो मेरा वेतन था उससे मैं हवाई यात्रा कर सकूंगा। और आज इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है और जो मेरी स्थिति है, आज मैं जब चाहूं समय बचाने के लिए हवाई यात्रा मेरी सीमा में, मेरी जेब की सीमा में, तो ये फर्क बहुत धीरे धीरे आया है और पिछले 10-12 साल से बहुत तेजी से हम देख रहे हैं। आपने बताया कि 2014 में हवाई अड्डे केवल 74 थे, अभी 165 हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। पहले क्या होता था कि आप घर के पास हवाई यात्रा करने के लिए भी आपको सड़क से बहुत लंबी चौड़ी यात्राएं करनी पड़ती थी, जो स्थिति आज नहीं है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया गया, 15 जून 2026 से यहां से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। हिंडन एयरपोर्ट से छोटे छोटे शहरों की हवाई कनेक्टिविटी बनाई गई है, तो दिल्ली NCR के जो लोग हैं उनके लिए और दूर दराज विदेश से आने वाले और दूर दराज के क्षेत्रों से राजधानी NCR क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए हवाई यात्रा की कितनी सुगमता हो गई है, कितनी सुलभता हो गई है, ये आज देखने को हमें मिलता है। और हवाई अड्डों, जो पुराने हवाई अड्डे थे, इस सरकार ने केवल उनकी क्षमता ही नहीं बढ़ाई, उनकी साज सज्जा, उन पर जैसे आपने कहा कि खान पान की सुविधाएं, उनका जो लुक भारतीय विरासत और भारतीय संस्कारों से जीवंत रहे, ऐसे प्रयास भी किए। हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने के लिए नए टर्मिनल भवन बनाए गए हैं। तो एक पत्रकार के तौर पर पिछले 12 साल के अनुभव मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग पहले हवाई यात्रा की कल्पना नहीं कर सकते थे अपने बजट के हिसाब से, वो आज हवाई यात्रा की कल्पना, अगर उन्हें कहीं अपेक्षाकृत जल्दी पहुंचना है, तो कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। कार्यक्रम में अब चर्चा करते हैं सागरमाला की। श्रोताओं, सागरमाला के 5 प्रमुख पिलर्स हैं: पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट और कोस्टल शिपिंग। लेकिन मिश्रा जी, जो मेरा आपसे सवाल है वो वाटर मेट्रो को लेकर है। 2026 में यानी इसी वर्ष नेशनल वाटर मेट्रो पॉलिसी का ड्राफ्ट मसौदा पेश किया गया। सवाल ये है और बहुत सारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं कि जो वाटर मेट्रो की पहल है, एक तो उससे भूमि अधिग्रहण की जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी, उसमें भी हम कई सारे पेंच देखते थे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना वाइबल है भारत जैसे देश में? क्या इसको एक शहर से दूसरे शहर तक जोड़ा जा सकता है? क्या है इसकी वर्तमान स्थिति और वास्तविक धरातल पर कब हम इसे देखने वाले?
2: बहुत अच्छी बात कही आप आनंद जी आपने। ऐसा है, जैसे मेट्रो आया, मेट्रो का क्या मकसद है कि शहर में आप हर किलोमीटर पे आपके स्टेशन हो, 800 मीटर से लेकर के 1000 बार से, कि कहीं से कहीं पहुंचना तो आप जो है 10-12 मिनट में आप एक मेट्रो स्टेशन में पहुंच सकते हैं।
0: जी,
2: उससे पूरा शहर, आज दिल्ली में 400 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो का नेटवर्क बना हुआ है, तो दिल्ली में कितना आसान हो गया, ट्रेवल कितना आसान हो गया है और भी बढ़ रहा है। अभी नए उसका जो फेज 5 का, उसके मेट्रो का काम चल रहा है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे शहर हमारे देश में है जहां पे या तो समुद्र या वहां पे पानी का नेटवर्क बना हुआ है।
0: जी,
2: अब वहां पे पहले क्या होता था कि पुराने जमाने वाली जो बड़ी बड़ी बोट चलती थी और वो आराम से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की रफ्तार से चली करती थी, आपको घंटों लग जाता था, कोई सुविधा नहीं होती थी धूप में और उसमें आप परेशान होते थे।
0: जी,
2: मेट्रो ने क्या लाया? मेट्रो आपको कंफर्ट लाया, कनेक्टिविटी लाया, आपको जो पंक्चुअलिटी लाया।
0: जी,
2: आपकी चीजों को आसान कर दिया, उसके पूरी तरह से जा सकते हैं। पहले जो इन शहरों में क्या होता था, कोची शहर में, क्योंकि मैं उस समय भारत सरकार का सेक्रेटरी था इसी मिनिस्ट्री का और हमारी उसमें हमें सब सारा का सारा चीज डेवलपमेंट हो रहा था, तो आप कोची में अगर आप देखें तो वहां पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दूरी तो मुश्किल से 2 किलोमीटर की होगी, 1.5 किलोमीटर की होगी, लेकिन आपको 2500-2300 किलोमीटर जाना पड़ता था उसका, समुद्र का जो अंदर गया, उसे 30 किलोमीटर जाकर के आपको घंटों लग जाते थे।
0: जी,
2: अगर इसको ऐसा आपको महसूस हो जाए कि जो वहां पे स्टेशन बना हुआ वो स्टेशन मेट्रो स्टेशन टाइप का, एयर कंडीशन है, बैठने के लिए अच्छी जगह है, सारी की सारी सुविधाएं हैं और आपको कंफर्ट है, अगर आप कुछ खाना पीना चाहे, कुछ खरीदना चाहे, सारी की सारी फैसिलिटीज है।
0: जी,
2: ऐसा स्टेशन अगर आपको बन जाए तो आप कहीं से कहीं आप कनेक्ट कर सकते हैं।
0: जी,
2: अब तो काफी कुछ चीजें हम आत्मनिर्भर भी हो चुके हैं, उस समय इस चीज

0: को कोची में डेवलपमेंट शुरू किया गया और आज मुझे खुशी है कि वहां पे 20 स्टेशन में इस प्रकार के कंफर्टेबल बोर्ड्स और रेल मतलब स्टेशन वगैरह तमाम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। अब ये एक हमारे लिए नया अवसर पैदा हो गया और नया अवसर ये पैदा हो गया कि इसके हिसाब से अब आप हमारे देश में ऐसे बहुत सारे, क्योंकि हमारे देश में करीब 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और उसमें कई सारे जगह पे इस प्रकार की चीजें हैं, तो अगर जहां पे है तो वहां पे ऐसे 18 शहर चुने गए हैं जहां पे इस प्रकार की वाटर मेट्रो की सुविधा हो सकती है। इसी में मैं आपको एक और चीज बताऊं कि केवल वाटर मेट्रो के अलावा अब एक नई चीज पहले बार देश में होने जा रहा है, उसमें अगेन मैं एज ए सचिव मुझे मौका मिला काम करने का। भारत में पहले बार हमको ट्रांसपोर्ट को एयर के माध्यम से यानी रोपवे, अभी तक हमारे देश में रोपवे का उपयोग होता था, वो कहीं कोई धार्मिक स्थान है वहां पे जाने के लिए लोगों को केवल टूरिस्ट पर्पज से, बकायदे आप अपना सामान लेकर के कहीं से कहीं आप जा सकते हैं। और बनारस में बहुत जल्दी मैं आशा करता हूं कि ये जो रोपवे जो बनेगा, ऐसे शहरों में बहुत कंजेशन आज लैटिन अमेरिका के कई सारे शहरों में, यूरोप के कई सारे शहरों में रोपवे का उपयोग करते हैं ट्रांसपोर्ट के तौर पर। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया चीज और पहले बार उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहला हमारा देश का जो ट्रांसपोर्ट रोपवे बहुत जल्दी मैं आशा करता हूं कि शुरू होने जा रहा है।
1: कार्यक्रम में समय कम है, एक एक सवाल आप दोनों से बहुत संक्षेप में। रवि जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो बॉर्डर एरियाज हैं हमारे, चाहे वो लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो या उत्तर पूर्व के सीमावर्ती क्षेत्र हो, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 2014 के बाद हमने देखा है कि वहां भी बहुत तेजी से विकास हो रहा है। किस तरह देखते हैं इस बदलाव को?
2: आनंद जी देखिए, पिछली सरकारों की जो नीति थी उस नीति को बिल्कुल मोदी सरकार ने उलट दिया है। मुझे याद है कि 2013 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने पार्लियामेंट में बताया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास इसलिए नहीं करती है केंद्र सरकार कि कहीं जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करें और उसका फायदा हमारे दुश्मन न उठा लें, इसलिए जैसा है दूभर को दूभर बना रहने दीजिए। लेकिन 2014 में अगले साल मोदी सरकार केंद्र में बनते ही ये नीति बिल्कुल आमूलचूल बदल दी गई और अब स्थिति ये है कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। वहां सुरंगों का विकास, अटल टनल और बहुत सारी सुरंगें बनाई जा रही हैं जो आपातकाल में बिगड़े हुए मौसम में सेना के आवागमन को बहुत सुगम बनाती हैं। बहुत सारे बंकर सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों को जो बसे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे स्थानीय स्तर पर काम किए जा रहे हैं। सड़कें बहुत मजबूत और पक्की बनाई जा रही हैं और इसके अलावा जो हमारे रोड कनेक्टिविटी की बात हम कर रहे थे, हम वहां भी देखते हैं कि उनको इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि हमारे हवाई जो हमले करने में सक्षम जो विमान है, लड़ाकू विमान, उन पर टच लैंडिंग कर चुके हैं यानी उतर सकें अगर ऐसी स्थिति हो तो। तो सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के मामले में मोदी सरकार बहुत प्राथमिकता दे रही है और पिछली सरकारों के तमाम नीतियों के उलट ये काम अब वहां हो रहा है।
1: मिश्रा जी, कार्यक्रम के समापन में बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की गति है इस देश में, उससे विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में कितना हमें आसानी होने वाली है।
0: मैं इसके पहले एक और चीज जोड़ना चाहूंगा जो फ्रीट कॉरिडोर, क्योंकि हमने अभी तक मोबिलिटी जो है पैसेंजर मोबिलिटी की ज्यादा बात की, जो हमारा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ईस्टर्न और वेस्टर्न बनकर के लगभग तैयार हुआ, 2,800 किलोमीटर ज्यादा है। इससे पूरा का पूरा एक हमारा फ्रीट ईस्ट से लेकर वेस्ट, वेस्ट से लेकर के ये सारा इतना बड़ा ये फैसिलिटी बन गई है और नया इसके बाद फिर से अभी सूरत से लेकर के दुला वो भी प्रारंभ किया गया, उसको शुरुआत का अनाउंस किया गया। तो देश में हमारा लॉजिस्टिक का मूवमेंट इतना आसान किया गया जिससे लॉजिस्टिक का कॉस्ट बहुत हमारा कम हो जाएगा। देखिए, कोई भी देश आगे बढ़ता है तब जबकि उसके लिए ऐसा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिससे लोगों का मूवमेंट आसान हो जाए, गुड्स का मूवमेंट आसान हो जाए, सारा का सारा प्रोसेसेस हमारे आसान हो जाए और वो सब कुछ बन करके तैयार है या तैयार होता हुआ दिख रहा है। देखिए, हम बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि 100% हम वहां पहुंच चुके, तैयार होता हुआ दिख रहा है और ये सारा का सारा जो धरातल तैयार की जा रहा है ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 में भारत को विकसित बनाने का, वो हम विकसित होकर के रहेंगे। क्योंकि जब ये सब कुछ हो जाएगा तो एक तरफ हमारा मेक इन इंडिया हो रहा है, मेक फॉर द वर्ल्ड हो रहा है, एक तरफ हम जितनी सारी नई टेक्नोलॉजीज है, आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, सब में हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे ग्रीन एनर्जी हो, हर तरह की हर चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम सब चीजों को बिल्कुल आसान कर दे, मतलब ये लुब्रिकेशन कहेंगे, ये इकोनॉमी को लुब्रिकेशन लुब्रिकेट कर रहा है। एक और भी बड़ा इसका इम्पोर्टेंट पहलू है, ये सारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से इतना बड़े लेवल पे रोजगार क्रिएट हो रहा है
1: जी।
0: और उस रोजगार के क्रिएट

0: होने से लोगों की इनकम बढ़ रही है
1: जी।
0: तो एक इनकम तो इकोनॉमी के ग्रोथ से हो रहा है, दूसरा इसके वजह से तमाम सार हमारे जो नौजवान है, जो हमारे युवा ज्योति, जो नए आजकल के बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं, उनके लिए इतना बड़ा रोजगार का साधन भी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उनको नए साधन क्रिएट कर रहा है। ये हमारे देश की बदलती हुई तस्वीर है। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आपका जन सेवा से देश सेवा की बात है, वो इस प्रकार की चीज करके आज देश को हमारे एक नए लेवल पे, एक नए भारत को, आत्मनिर्भर भारत, एक विकसित भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।
2: बिल्कुल, जब बुनियादी ढांचे के पहिए तेजी से घूमते हैं तो पूरे देश की प्रगति को नई रफ्तार मिलती है। आज भारत सिर्फ रास्ते नहीं बना रहा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के समृद्ध भविष्य की नींव रख रहा है। डॉक्टर मिश्रा, आपका, रवि पाराशर आपका आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
3: धन्यवाद आनंद जी।
2: ये थी बुनियादी ढांचे की वो नई रफ्तार जो आज भारत के हर कोने को एक दूसरे से जोड़ रही है और देश को आत्मनिर्भरता के साथ साथ समृद्धि के मार्ग पर आगे भी बढ़ा रही है। जनसेवा से देश सेवा की इस विशेष श्रृंखला के आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।
4: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 23वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और राजनीतिक विश्लेषक रवि पाराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित जन सेवा से देश सेवा का देशवा श्रृंखला। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, हम लौटेंगे हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
1: 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का
2: जेनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837434121 पर।
0: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, प्रस्तुत है हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। आइए आगाज करते हैं के और क्षितिज तारे के आवाजों में द ट्रेन से, ये बेहद खूबसूरत गीत।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स तेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवेंजलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद। इंडिजेनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी। इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837

0: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने सीजेपी द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन नहीं करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएंगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपद पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सराय कालेखां और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के डीसीपी बी भरत रेड्डी ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 जवान तैनात किए गए हैं।
1: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत अमरीका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेन देन को अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आपूर्ति साथ ही हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अमरीका का नियंत्रण डीजल की कीमतों को कम करने में मदद करेगा। अमेरिका के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर को सम्मानित किया। इस बीच इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने घोषणा की कि कैप्टन स्मिथ को उनके कार्यों के सम्मान में इजराइल का नागरिक वीरता राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। रांची में कल दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। 250 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने 19वें ओवर में 4 विकेट पर 252 रन बनाए। कप्तान शाई होप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अरकेल।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
1: नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम का एक और ताजा तरीन अंक पर। दोस्तों, इस कार्यक्रम में प्लेलिस्ट बनाते हैं आप लोग और हम दिल से आपके मैसेजेस को हमारे प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो देर किस बात की, हमारा नंबर फिर से सुन लीजिए 9436887808। आप इस नंबर पर हमें अपना सॉन्ग रिक्वेस्ट टेक्स्ट मैसेज के जरिए हमें भेज सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए लेते हैं आज का पहला मैसेज। और ये पहला मैसेज हमें आया है आकाश कुतुम जी का, जो असम से हमें लिख रही हैं। आकाश जी, अरुण एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें शौक फरमाइश की है वेलकम टू द जंगल फिल्म से दीवाने हैं गीत को सुनने का। तो आकाश जी, उम्मीद है कि ये गाना आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा और आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे।

तो दोस्तों आज के रेडियो डिमांड का अगला मैसेज हमें आया है शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप की तरफ से। हमें लिख रहे हैं पश्चिम सिंहभूम जिले छाईबासा से, झारखंड से। आप सभी का अरुण एफएम पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें सॉन्ग फरमाइश किए हैं ऐसा भी वक्त गीत को फिल्म शाती से, और इस गीत को गाया है कुमार शानू और अनवर ने। तो गोप परिवार हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनवाते हैं आप लोगों की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत को।

और दोस्तों अब अगला मैसेज आया है असम के गोलाघाट से, और ये प्यारी सी फरमाइश भेजी है हमारी लिसनर्स रमेश पात्रो, रोनू पात्रो और लक्की जी ने। रमेश जी, रोनू जी और लक्की जी, अरुण एफएम पर आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आपने हमें सॉन्ग फरमाइश की है मिस्टर इंडिया का, बेहद खूबसूरत और प्रेरणादायक गीत जिंदगी की यही रीत है, सुनने की फरमाइश की है। और इस यादगार गीत को अपनी शानदार आवाज दी है सदाबहार गायक किशोर कुमार जी ने। और दोस्तों एक और हमें फरमाइश आई है इसी गीत को, निर्जुली अरुणाचल प्रदेश से नानी गाओ जी की तरफ से। नानी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने भी मिस्टर इंडिया का इसी गीत को आपने फरमाइश की है। तो नानी गाओ जी, रमेश पात्रो, रूनू, लकी, आप सभी के लिए पेश है रेडियो डिमांड पर मिस्टर इंडिया का ये बेहद खूबसूरत गीत। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस गीत को जरूर एंजॉय करेंगे।

0: श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। हम लौटेंगे अगले मैसेज के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
1: इंडिजेनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837434121 पर।
0: रेडियो डिमांड कार्यक्रम पर आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अगला मैसेज हमें आया है अमाल बसुमातारे जी का। अमाल जी, अरुण एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने सॉन्ग फरमाइश की है कौन है जो सपनों में आया फिल्म का, मेरा सोना सजन गीत को सुनने का, और आपने इस गीत को डेडिकेट किया है अपने दोस्तों बिमल, बाइकॉन, सुनीता, रमेश, रोनू, लक्की, रोको, अंजलि, हितेंद्र, देवाशीष, जोगेंद्र और अरुण एफएम के सभी रेगुलर लिसनर्स को। तो अमाल जी, आपकी फरमाइश पर लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का अगला गीत।

रेडियो डिमांड कार्यक्रम पर अगला मैसेज हमें दोस्तों आया है जोगेंद्र रोंगपी, सोनालिंग तिपी और धर्मकिरी रोंगपी जी का, जो हमें लिख रहे हैं कर्ब अंगलोंग जिले सरिहा जान आसाम से। आप तीनों का अरुण एफएम पर बेहद स्वागत है। दोस्तों आज का ये गीत और भी खास है क्योंकि आज हम

याद कर रहे हैं गजल सम्राट जगजीत सिंह जी को, जिनकी आवाज और गजलों ने संगीत की दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो सीधे दिल तक पहुंचता था और दिल के अनकहे एहसासों को शब्द में दे जाता था। इसी मौके पर हमारे लिसनर्स ने फरमाइश की है फिल्म अर्थ के बेहद भावपूर्ण गीत तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। इस गीत को अपनी आवाज दी है गायक जगजीत सिंह ने। उनकी आवाज में छिपा दर्द, जिंदगी की सच्चाई और भावनाओं की गहराई आज भी सुनने वालों के दिल को छू जाती है। तो जोगेंद्र सोनाली धोरमकिरी, आप तीनों के फरमाइश पर लीजिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। और आपने इस गीत को डेडिकेट किया है अमाल बाइकुन देवाशीष, रमेश रूनू और बिमल जी को।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। तो दोस्तों, अगला मैसेज हमें आया है विश्वनाथ जिले असम से निशा रानी पेगू जी का। निशा रानी जी, अरुण एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें सॉन्ग फरमाइश की है सब तेरा गीत को सुनने का। तो निशा रानी जी, आइए आपको सुनवाते हैं बागी फिल्म का ये बेहद खूबसूरत गीत।

दोस्तों बढ़ती है अगले मैसेज की ओर और ये मैसेज हमें आया है गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर से। फरमाइश से भेजी है हमारे प्यारे लिसनर फारूक अहमद जी और उनके भाई गुलजार जी ने। फारूक जी और गुलजार जी अरुण एफएम पर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें सॉन्ग फरमाइश की है शीन फिल्म का ओ दिलबरो गीत को सुनने का, लेकिन दोस्तों ये गाना फिलहाल हमारे सिस्टम में उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसी फिल्म का एक दूसरा प्यारा सा गीत आपके लिए बजाया जाए। फारूक जी और गुलजार जी, उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आएगी।

तो दोस्तों, रेडियो डिमांड कार्यक्रम का अगला मैसेज हमें आया है हितेंद्र दास जी का, आसाम से। हितेंद्र जी ने हमें कोई भी गीत प्ले करने के लिए फरमाइश की है। हितेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, आपको एक बेहतरीन गीत सुनवाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं और इस गीत को आप जरूर पसंद करेंगे।

और दोस्तों अगला मैसेज हमें आया है असम से गीता पेगू जी का। गीता जी ने हमें सौ फरमाइश की है इनाम गीत को सुनने का। गीता जी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनवाते हैं आपके फरमाइश पर अगला गीत को।

और दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगला और अंतिम मैसेज की ओर। और ये मैसेज हमें आया है बिमल बसुमतारी जी का, जुनय मेसा की सपोरी धीमा जी असम से। आपने हमें सॉन्ग फरमाइश की है बिच्छू फिल्म का प्यार तू दिल तू गीत को सुनने का, तो आइए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का आज के अंतिम गीत को।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज का ये अंक आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आज के पहले प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ती तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आगे के सफर में आपके साथ होंगे आरजे कानिक गिचिक जी। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो साथी कारगर रिवा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी। प्रस्तावित स्टेशनों में जनपथ पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सराय काले खां और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। रेलवे के डीसीपी बी भरत रेड्डी ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 जवान तैनात किए गए हैं।
1: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेन देन को अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आपूर्ति साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका का नियंत्रण डीजल की कीमतों को कम करने में सहायक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद समाज में सुख, करुणा और नई उम्मीद लेकर आए। उन्होंने चारों ओर शांति और समृद्धि की भी कामना की। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। 250 रन के लक्ष्य के जवाब में वेस्टइंडीज ने 19वें ओवर में 4 विकेट पर 252 रन बनाए। कप्तान शाय होप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi has stressed the need for young people to continuously upgrade their skills and adapt to emerging technologies amid rapid technological advancements. He made these remarks while interacting with members of Team India who participated in the World Skills Competition Shanghai 2026 at his residence in New Delhi yesterday.
3: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है, उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल हो।

मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त गिची कनिक और आप सभी बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz के साथ। तो दोस्तों, इसी पॉजिटिव सोच और नए हौसलों के साथ आइए हमारी दूसरी ट्रांसमिशन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दूं, पहली प्रसारण सभा में आप बने हुए थे RJ कारगे रेबा के साथ। और दोस्तों, आप सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारी दूसरी प्रसारण सभा पर।

श्रोता दोस्तों, आपको बता दूं इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता एचएम भूषण। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है फिल्मों के खूबसूरत नगमों, दिल को छू लेने वाली धुनों और प्यार भरे गीतों के साथ जुड़ने का। जी दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है हमारा खास कार्यक्रम फिल्मी लहर, जहां बॉलीवुड के गीत आपके दिन को और भी सुहाना बना देंगे। तो दोस्तों, बने रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, क्योंकि संगीत की ये लहर आपको ले चलेगी यादों, एहसासों और खूबसूरत लम्हों की दुनिया में। चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में फिल्म ये है जलवा से। एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, फिल्मी गीतों की इस खूबसूरत महफिल में अब बारी है एक ऐसे नगमे की जिसके बोल सुनते ही दिल ख्यालों के पंख लगाकर हसीन सफर पर निकल पड़ता है। कभी खुले आसमान में उड़ने का मन करता है तो कभी किसी अपने के साथ दुनिया की सारी फिक्र बुलाकर दूर चले जाने का। कुछ इसी खूबसूरत एहसास को बयां करती है एक छोटी सी शायरी। पेश है, हवाओं के संग उड़ने का एक ख्वाब सजा ले, चलो आज मोहब्बत के कुछ हसीन पल चुरा ले। हवाओं के संग उड़ने का एक ख्वाब सजा ले, चलो आज मोहब्बत के कुछ हसीन पल चुरा ले। ना मंजिल की फिक्र हो ना राहों का पता, बस साथ हो कोई अपना और खूबसूरत हो हर लम्हा। दोस्तों, इसी रोमांटिक एहसास और मधुर धुन के साथ अब पेश है फिल्म जबरदस्त का एक बेहद सा खूबसूरत गीत। आइए इस गीत का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, आप भी तैयार हो जाइए इस सुरीले सफर पर निकलने के लिए, जहां हवाओं में है प्यार का एहसास और गीत में है दिल की बात। आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: That is all for today, listeners. I hope you all enjoyed the songs today and that you'll catch us back tomorrow only on Akashvani Itanagar. This was your host Sam, signing off for the day. Goodbye.
1: HIV के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
2: HIV संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
1: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता।
2: HIV की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
1: HIV से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
2: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल की बात।
1: श्रोता दोस्तों, अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें, हम फिर लौटेंगे कार्यक्रम यादों की बारात के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के बीच श्री नवीन ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।

0: अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए प्रस्तावित है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने इस संबंध में सीजेपी द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना आवश्यक है। राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सराय कालेखां और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के वरिष्ठ सलाहकार अनमोल शेर बेदी ने जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक में ये बात कही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद समाज में सुख, करुणा और नई उम्मीद लेकर आए। उन्होंने चारों ओर शांति और समृद्धि की भी कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar in the national capital today, citing previous violations of guidelines and public safety concerns. Addressing the media in New Delhi yesterday, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said applications seeking permission to hold protests or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance. Ms. Prasad further stated that prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita are currently in force in the area, imposing necessary restrictions to maintain public safety and law and order. Meanwhile, due to security reasons, the entry and exit at 45 metro stations will remain closed today till 6 p.m. These include Janpath, Patel Chowk, Central Secretariat, Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, New Delhi, Seva Teerth and Mandi House. Delhi Traffic Police has also issued an advisory for traffic diversion in various parts of the national capital. BJP National President Nitin Naveen today alleged that opposition parties are making efforts to create instability in the country and acting at the behest of foreign forces. Talking to reporters in New Delhi, Mr. Naveen accused opposition parties of attempting to create a highly dangerous and serious situation in the country. Mr. Naveen also accused the opposition of insulting the public mandate by spreading falsehoods in the name of the constitution. He said repeated electoral

दोस्तों, यादें भी कितनी खूबसूरत होती है ना। कभी किसी पुराने गीत की धुन हमें बीते हुए लम्हों में ले जाती है, तो कभी किसी गीत के बोल किसी खास इंसान और उससे जुड़ी यादों को फिर से ताजा कर देते हैं। वक्त गुजर जाता है, जिंदगी आगे बढ़ जाती है, लेकिन कुछ पल और कुछ एहसास हमेशा हमारे दिल के करीब रहते हैं। तो दोस्तों, आज फिर से तैयार हो जाइए यादों के उसी हसीन सफर पर चलने के लिए, जहां हर गीत अपनी एक कहानी सुनाता है और हर धुन के किसी कोने में छुपी याद को जगा देती है। और आप सुन रहे हैं यादों की बारात कार्यक्रम, जहां गीतों के साथ जुड़ेंगे यादें और यादों के साथ जुड़ेंगे दिल के एहसास। तो बने रहिए हमारे साथ और लुफ्त उठाइए इस सुरीले सफर का। आइए दोस्तों, इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में।

दोस्तों, वादे अक्सर मोहब्बत में किए जाते हैं, कुछ पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। वक्त बीत जाता है मगर यादें नहीं जाती। कुछ धुने हैं जो दिल से कभी उतर नहीं पाती। दोस्तों, इसी दर्द, इंतजार और मोहब्बत के एहसास को अपने अंदर समेटे हुए अब पेश है एक सदाबहार नगमा, क्या हुआ तेरा वादा। तो आइए इस गीत के साथ फिर से जीते हैं उन यादों को जो वक्त के साथ भी दिल में कहीं महफूज रहती है। सुनिए और खो जाइए इस खूबसूरत नगमे में यादों की भारात कार्यक्रम पर। आइए आनंद लेते हैं अब इस गीत का।

10:30 के साथ अब समय हो चला है हमारे कार्यक्रम यादों की बारात को यही विराम देने का। उम्मीद है कि आज के इन सदाबहार नगमों ने आपको अपनी कुछ पुरानी यादों से रूबरू कराया होगा और आपके दिल में बीते हुए खूबसूरत लम्हों को फिर से ताजा किया होगा। तो दोस्तों, इन्हीं हसीन यादों और गीतों के एहसास को अपने दिल में संभाले रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अरुण FM 103.1 MHz के साथ बने रहिए। और दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले कार्यक्रम की तरफ। तो दोस्तों, बाहर मौसम में छाई है धुंध और ऐसे सुहाने मौसम में अगर साथ मिल जाए मधुर गीतों का तो दिन की शुरुआत और भी खूबसूरत हो जाती है। हमारे सभी फौजी भाइयों और बहनों के लिए जो इस धुंध भरी दोपहर का आनंद ले रहे हैं, अब लेकर आए हैं गीतों की एक प्यारी सी महफिल। तो दोस्तों, आइए शुरू के सफर में शामिल होते हैं और अपने पसंदीदा गीतों के साथ ऐसे दिन को यादगार बनाते हैं। आप सुन रहे हैं गीतमाला कार्यक्रम और आप बने हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz के साथ। चलिए दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम गीतमाला का।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों, हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नया हौसला और कुछ नया कर जाने का जज्बा लेकर आती है। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हमारे इरादे मजबूत हो और दिल में जीतने का जुनून हो तो हर मंजिल हासिल की जा सकती है। और जब बात हो जोश, जुनून और जीत के जश्न की, तो एक ऐसा गीत जरूर याद आता है जो अपनी धुन से हर किसी में नई एनर्जी भर देता है। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त है एक ऐसे ही एनर्जेटिक और जोश से भरे नगमे का जिसने दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का ये मशहूर गीत जिसे अपनी आवाज दी है सुखविंदर सिंह ने और जिसके संगीतकार है एआर रहमान। तो दोस्तों, अपने जोश को रखिए बरकरार और तैयार हो जाइए इस जबरदस्त म्यूजिकल ट्रीट के लिए। सुनिए जय हो गीत माला कार्यक्रम पर सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम गीतमाला यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
1: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
0: श्री चौहान ने उपचुनावों के नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल, असम, पुदुचेरी में भाजपा और एनडीए को शानदार जीत मिली है। इससे पहले राजस्थान और त्रिपुरा के स्थानीय निकाय चुनावों में भी जनता ने भाजपा का साथ दिया। उन्होंने कहा कि जनादेश स्पष्ट है, देश का संकल्प विकसित भारत का निर्माण करना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।

0: भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस बीच दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी साझा करेंगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सरायकाले खां और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया सोमवार को अहमदाबाद में ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल प्रतियोगिता 2026 का उद्घाटन करेंगे। ये खेल भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा गुजरात सरकार के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये खेल प्रतियोगिताएं सांस्कृतिक आदान प्रदान, विरासत संरक्षण और खेल के माध्यम से जन सहयोग को बढ़ावा देंगी। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के वरिष्ठ सलाहकार अनमोल शेर बेदी ने जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक में ये बात कही। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच पुरुषों का तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला कल इंदौर में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. Delhi police has made extensive security arrangements in the New Delhi area to ensure public safety in view of the call for protest at Jantar Mantar by the CJP today. Police personnel are deployed at multiple checkpoints in New Delhi district. Meanwhile, due to security reasons, the entry and exit at 45 metro stations will remain closed till 6 this evening. However, interchange facility will remain available at all the concerned metro stations except New Delhi metro station. Namo Bharat train services between Saraikale Khan and New Ashok Nagar Namo Bharat stations in Delhi will also remain closed till 10 p.m. today. BJP National President Nitin Naveen alleged that opposition parties are making efforts to create instability in the country and acting at the behest of foreign forces. Talking to reporters in New Delhi today, Mr. Naveen accused opposition parties of attempting to create a highly dangerous and serious situation in the country. He added that Indian democracy possesses immense strength and the people of the country would unite to thwart any such attempts.
2: Over the past 12 years, under the leadership of the Prime Minister, we have steered the country out of an atmosphere of fear and endeavored to eradicate terrorism and Naxalism from their very root. Yet there are still individuals with an urban Naxal mindset who are intent on destabilizing the nation. The youth of India are deeply connected to the Indian culture and democracy and are committed to the Indian constitution. The way you are attempting to challenge the country's constitutional framework and its democracy and the insulting language you employ against individuals holding the nation and highest officers will never be accepted by India's 140 crore citizens and you will certainly face the consequences.
1: The Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan alleged that the opposition is weakening constitutional institutions and breaking people's faith in democracy. The Union Minister claimed that all this is being done with the support of foreign powers. Addressing a press conference in Bhopal today, Mr. Chauhan said the opposition is unable to win in the field or win the people's trust, so it is trying to spread chaos on the streets. Defence Minister Rajnath Singh today attended key events of the multinational air exercise Tarang Shakti at Air Force Station Jodhpur in Rajasthan.

0: Pakistan. During his visit, the defense minister interacted with personnel from the Indian Air Force and participating foreign air forces. He also witnessed an impressive aerial display of modern fighter aircraft and inspected an exhibition showcasing indigenous and foreign combat aircraft. The multinational exercise brings together air forces from different countries to demonstrate their operational capabilities, advanced aviation technologies, and military coordination. India has warned Pakistan that it will not be deterred by nuclear threats and will deliver a fitting response to any terrorist attack. India's senior advisor to the permanent mission to the UN Conference on Disarmament in Geneva, Anmol Sher Bedi, made the remarks while speaking at the United Nations General Assembly's first committee meeting in New York yesterday. He said India would make no distinction between those who sponsor terrorism and those who mastermind it. Mahalaya, marking the advent of goddess Durga, is being observed today. The occasion signifies the end of Pitrupaksh, dedicated to ancestors, and the beginning of Devi Paksh, the auspicious fortnight preceding Durga Puja. Prime Minister Narendra Modi has extended greetings to the people on the occasion in a social media post. Mr. Modi prayed that the blessings of Ma Durga bring happiness, compassion and hope to society. The Prime Minister also hoped that peace and prosperity prevails all around. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Bihar, Karnataka, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir for the day. IMD said conditions are becoming favourable for further withdrawal of the southwest monsoon from some more parts of eastern India and northern peninsula and many parts of northeast India during the next 2 to 3 days. In men's cricket, India will face the West Indies in the third T20 International at the Holkar Stadium in Indore tomorrow. The match is scheduled to begin at 7 p.m. The five-match series is level at 1-1 after the West Indies defeated India by 6 wickets in the second T20 International in Ranchi last evening. And with that, we end this news bulletin.
1: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। आइए दोस्तों, देश और दुनिया की तरोताजा समाचारों के बाद अब रुख करते हैं कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक की ओर। जी दोस्तों, अब वक्त है गुजरे हुए दौर के उन खूबसूरत नगमों को याद करने का जिनकी मधुर धुनें आज भी दिल को सुकून देती है। 60s से लेकर 80s तक के हिंदी फिल्म संगीत अपने आप में एक अनमोल खजाना है, जहां गीतों के बोलों में मोहब्बत है, आवाजों में मिठास है और हर धुन में छुपी है एक खूबसूरत कहानी। और दोस्तों, उस दौर के गीत आज भी जब रेडियो पर बजते हैं तो दिल अपने आप उनके साथ जुड़ जाता है। किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मुकेश जैसे महान गायकों की आवाजें आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसी हुई है। तो दोस्तों, इसी सुरीले सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसके बोल मोहब्बत के एहसास को बहुत ही खूबसूरती से बयां करते हैं। फिल्म कभी कभी का ये सदाबहार नगमा, जिसे अपनी आवाज दी है मुकेश ने और जिसके बोल लिखे है शाहिर लुधियानवी ने, जबकि संगीत दिया है कैयाम साहब ने। तो आइए सुनिए कभी कभी मेरे दिल में और खो जाइए मोहब्बत के उन हसीन एहसासों में। और दोस्तों, बने रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ।

0: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs 10.49 lakh.
1: And benefits up to Rs 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: HIV के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
3: HIV संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
2: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता।
3: HIV की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
2: HIV से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
3: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
4: दोस्तों, पिछले नगमे में हमने मोहब्बत के खूबसूरत एहसासों को महसूस किया।

और अब इसी सुरीले सफर को आगे बढ़ाते हैं एक और सदाबहार गीत के साथ। जी दोस्तों, कभी कभी जिंदगी एक कोरा कागज की तरह होती है जिस पर वक्त अपनी कहानी लिखता चला जाता है। कुछ पन्ने खुशियों से भर जाते हैं, कुछ पर यादों के रंग बिखेर जाते हैं और कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। दोस्तों, अब पेश है फिल्म आराधना का एक बेहद मधुर और यादगार गीत जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी खूबसूरत आवाजों से सजाया है। सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा यह नगमा आज भी अपनी सादगी और मिठास से दिल जीत लेता है। तो आइए दोस्तों, सुनिए इस गीत को और खो जाइए मोहब्बत के उन हसीन एहसासों में। बने रहिए कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक के साथ सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, पुराने गीतों की खास बात ही यही है कि इनकी धुन और बोल सीधा दिल को छू जाते हैं। कभी कोई गीत हमें गुजरे हुए पलों की याद दिलाता है तो कभी कोई नगमा मोहब्बत के उन हसीन एहसासों में ले जाता है जहां सुकून भी है और अपनापन भी। और दोस्तों, अब हमारी सुरीली महफिल में बारी है एक ऐसे ही रोमांटिक नगमे की जिसकी मधुर धुन और लता मंगेशकर की जादुई आवाज आज भी सुनने वालों को अपनी तरफ खींच लेती है। फिल्म अनामिका का ये खूबसूरत गीत, जिसे संगीत से सजाया है आरटी बर्मन ने, अपने दौर का एक यादगार नगमा है। तो दोस्तों, अपने सारे काम के बीच कुछ पल सुकून के निकालिए और लुफ्त उठाइए इस सदाबहार गीत का।

दोस्तों, इसी के साथ अब समय हो चला है आज के हमारे कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक को यही विराम देने का। उम्मीद है कि 60s से लेकर 80s तक के इन सदाबहार नगमों ने आपको खूबसूरत यादों और मधुर दिनों के सफर पर जरूर ले गया होगा। दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो कितने भी पुरानी क्यों ना हो जाए, उनकी मिठास कभी कम नहीं होती। उनके बोल, उनके धुन और गायकों की आवाज हमेशा हमारे दिलों में बसी रहती है। तो दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत गीतों की यादों को अपने साथ संभाले रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद है आपका दिन खुशियों और सुकून से भरा रहे। और दोस्तों, अब वक्त है अपने अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ने का। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हिंदी फिल्म सॉन्ग्स की। दोस्तों, हिंदी फिल्मों के गीतों की दुनिया भी बड़ी कमाल की है। कभी ये गीत हमें हंसाते हैं, कभी दिल के करीब किसी की याद दिलाते हैं, तो कभी अपनी धुन पर तिरकने के लिए मजबूर कर देते हैं। और दोस्तों, हर गीत का अपना अंदाज है, अपनी कहानी है और अपना एक अलग ही रंग है। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए हिंदी फिल्म संगीत की एक और खूबसूरत महफिल के लिए, जहां मिलेंगे आपको दिल को छू लेने वाले नगमे और मनोरंजन से भरपूर गीत। आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम और आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। तो दोस्तों, रेडियो की आवाज थोड़ी बढ़ा लीजिए और लुफ्त उठाइए इस सुरीले सफर का।

0: स्पोर्ट्स इकोसिस्टम।
1: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं।
0: With 85 medals in the recently concluded Asian Games, India finished fourth with a spectacular performance. Target Olympic podium top national sports policy, which align with the national education policy, Fit India movement. There are several initiatives by the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
2: India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Bihar, Karnataka, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir for the day. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Delhi police makes elaborate security arrangements amidst call for protest at Jantar Mantar, detain some individuals planning to participate, rail and metro services partly affected in national capital. BJP accuses opposition of weakening constitutional institutions and breaking people's faith in democracy. Defence Minister Rajnath Singh says India is closely monitoring neighbourhood and global security developments, reiterates armed forces are undergoing major transformation under Atmanirbhar Bharat vision. India slams Pakistan at UN General Assembly for spreading lies and falsehoods about Jammu and Kashmir. And IMD forecasts heavy rainfall over Bihar, Karnataka, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir today. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने दोहराया कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत सशस्त्र बलों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली जिले में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है।
4: नई दिल्ली में आज जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ भी है और हम लोग तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि आज के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे।
3: इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है।
5: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को तो वहाँ पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए।
3: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
6: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है। वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो

0: ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियां भी रद्द कर दी हैं। रेलवे के अनुसार कल दोपहर 2 बजे से के बाद अपने प्रारंभिक स्टेशनों से रवाना हुई और आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात की समस्या की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने सीजेपी की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का भी उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत के विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
3: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश, मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहें, expert@AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के देशों के घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है।
5: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
6: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
5: पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी।
1: वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में

0: मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के अलावा 7 देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इसमें F-35 लाइटनिंग 2, राफेल और F-16 सहित कई उन्नत युद्धक विमानों के साथ परिवहन एवं हवा में ईंधन भरने वाले विमान शामिल हैं। पावर इन पार्टनरशिप थीम पर आयोजित इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना और परिचालन अनुभवों का आदान प्रदान करना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सहयोग से आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में संयुक्त रूप से रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2026-27 का आयोजन किया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स के माध्यम से अपनी रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार की भावना को प्रमुखता मिली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देवघर का एम्स संतुलित और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पूनमल्ली और वडापलानी के बीच 14 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी मद्रास स्थित ब्रेन सेंटर का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को वास्तव में कैसे बदला जा रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के पदक प्रदर्शन में भी दिखाई दिया है। 2010 में खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया तक सरकार ने जमीनी स्तर से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करने की दिशा में कई पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में भी खेल व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
3: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं।
2: हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और 4th स्थान हासिल किया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी TOPS, राष्ट्रीय खेल नीति और फिट इंडिया अभियान जैसी पहले इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस दिशा में राज्य सरकारें भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 4th समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे और पत्र सूचना कार्यालय में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। मौसम विभाग ने आज बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन में पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी।

0: हो रही है। आज महालया पर्व है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला यह त्योहार माँ दुर्गा के आह्वान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महालया के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुलभ, किफायती और जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 53 टेली मानस सेल और 48 लाख से अधिक कॉल प्राप्त होने के साथ मानसिक स्वास्थ्य सहायता अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोता दोस्तों, अभी आप बारी बारी से सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। आपको बता दूं, आपने ट्यून इन किया हुआ है आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही दोस्तों, चलिए अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s का। जी दोस्तों, ये वो कार्यक्रम है जहां हम आपको सुनवाते हैं 90s के हिट गानों को।

चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपके पसंदीदा कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s का, जहां हम लेकर आते हैं 90s का वो खूबसूरत गाने। जी दोस्तों, जो आज भी हमारे दिलों में एक खास जगह रखते हैं, उस दौर के गाने, उनके मधुर धुन और दिल को छू लेने वाले बोल आज भी पुराने यादों को ताजा कर देती है। दोस्तों, आज के इस म्यूजिकल सफर की शुरुआत करते हैं फिल्म हम दिल दे चुके सनम के एक बेहद खूबसूरत गाने आंखों की गुस्ताखियां से। इस फिल्म की कहानी नंदिनी, समीर और वनराज के इर्द गिर्द घूमती है। दोस्तों, नंदिनी और समीर को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन हालत उन्हें अलग कर देती है। बाद में नंदिनी के पति वनराज उसके प्यार को समझने की कोशिश करते हैं और उसे समीर से मिलाने के लिए सफर पर निकल पड़ते हैं। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन ने नंदिनी, सलमान खान ने समीर और अजय देवगन ने वनराज का किरदार निभाया था। और दोस्तों, अब सुनिए इसी फिल्म का ये दिलकश नगमा, जिसे अपनी आवाज दी है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने। तो दोस्तों, अपनी यादों को ताजा कीजिए और लुत्फ उठाइए आंखों की गुस्ताखिया का, सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर।

प्यार का एहसास जब आंखों से शुरू होकर दिल तक पहुंचता है तो हर पल कुछ खास बन जाता है, और जब किसी से नजरें मिलती है तो जिंदगी में एक नई सी खुशी और एक नया एहसास जागने लगता है। इसी खूबसूरत एहसास को आगे बढ़ाते हुए अब पेश है एक और मधुर नगमा, जब से मिले नैना। तो दोस्तों अपनी रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए और इस गाने की धुन के साथ खो जाइए प्यार भरे उन हसीन लम्हों में।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s यही पर समाप्त होता है और आपको बता दूं अब से कुछ ही देर बाद बारी बारी से यानी 2:57 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर केंद्र से प्रसारित न्यूज हेडलाइंस। 3:00 आप सुन पाएंगे मिश्मी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:15 पर प्रसारित होगा थाई कमती श्रोताओं का कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें और बने रहे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। दोस्तों हम फिर हाजिर होंगे 3:30 पर कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट के साथ।
2: दिस इज मॉर्गन बागरा विद टुडेज न्यूज हेडलाइंस। Defence Minister Rajnath Singh today attended key events of the multinational air exercise Tarang Shakti at Air Force Station Jodhpur in Rajasthan. During his visit, the Defence Minister interacted with personnel from the Indian Air Force and participating foreign air forces. South African jurist of Indian origin Navanitham Navi Pillai has won the Nobel Peace Prize yesterday.

0: ชอบนั่งอคิงนำนาลีในสตูดิโอแมจิกันมาว่าพาป้อยเนี่ยจะหั่งมาไหนคำไตคำตีเฮาติใครไม่สุดเยียวหอ
1: श्रोता दोस्तों अभी आप बारी बारी से सुन रहे थे आकाशवाणी ईटानगर केंद्र से प्रसारित न्यूज हेडलाइंस मिसमी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम और थाई कमती श्रोताओं का कार्यक्रम। इसी के साथ ही दोस्तों अब वक्त हो चला है आपके पसंदीदा कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट का।

दोस्तों, फिल्मों की दुनिया में हर दिन कुछ नया देखने और सुनने को मिलता है। कभी कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड्स बनाती है तो कभी किसी बड़े सितारे की जिंदगी से जुड़ी खबर सुर्खियों में आ जाती है। कहीं आने वाली फिल्मों की रिलीज डेट बदल जाती है तो कहीं बॉलीवुड और स्पोर्ट्स की दुनिया के सितारे एक साथ नजर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के बॉलीवुड अपडेट की और जानते हैं फिल्मी दुनिया की कुछ खास खबरें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 द कंक्लूजन की। तो दोस्तों, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलीज के 8 दिनों के अंदर ही फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 400 करोड़ रुपए के आखिरी को पार कर गया है। फिल्म के सस्पेंस भरी कहानी और थ्रिलर अंदाज को लेकर दर्शकों में काफी दिलचस्पी देखी जा रही है। और दोस्तों, अब सबकी नजर इस बात पर है कि फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में कमाई के और कौन से नए मौके हासिल करते हैं।

दोस्तों, नाना पाटेकर से जुड़ी एक खबर सामने आई है। अभिनेत्री अनीत पद्दा ने उन्हें याद करते हुए अपने जज्बात सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। अनीत ने बताया कि अपने करियर के शुरुआती दौर में नाना पाटेकर के साथ काम करने का मौका मिलने उनके लिए बहुत खास अनुभव था, जिसे वो जिंदगी भर संजो कर रखेगी। दोनों मैड डॉग फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी फिल्म शक्ति सालिनी से जुड़े हुए हैं। वहीं शक्ति सालिनी की रिलीज डेट को लेकर भी चर्चा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को 2027 की शुरुआत तक आगे बढ़ाया जा सकता है। इस बदलाव की एक वजह शाहरुख खान की आने वाली फिल्म किंग के साथ बॉक्स ऑफिस पर टकराव से बचाव बताई जा रही है। हालांकि फिल्म की फाइनल रिलीज डेट को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की। तो दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके पर्सनालिटी राइट्स से जुड़े केस में निर्देश दिया है कि अगर वो अपना मामला आगे बढ़ाना चाहते हैं और संबंधित पार्टीज के साथ समझौता नहीं हो पाता तो उन्हें कोर्ट में पर्सनली पेश होना होगा। ये केस उनके नाम, आवाज, तस्वीर और पहचान के बिना अनुमति इस्तेमाल से सुरक्षा पाने की मांग से संबंधित है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर सबकी नजर बनी हुई है। दोस्तों, अब एक दिलचस्प खबर बॉलीवुड और फॉर्मूला वन की दुनिया से है। अभिनेत्री करीना कपूर खान ने एमसी लेरन फॉर्मूला वन ड्राइव लैंडो नॉरिस के साथ एक खास कन्वर्सेशन की है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स के दौरान हुई इस मुलाकात में सिनेमा, रेसिंग और भारतीय जेस्टर्स जैसे दिलचस्प विषयों पर बात हुई। इस कन्वर्सेशन का वीडियो गूगल इंडिया ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसके बाद ये मुलाकात एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, अब

मैं बात करते हैं सलमान खान से जुड़ी एक लीगल खबर की। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म काला हिरण बैटल फॉर लेगेसी के रिलीज पर रोक लगाने की मांग से जुड़े केस में सलमान खान को नोटिस जारी किया है। ये मामला अभी कानूनी प्रक्रिया के अधीन है और आगे की सुनवाई में इससे जुड़ी और जानकारी सामने आ सकती है। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी आज के कुछ खास खबरें। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की कमाई से लेकर बड़े सितारों की प्रोफेशनल जिंदगी और कानूनी मामलों तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हलचल जारी है। दोस्तों, इसी के साथ आज के बॉलीवुड अपडेट में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही फिल्मी खबरों और मनोरंजन की दुनिया के नए अपडेट्स के लिए बने रहे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। और दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा आपसे नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए अपना पसंदीदा अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। आइए दोस्तों, इसी के साथ ही बॉलीवुड अपडेट्स कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं फिल्म मैं वापस आऊंगा का एक बहुत ही खास गीत।

श्रोता दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट यही पर समाप्त होता है। आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे वांगचो बोली में समाचार।

इजा आकाशवाणी तानगर अनि अक्टोबर ले मानि बन तारिख हुनिबार इरुमा केम वांचो साइ का हवांग बांग ना हवांग का हो पाई फाले मंचुई जामे कमे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनि राजस्थान तो जोधपुर अंके एयरफोर्स स्टेशन मा अतु अजा के तरंग शक्ति लेके मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तो हुआ हकले हायम डिफेंस मिनिस्टर इंडियन एयरफोर्स खातो के सेपाई थंपई जातिका तिकले वन रे के बोमा फॉरेन एयर फोर्सेस थंपई जु अपोंगले चे फाइटर डिंगपिक बु पीले हाउक बोमा केम डेस्मर रिंके हिया मी डेस बुतो रिंके ले डिंगपिक बु आहाउ के एग्जीबिशन तो जु हु नले हाया मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मा माथम माथम डेस तो के एयर फोर्सेस थम ए तमले मोक्सा के बोमा एविएशन टेक्नोलॉजी सिया मिलिट्री कोऑर्डिनेशन फाइ मोकले इंडियन खनक जिंग जिंग चंगके साउथ अफ्रीकन जूरिस्ट नवनेथम नवी पीलाई ए तुनु नोरिंग के बोमा इंटरनेशनल लॉ तोले मैले मोक्सा के खोमा मनी नोबेल पीस प्राइज कपले होरंग यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ बोमा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस खामा जास चु चंगके पीलाई मनमी सुनमी खुई कपले खनक नुसा राइट्स हेया इक्वेलिटी पार्टिकले मोकले चोंग चंगले तमिल तोके काके इंडियन काको मा डारबान तो 1941 रंगपो मा पुपाई के साउथ अफ्रीका तोके हाई कोर्ट मा मी नक मी नुशिको बुहान पंग मा अवाले मोक्सा के खामा चीति पोंवंग मी हक चंगके अनि बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नबीन ए ओपोजिशन पार्टी थम ए केम डेस मा होफान चिमोंगले ना चांगले मी डेस थम होनजे तोन ले मोक्सा ले ngole ले फेले हाले न्यू दिल्ली तो का होम थम पे वन का मिस्टर नबीन ए ओपोजिशन पार्टीज खातो थम तो डेस थम ना जोले तुंग ले मोक्सा ले ngole ले जोंग वन ले बीजेपी प्रेसिडेंट ए हबचू चावानु मजाउ जोजे के तुई ताई ताई को ले चु केम डेस मा माइलेवे मोक्सा ले ngote पुली चुबन ले मिस्टर नबीन ए ओपोजिशन थम ए कॉन्स्टिट्यूशन वन लम मन मा खनक नु ए फन ले फा के था यो वन हाई ले मोकले ले चू वन ले छे हले ओपोजिशन पार्टीज थम मोंग तो इलेक्ट्रल मा चिलत ले तेले ले थाई ले ngo के मोंग चिक मोंग मा चांगपु ले वन के बोमा देस खोसाम तुइताई यांग अदन थे बा गवर्नमेंट चिम खंग खत ले वन यो ले चू वन ले योरन मिनिस्टर सर्बानंद सोनवाल ए मनी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE तो सार्जा एनकोरेज होनुमा ड्रोन मखांगे सिंगले हापसान के चांगकोलेचु पनामा टोके वांग अंके टांगान वंती टैंकर्स अंके इंडियन खनक मिहक चानी पांगवे मेमे शोलवे तैले ले होले हले सोशल मीडिया मा मिस्टर सोनवाल ए इंडियन क्रू थम खुइखप अंगले केम ऑथोरिटीज थम ची मखांग ए शिप मैनेजमेंट कंपनी फै अतिकशो लंगो तानवे तैले ले होले हले गल्फ रीजन बोमा ब्लैक सी निहातो ले हनपाई पोके खों बूतो सिंह ले हापसान के खोमा अबर असन अंकलाई के चंके अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट स्टॉक ऑफिसर्स बू चांगपू ले गवर्नमेंट स्कीम्स या प्रोग्राम्स भाई के सत मोट फाहाई फाहाई हे ले कमीशन्स मनमा यांग यांग खनक नु अंके मुंजान जूले लंगले तुंगले लेके चायका प्लानिंग हिय इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ए अतात अंग कपले ले पब्लिक नोटिस पाले हया खोमा हया डिपार्टमेंट से यांग यांग खनक होथम होजा कॉन्ट्रेक्टर्स बोमा

0: Anniversary pam hato le haning ke kato man le chu ta ka phaboma ngunjan ko ko li yang chang thai chu hopa ko to mai le tik to la le holam to le tik ko ong mot le hole awwa e hle yang la yang ton thai ba ma hato so ko ke police station bata whatsapp number 94360400 ma anti corruption bureau ฮาต่อไทยจูเล่ใจกะคำคำเล่ก็เกาะเล่ฮอเล่เสียงอัปเปอร์มัลติเพอร์เพสโปรเจกต์ริงไอเล่ตุงเลงอกาหันปักมาพรีฟิสิบิลิตี้รีพอร์ตปักติดต่อเลงอกาไปอาวาเกะเข้ามาออนไลน์ชัลโปรเดสอันลอว์ฟูลแอคทิวิตี้ส์พรีเวนชั่นแอคต์2014ข้ามาอัปเปอร์เสียงดิสตริกต์โอเกะเกะกูติงอังเกมีฮวาคลิชักเล่ก้าเข้ามาอย่างก็เล่ฮาเล่อดุมตายอมอมักปารอนokut palo boma oson paron le pasikat makle haya thoma upper siang district magistrate chimakange apua pawanlam khama hale mi hakali khakang ke orders ko kachangle haya official order ma dma hale pangnu tikto ke boma khanak nu han pakma tata ning ke tuitai nak adan le ajangla le phanpu le hok changke nawga lok sabha constituency by election ma AIUDF chief Badruddin Ashmal to BJP candidates Devasis Sharma e lakta yatpuni ani honi sali votes e athakle lakke boma Congress candidate Sibamoni Bora aramlik to haile hale vote October arok to tapke mani akyak kachangke haya seat haya consensus anke Congress MP Pradyut Bordoloi BJP khato namma ke makhang e ahon lengo kachangke आसाम मा पार्लियामेंट्री सीट्स बनली खामा मनि हले लक्के ओले लोकसभा एमपीस बीजेपी अंके मिहक बन नुइना अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट खांग के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज थामपुरम बन अनि लेके स्टेट लेवल वाइल्ड लाइफ वीक हाडंग हमले जो अतु या लंगो के मनि ईटानगर अंके स्टेट बैंक्वेट हॉल मा होनुमा अतु या ला शुक्ले कनेक्टिंग हैबिटेट्स thriving wildlife leke national kamik phai hale atu ujake to chief guest sang environment forest and climate change minister wangki lobang hakle hayama pasikat forest division ang forest division khakama ataile maile mokle leke manchong boma frontline personnel heya officers thamle mi hak banramang departmental commendation certificate lekole haboma mani new delhi to Vanija Bhavan ma the SAP runs perennial leaders to heaven boma the wild green kingdom leke manma Arunachal Pradesh bama coffee table light up la laile hale Arunachal Pradesh governor KT Parnaik e Yonan Mansa Kiran Rijiju chief minister Pema Khandu minister of state for culture Rao Indrajit Singh Niti Aayog vice chairman Dr Ashok K Lahari hompaitam leda la laile Hayalai military historian, author, photographer, woba, documentary film ring michu changke, Sip Kunal Varma e ran ring ke changke, anyi kaka ho iwai. Ija Akashwani Itanagar ka ho bhai ma khat khat khat ke ka apa hai.
1: पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: श्रोता दोस्तों अभी आप सुन रहे थे वांगचो बोली में समाचार। आपको बता दूं वांगचो श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर। इसी के साथ ही दोस्तों चलिए अब वक्त हो चला है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का। तो दोस्तों आज के संगीत में सफर की शुरुआत करते हैं साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म लव आजकल के एक बेहद खूबसूरत गाने

ने आज दिनचर्या के साथ। दोस्तों इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे और ये फिल्म प्यार के बदलते अंदाज, रिश्तों और दूरियों की कहानी को दिखाती है। प्रीतम के संगीत और राहत फतेह अली खान की सोलफुल आवाज में सजा ये गाना अपने अंदर प्यार और दुआओं से भरे एक खूबसूरत एहसास को समेटे हुए है। तो दोस्तों आइए सुनिए फिल्म लव आजकल का ये प्यारा सा नगमा अरुण FM 103.1 MHz पर।

दोस्तों, अभी आप इस गीत को सुन रहे थे उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाजों में। तो दोस्तों, गीतों के इस सिलसिले में आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के दौरान आप सुनेंगे इडुमिसमी बोली में समाचार, और इस छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे कुछ और खूबसूरत हिंदी फिल्मी गीतों के साथ। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, बने रहे अरुण FM 103.1 MHz।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए, अब प्रस्तुत है इदुमिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर माचला पुचे जी हूँ मानुली नी ऐतनीचे इदुमिश्मी आहोला के जी दरगालंबो राजस्थान में ची जोधपुर एयरपोर्ट स्टेशन में ने तारांग शक्ति एक्सरसाइज अखगा मा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह में ओना गिबा ने इंडियन एयरफोर्स में ची चौपाया लंबो गो ची चाह अबदा आहोगा आ एक्सरसाइज में ने इंडिया लापागे अवता आदि उखो में ची जेट फाइटर अलंबो में अड्री लिखेगा मा डिफेंस मिनिस्टर में अथो अबदा आहोगा यहाँ तिका मा खो नोआ अखाउ पुचे नोबेल पीस प्राइज है साउथ अफ्रीका माचे नबनाथम नवी पिले हगा बदा अहोगा पिले में बहा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स माचे हेता शाह आई दोने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आई सी जे माचे जज साउच महो यो मा लगे ने इमुतान दो यहाँ लाहे गाक अतिकोलम बुमाने टांगो तू पीले है इंडिया तमिलनाडु मचे नाना बगाने इनो मामला हो क्या कपड़ों के मचे नो साउथ अफ्रीका दरबान आते को ने आए सीधा लगा आ मैं साउथ अफ्रीका मचे मा याकू ऐहें दो हाई कोर्ट जज सातु सीधा लाओगा ओपोजिशन पार्टी अलग में आउटा चे गो आवाज गने इंडिया ती यहाँ यहाँ एका दाने बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन में होना मदनी माचे आहो मीडिया मुगो छि जगह महो लगने कानून आज पोमा लाता छि गने हुगा चाहे एहागा दा लगादा अहोगा इलेक्शन माना ना अने तो आज छि भी मैं आतिका छि इमु केबा गेबा लगा छि दा लाने आय छि मा दा न छि ला पगे हुगा चाहे गवर्नमेंट में ना पा अनगा ओदा ने नीति में लाओगा दा अहोगा पनो माचे रोगमा जिया इंडिया माचे इमु है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यू इमाचे पोर्ट के माने ड्रोन बम अबोगा अदुगिमा ना दुगुमी पा जिगा दान ने यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सर्वनंदा सोनोवाल में लगाने आ हुजे बु चिपो नाना चिचगा जिदा लगादा आ होगा अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट माचे प्लानिंग दोने इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट अमुमा ने हिमुला कदा अजिया बैग में अम हिवे युवा असतिगा लदा ने एंटी करप्शन ब्यूरो ए सी बी मच में ला होगा ने अधिकाची इमु में कॉन्ट्रैक्ट जो धोने आर ओ स्कीम कोकोमा ने पाऊ आशी ए धोने अकाउंट नंबर आशिका बुया हाजिम ना लगा दा आ होगा अली लगा दा अजिया ची पो असगा ही बुया व्हाट्सअप नंबर खीनी कापी खासो तारो जीरो कापी जीरो जीरो कापी जीरो मा ला के तुझे ना ला होगा अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट में इनु ऐसा कहने हुलुपी माच नुचे अपुआपा कानून आचुको को मने सियांग चे थुमा डैम काची अजीजिम ना लाया इमु कापी रोतेगा पता आहोगा अदुम तायम ओमक पारोन उकुल पालो दोनें ओसन पारोन लाएगा सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम यूथ विंग माच प्रेसिडेंट दोनों किसान मेंबर अलंबर है पासीघाट मने रोगे ने इटानगर पुलिस थोका मा अंगा बदा आ होगा असम नौगांव लोकसभा सीट के बने एम्बो तगा इलेक्शन अखगा मा बीजेपी माचे देवाशीष कुमार में ए आई यू डी एफ माचे हेता बदरुद्दीन अजमल है लाख बेदो ने एजार बाका पे होगा या ने माओ का या अन्य होगा पी बोर्ड मने आने बदा आ होगा कांग्रेस एम पी

0: ओ, मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: श्रोता दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले आप सुन रहे थे इडुमिश्मी बोली में समाचार और इडुमिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम। आपको बता दूं, इडुमिश्मी श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर। आइए दोस्तों, इसी के साथ ही हम कंटिन्यू करते हैं हमारी हिंदी फिल्मी गीतों का सिलसिला और अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म तमाशा का एक एनर्जेटिक सॉन्ग।

तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज की हमारी दूसरी प्रसारण सभा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आप सबको बेहद पसंद आए होंगे। जाते जाते आपको बताना चाहेंगे कि अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांगसा बोली में समाचार। आगे के कार्यक्रमों के सफर में यानी हमारी तीसरी प्रसारण सभा में आपके साथ जुड़ेगी आपकी अपनी आरजे अपर्णा शर्मा। तो अब आप मुझे यानी आपकी रेडियो साथी गिची कनिक और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद तमाम सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी डोले तथा तकनीकी अभियंता एचएम भूषण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे तांगसा समाचार। अगर आप हमारे तांगसा श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रेंड्स मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलोहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों वो कहते हैं ना कि परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य को आस्था कहा जाता है। तो आज इस पॉजिटिव थॉट के साथ ही हम अपनी तीसरी प्रसारण सेवा की आगाज करते हैं। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, अ वेरी वेरी वार्म इवनिंग फ्रेंड्स। एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी की दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, संचार निष्पादक गोपाल राय, तकनीकी अभियंता गोलू कालू तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद आप सभी का, सभी साथियों के साथ आप

0: आप सभी का तह दिल से स्वागत करते हुए आप सभी की अपनी आज अपना मौजूद है आप सभी के खिदमत में। कहीं आई है एक बेहद खूबसूरत सी शाम केवल आप दोस्तों के नाम, और बस शुरू करेंगे कुछ ही देर में हम गुड इवनिंग ईटानगर का ये सेगमेंट। लेकिन इससे पहले हम थैंक यू शुक्रिया अदा कर देते हैं आरजे गिचकनी का, जिन्होंने अपने सेकेंड ट्रांसमिशन के दौरान आप सभी की भरपूर जो है मनोरंजन की है। और जाते जाते स्टूडियो मुझे हैंड ओवर करके गई है, तो थैंक यू आरजे गिचक कनिक मुझे स्टूडियो हैंड ओवर करने के लिए। और बस दोस्तों कुछ ही पल में आप आनंद उठा पाएंगे गुड इवनिंग ईटानगर का ये सेगमेंट, तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स तेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवांजेलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।
8: गुड इवनिंग ईटानगर।
0: दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुड इवनिंग ईटानगर के इस प्यार भरे सेगमेंट में। गुड इवनिंग ईटानगर का ये सेगमेंट होता है जी हाँ एंटरटेनमेंट प्लस इंफॉर्मेशन, या कुछ बातें आप सभी से साझा करने की। दोस्तों आज एक खास दिवस है जिसे हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं, और हर साल इसे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाना, लोगों को खुलकर बात करने के लिए प्रेरित करना और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी शुरुआत 1992 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा की गई थी। वास्तविक अनुभवों की आवाजें, सच्ची आवाजें, वास्तविक बदलाव यानी कि लिव्ड एक्सपीरियंसेस हार्ड रिवील वॉइसेस रियल चेंज, इसकी इस बार की यानी कि 2026 की मुख्य थीम है। कलंक यानी कि स्टिग्मा को दूर करना, समाज में मानसिक बीमारियों जैसे तनाव, अवसाद या एंजाइटी को लेकर जो झिझक या डर है उसे समाप्त करना, यह इस बात की याद दिलाता है कि जिस तरह शरीर की देखभाल जरूरी है वैसे मन का स्वस्थ

रहना भी आवश्यक है। जरूरत पड़े तो मनोचिकित्सक यानी कि साइकेट्रिस्ट का काउंसलिंग परामर्श लेने को भी कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकतवर समझदारी का कदम माना जाता है। तो अगर आप भी मानसिक रोग जैसे डिप्रेशन एंजाइटी से परेशान हैं, तो साइकेट्रिस्ट के पास जाइए और काउंसलिंग लीजिए और स्वस्थ रहिए। और आजकल देखने के लिए आ रहा है कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन और एंजाइटी में आकर होता है। तो ऐसे में मानसिक चिकित्सक की सलाह लेकर खुद को तंदुरुस्त बनाए रखना जरूरी है। अ हेल्दी बॉडी रिसाइड्स इन अ हेल्दी माइंड, ये जस्ट मैंने इसे अपोजिट करके बताया है आप सभी को। तो चलिए दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी मगर बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप सभी से साझा की। और अब आप सभी को कुछ बेहतरीन नगमों को सुना देती हूँ। एंजॉय कीजिए और सेहतमंद रहिए, मन से और तन से दोनों से।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारी आज की गुड इवनिंग ईटानगर का यह सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे आज के पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। बहरहाल, आपको बता दें कि अब से बस कुछ ही देर में आप बारी बारी से हिंदी में तथा अंग्रेजी में समाचार तथा नोक्ते समाचार सुन सकेंगे। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मीनाक्षी मजुमदार से समाचार सुनेंगे।

पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। दिल्ली पुलिस ने CJP के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं और कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज आरोप लगाया कि विपक्षी दल देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोस और उससे परे के घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभावों पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीति दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि स्थापित वैश्विक व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है। श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ देश को विश्व से अलग थलग करना नहीं है, बल्कि इससे महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों के डिजाइन, विकास, निर्माण, रखरखाव और उड्डयन के लिए घरेलू क्षमताओं का निर्माण करना शामिल है। भारतीय रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे के अनुसार कल दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को उनके शुरुआती स्टेशन से ही रद्द कर दिया गया है। रेलवे ने कहा कि यह फैसला रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में भारी सड़क जाम की आशंका के को देखते हुए लिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि CJP को पहले भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन पार्टी ने निर्धारित दिशा निर्देशों और दिए गए अवशासनों का पालन नहीं किया। सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन नहीं करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 4th समिति में व्यौपनिवेशकरण पर चर्चा के दौरान यह बात कही। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां देश के अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है और

और विदेशी ताकतों के इशारों पर काम कर रही है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए श्री नवीन ने विपक्षी पार्टियों पर देश में बेहद खतरनाक और गंभीर स्थिति पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। श्री नवीन ने विपक्ष पर संविधान के नाम पर झूठ फैलाकर जनता के जनादेश का अपमान करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बार बार चुनावी हार के कारण विपक्षी पार्टियों में निराशा पैदा हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सरकार देश में तनाव पैदा करने की कोशिशों से सख्ती से निपटेगा। केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने पुष्टि की है कि संयुक्त अरब अमीरात के शारजहां एंकरेज में कल हुए ड्रोन हमले के बाद पनामा के झंडे वाले कच्चे तेल के टैंकर पर सवार सभी 22 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने कहा कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और भारतीय क्रू की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी जहाज प्रबंध कंपनी के संपर्क में हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन सन्मुगरत्नम और प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉक के साथ बैठकें की। इन बैठकों में आपसी सहयोग को मजबूत करने, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेश के मौके पर चर्चा हुई। वित्त मंत्रालय के अनुसार श्रीमती सीतारमण ने कल सिंगापुर में द अस्ताना में राष्ट्रपति थर्मन से मुलाकात की। बैठक में भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भी वित्त मंत्री सीतारमण का स्वागत किया और कहा कि बातचीत के वैश्विक आर्थिक हालात और मौजूदा ऊर्जा संकट से निपटने के तरीकों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि श्रीमती सीतारमण ने भारत के विकास और निवेश व सहयोग के नए मौके के बारे में जानकारी साझा की। अपर सियांग जिले के गेकू के 4 निवासियों को प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज परियोजना के लिए प्री फेसिबिलिटी रिपोर्ट स्टडीज का विरोध करने के कारण अरुणाचल प्रदेश गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 2014 के तहत हिरासत में ले लिया गया है। खबरों के अनुसार अधुम तायोम, ओमोक पोरोन, अकूत पालो और ओसन पोरन को पासीघाट से हिरासत में ले लिया गया है। नौगांव लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने AIUDF प्रमुख बी अजमल को 1,42,224 वोटों से हराया, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार शिवामणि बोरा तीसरे स्थान पर रही। वोटिंग 6 अक्टूबर को हुई थी और वोटों की गिनती शुक्रवार को की गई। अब असम की 14 संसदीय सीटों में से बीजेपी के पास 10 लोकसभा सांसद हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने शुक्रवार को ईटानगर के स्टेट बैंक्वेट हॉल में एक भव्य समारोह के साथ 72वें राज्य स्तरीय वन्यजीव सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों का समापन किया। पासीघाट वन विभाग को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला वन विभाग चुना गया और उसे वार्षिक प्रदर्शन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में प्रधानमंत्री के कामना की दुर्गा माँ आशीर्वाद समाज में सुख करुणा और नई उम्मीद लेकर उन्होंने चारों ओर शांति और समृद्धि की कामना की है। मुख्य समाचार फिर एक बार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। दिल्ली पुलिस ने CJP के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का भी आरोप लगाया। भारत ने इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए, अब प्रस्तुत है नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: अब आकाशवाणी ईटानगर टिपिकर व नोक्ते प्रोग्राम अथुरंग जथा वनबंगा सानपो दंगरे नोक्ते खोबुचो तत्कत थजाहो निपाचा दस तारीख अक्टूबर जंग खोबुचो को देपा किम किम तेसिया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मथजा राजस्थान जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन को मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति इम्पोर्टेंस इवेंट को पार्ट कवा अते विजिट पोर्ट को डिफेंस मिनिस्टर मा इंडियन एयरफोर्स दिखो अहान पार्टिसिपेटिंग कंट्री है एयरफोर्स पर्सनल है दमन मिंजा मिनवा ते मा मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट इम्प्रेसिव एरियल डिस्प्ले मिन खेगा दिखो इंडिजिनस इंडिया नंगबोनी का एयरक्राफ्ट दिखो फॉरेन कम्बेट एयरक्राफ्ट एग्जीबिशन इंस्पेक्शन मिन होनवा और मल्टी नेशनल एक्सरसाइज बा अहान अहान कंट्री व एयरफोर्स है रूम हुईरा और को मामा ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज एडवांस एविएशन टेक्नोलॉजी टिको मिलिट्री कोऑर्डिनेशन से डेमोस्ट्रेट होनका साउथ अफ्रीकन ज्यूरिस्ट ऑफ इंडिया ओरिजिन नवानीथम नावी पुले ममजा पीस निया इंटरनेशनल लॉ पर प्रमोट हुआ रंग अते कंस्ट्रीब्यूशन था नोबेल प्राइज जेनका अते अमाको ह्यूमन राइट्स चीफ दंग चुन दिखो इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस को जर्ज मिन दंग चुन पीले अते लतापोट में साउथ अफ्रीका नंग दंगवा अरपुट को ब्लैक मिन्यान हे नंग न्या रंग भेदभाव नंग होनता अर दिको अते एंटी अपर्थेट एक्टिविस्ट डिफेंस होनका दिको दिको ह्यूमन राइट्स निया इक्वालिटी पा मानंग बोरा रंग कामोय का अते 1941 को दुर्बन नंग छाडवा अते पेरेंट्स पा इंडियन तमिल दंगवा अर दिको अते साउथ अफ्रीका हाईकोर्ट नंग जर्ज पुनीते फर्स्ट ब्लैक वुमेन लिखका यूनियन मिनिस्टर सर्बाना सोनवाल मा कन्फर्म होनका पनामा फ्लैग क्रूड ऑयल टैंकर अफंग रुकनी वानी इंडियन सी फेरीज है सेफ मजा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई सरजा एंड कोरेश नंग अर टैंकर को ड्रोन अटैक होनवा सोशल मीडिया पोस्ट को मिस्टर सोनवाल मंगे का अर सिचुएशन व असन थम्मा सुई का दिखो इंडियन क्रू सेफ्टी निया असन थम्मा इंश्योर होन रंग ऑथोरिटीज शिप मैनेजमेंट कंपनी दम नंग कंटेक नंगे का अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट में वांथे पब्लिक नोटिस कोंगे का प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट नोटिस हुईरा वन वांथे मी यान है मा डिपार्टमेंट ऑफिसर से मिन को पब्लिक है नंग फ्रॉड हुआ का हने में गवर्नमेंट स्कीम निया प्रोग्राम सेंशन हुआ ले अर रिलेटेड काम रंग फंड रिलीज हुआ रंग मी यान है तावा गुन ले कमीशन थी का डिपार्टमेंट में पब्लिक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रेक्टर्स दिको बेनिफिशियरीज है नंग अपील हुआ का अरे रंग रंग फ्रॉड व लफोसी रंगे का हेंता नंग जो अरंगुन था ते या फ्रॉड इन्फॉर्मेशन में चो आको नियरेस्ट ज्यूरिडिक्शनल पुलिस स्टेशन ले एंटी करप्शन ब्यूरो ACB को रिपोर्ट हुआ रंगे का अरे रंग ACB व्हाट्सएप नंबर पा 9436040040 नंबर पा जो जानते रिपीट हुआ नंग 9436040040 अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट गे कुनंग सोंग तेवान बली में इन्या नंग अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविस्ट प्रिवेंट एक्ट 2014 कोनमा डिटेन हुआ का अरावान बली में इन्या मा अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रंग प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट स्टडी अगेंस्ट हुआ का रिपोर्ट जुन को आदुम तायोम ओमक पारोन ओकुट पालो दिको ओसन पारोन हे नंग डिटेन हुआ का अरमा को अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मा अरावान बली अगेंस्ट अपो अपा खोन में डिटेंशन ऑर्डर जारी होनवा ऑफिशियल ऑर्डर को DM में गे का अरे सिचुएशन पर थोरोली एनालाइज होन दी को अरे डिसीजन पर कब का अरे मकसद पर अरे रंग रंग अनलॉफुल एक्टिविस्ट नंग कंट्रोल होन रंग होन में पब्लिक सेफ्टी निया सिक्योरिटी रंग खतरा ता दंगा का BJP कैंडिडेट देवाशीष शर्मा मा 1,42,224 वोट में जीन का अरे इलेक्शन पर आसाम नागांव लोकसभा कंस्टिट्यूंसी नंग दंगवा वोटिंग पर अक्टूबर इरोक तारीख को दंगवा दिको काउंटिंग पर हुकुट बाजा को देगा अरसित पर खाली दंगवा कंस्टिट्यूंसी कांग्रेस MP प्रद्युत बोर्ड

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: दोस्तों आप सुन रहे थे नोक्ते में समाचार। अगर आप हमारे नोक्ते श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रेंड्स मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही DRM के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, FM बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण FM है। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM, अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। वक्त हो चला है बस कुछ ही देर में, यानी कि बस कुछ ही देर में हम पेशे खिदमत करेंगे आप सभी का मन पसंदीदा कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव। तो बने रहे अरुण FM के साथ और सुनते रहे अरुण FM को।
2: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
3: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
4: अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स तेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवांजलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का इवनिंग ड्राइव के इस सेगमेंट में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वो सेगमेंट होता है जहां पर हम आप सभी से कुछ बातें करते हैं, कुछ अपने दिल की बातें कहते हैं तो कुछ आपके भी हम सुनते हैं और ज्यादातर वही मैं

शेयर करती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है. वैसे आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है जी. हम मन की जो बात है वो शायद जो है कहीं ना कहीं अधूरी सी रह जाती है, और हम जो है मन के बात को नहीं सुनते हुए डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं. दोस्तों आज कुछ बातें आप सभी के लिए हो जाए. बड़ी देर से वो प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी कर किए जा रहा था. निराशय के बादल उमर घुमर रहे थे. जनवरी की सर्द हवा में उसे सिर्फ एक शर्ट पहने देख बेंच पर बैठे लोगों की निगाहें बार बार उसी की ओर चली जा रही थी, मगर वो अपने कहीं और धुन में खोया हुआ था. अचानक तेजी से चलता हुआ वो प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर पर पहुंचा. उसने जेब से एक डायरी निकाली और खोलकर उस पर लिखने लगा. पापा मुझे माफ कर दीजिएगा, आप मुझे समझाते रहे कि जीवन में सारे रास्ते जो है बंद हो जाए, मगर एक रास्ता सदैव खुला रहता है, भले ही वो हमें देर से मिले. मगर पापा सच तो ये है कि लाखों का कारोबार डूब जाने के बाद अब मेरे पास सिर्फ एक यही रास्ता बचा हुआ है. मैं जा रहा हूं आप सब को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा पापा. लिखते लिखते शब्द धुंधले पड़ने लगे और आंसुओं की धारा में वो बाहर निकलने लगे. आगे आगे होता है क्या देखते हैं दोस्तों, लेकिन हो जाए एक प्यार भरा गीत आप सभी के लिए. एंजॉय कीजिए.

वहां से उतरकर वो पटरियों के समांतर बढ़ता चला गया। काफी दूर निकल आने पर उसने अपनी नजरें घुमाकर चारों ओर देखा, कोहरे के सिवा दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। वो पटरियों के बीच जाकर आंखें मीच कर लेट गया और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। बहुत देर हो चुकी थी मगर ट्रेन नहीं आई। आंखें मीचे लेटे लेटे अब वो उकताने लगा था। उसने कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा, अरे शाम होने को आई। वो उठा और वापस प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़ा। आगे आगे क्या होता है देखते हैं दोस्तों, लेकिन हो जाए इससे पहले एक और प्यार भरा गीत आप सभी के लिए, एंजॉय कीजिए।

जी हाँ दोस्तों, वो प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले लगी बोर्ड पर ट्रेनों के आगमन का समय देखा। ओह, कोहरे की वजह से आज सारी ट्रेनें लेट थी। अब क्या मैं करूंगा? और चार कदम आगे बढ़ा कि सामने एक बुक स्टॉल दिखाई पड़ा। वहां जाकर वो किताबें उलट पुलट करने लगा। एक किताब खोली और पन्ने पर छपे काले अक्षरों पर अपनी नजरें गराने की कोशिश करने लगा। किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। पढ़ते पढ़ते उसके होठ कांपने लगे, मगर वो पढ़ता चला गया। क्या साथ लाए थे जो तुमने खो दिया? उसके चेहरे के रंग बदलने लगी। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। तुम जिसे अपना समझ कर खुश हो रहे थे, बस यही तुम्हारे दुख का कारण है। किताब पर उसके हाथों की पकड़ कसती चली गई। आंखों में आंसू तेजी से बहने लगे। अचानक घने कोहरे को चिरता हुआ ढलता सूरज तेजी से चमक उठा और उसकी रोशनी में उसकी आंखें चौंधी आ गई और वो वापस जो है अपने पिछले रास्ते जिसे वो छोड़ के आया था उन्हीं राहों पर चलने लगा।

बस पता नहीं क्यों उसका मन कहने लगा कि मुसीबतें तो आती रहेगी जाती रहेगी, जिंदगी जीने का नाम है। यूं अपनी जान लेकर कोई सॉल्यूशन तो होने वाला नहीं है, इससे तो अच्छा है यही है कि मुस्कुराते हुए जिंदगी को मैं जीता हूं और हर चीज का मुकाबला मैं दिल से करूंगा, और यही स्पिरिट उसे आगे बढ़ाता ले गया।

0: खुशी में पलक न महसूस हो जहां न
1: तो दोस्तों इस कहानी से सीख लेते हुए जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। दुख और सुख हमारे जिंदगी के दो पहलू है, आते और जाते ही रहेंगे। मन की शांति सबसे पहला है, और अगर आप दुखी हैं, तकलीफ में हैं, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में हैं, एक बार मानसिक चिकित्सक के पास जाकर अपने मन का हल को ढूंढने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ट्रीटमेंट जरूर लीजिएगा, क्योंकि मन का अच्छा होना ही तन का अच्छा होना है। बहरहाल ले लेते हैं एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद शाम की महफिल में। बने रहे आप सब अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
2: अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स टेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवेंजेलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी

0: women heads of denominations, heads of district denominations और women leaders को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है Christian Revival Church, ESS Sector, Itanagar, near Government Higher Secondary School। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।
1: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs 10.49 lakh.
2: And benefits up to Rs 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
3: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का शाम की महफिल में। आज वीकेंड है और आप सभी का मूड बहुत ही अलग होगा क्योंकि एक जो है पूरा वीक हैक्टिक शेड्यूल से निजात पाकर अब आप बिल्कुल रिलैक्स करने के मूड में हैं, है ना। हो सकता है कि इस वक्त आप अपने परिवार के साथ हो सकता है कि आप अकेले हो सकता है कि आप रिलैक्सिंग के मूड में हो, ये भी हो सकता है कि किसी खास स्पेसिफिक पर्सन को आप याद कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो या फिर बात नहीं करके उन्हें याद ही कर रहे हो। और ऐसे में आपके लिए आपकी शाम को खुशनुमा, रोमांटिक, परफेक्ट एम्बियंस देने के लिए दोस्तों अरुण एफएम लेकर आ जाता है बेहतरीन नगमों को और आपको पूरी तरह से रिलैक्स करवाने की कोशिश करता है। तो क्या बात हो जाए, है ना। तो ऐसे ही कोशिश आज हम करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि आज आपके साथ इन चंद खूबसूरत पलों में मौजूद रहेंगे संचालक निष्पादक गोपाल राय, तकनीकी अभियंता गोलो कालो तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ मैं रहूंगी आप सभी की अपनी दोस्त, अपनी होस्ट अजय अपर्णा। जी हाँ, कोशिश करेंगे हम सभी मिलकर आपके शाम को बिल्कुल खुशनुमा और रिलैक्सिंग बनाने के लिए। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जिंदगी की कहानी भी बड़ी अजीब होती है। कुछ रिश्ते बिना नाम के होते हैं, कुछ मुलाकातें अधूरी रह जाती है और कुछ यादें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ भी धुंधली नहीं पड़ती। जी हाँ, कभी कभी हम खुशियों के बीच तन्हा होते हैं और कभी कभी किसी की एक मुस्कुराहट पर पूरी कहानी हमारी बदल जाती है ना दोस्तों। तो प्यार, तन्हाई और जिंदगी के इन्हीं अनकही एहसासों को अपने सुरों में पिरोया एक बेहद खूबसूरत सदाबहार नगमा पेश खिदमत करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये दास्ता तो पसंद आनी ही है और अपनी दास्ता अगर आपकी भी है कुछ खास तो ये गीत आपको बिल्कुल परफेक्ट आपके लाइफ को मैच करेगी, है ना। तो चलिए सुना देते हैं बातें नहीं करते हुए प्यार भरा ये नगमा। एंजॉय कीजिए
4: सुनहरे गाने और कुछ।

दोस्तों कहते हैं कि प्यार में दूरियां मायने नहीं रखती, क्योंकि जब कोई दिल के करीब होता है ना तो वो मीलों दूर होकर भी हमारे साथ रहता है। कभी कभी किसी की यादें हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आती है और तो कभी आंखों को नम कर जाती है ना दोस्तों। और जब दिल में किसी के लिए सच्चा प्यार हो तो बस एक एहसास ही काफी होता है, चाहे वो हमारे पास हो या हमसे दूर, उसकी जगह हमारे दिल में हमेशा बनी रहती है ना दोस्तों। तो ऐसे ही एहसासों और प्यार भरे यादों के नाम पेश है एक प्यारा सा गीत। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, गाने का आनंद लीजिए, और अगर आपके दिल में भी कोई ऐसा इंसान है जो आपसे दूर होकर भी आपके दिल के बेहद करीब है तो बस ये गाना उन्हीं के नाम कर दीजिए दोस्तों। जी हाँ।

दोस्तों, आप सब अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन यानी कि एफएम बैंड के 103.1 MHz पर आकाशवाणी के अरुण एफएम को सुन रहे हैं। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम। जी हाँ दोस्तों, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। दोस्तों, जिंदगी भी कितनी खूबसूरत है ना। कभी हंसी, कभी खुशी, कभी अपनों का साथ, तो कभी किसी खास इंसान की याद। और जब इन सभी एहसासों को शब्दों और संगीत के साथ मिलता है तो बस दिल से एक ही आवाज निकलती है, जिंदगी प्यार का गीत है। प्यार सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं, बल्कि किसी की खुशी में खुश होने, उसके मुस्कान में अपनी दुनिया देखने और छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढने का भी नाम है ना। तो आइए आज के इस खूबसूरत शाम को और भी हसीन बना देते हैं एक ऐसे सदाबहार गीत के साथ जो हमें जिंदगी से और प्यार करना सिखाता है और असली असल मतलब को समझाता भी है। जी हाँ, दिस इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशनल सॉन्ग। तो आवाज है लता मंगेशकर की फिल्म सौतन से। ये प्यार भरा गीत आप सभी के लिए, एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, इस बहुत ही प्यारे और बहुत ही जो है मोटिवेशनल सॉन्ग के साथ ही हमारे आज के शाम की महफिल का ये सेगमेंट अभी यहीं पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं फ्रेंड्स कि आपकी शाम को कुछ खास बनाने में हम कामयाब जरूर हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, ले लेते एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद हिंदी फिल्मी गीतों के बेहतरीन ट्रैक्स के साथ। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimedes. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: बंधु नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुद्धू।
4: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तो समझ गई ना।

0: रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
1: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
2: HIV के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
3: HIV संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
2: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता।
3: HIV की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
2: HIV से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
3: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
4: अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स तेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवांजेलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर FM बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यानी कि आकाशवाणी के अरुण FM पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। अब आप आनंद उठा सकेंगे बैक टू बैक सॉन्ग्स के साथ।

दोस्तों फिल्म काइट के इस गीत के साथ ही हमारे आज की, जी हाँ दोस्तों, हिंदी फिल्मी गीतों का यह सेगमेंट अभी यहीं पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। बहरहाल अब से बस कुछ ही देर में आप सब सुन सकेंगे आदि समाचार, तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल विलुकंडो ने मलोक इंडियन सी फायर में यूनाइटेड अरब इमिरेट सर्जा लोग ड्रोन ने तेग्रोंग 22 इंडियन सी फायर को पनामा लोग के प्लेगम ताबा लिखतो सुपर क्रूड ऑयल टैंकर सेफली इंडिया पे पिंगे कुम लुकंडो लुटेम दोर ने पीआर एम आई रूप का वो मी बम दुंग डेक्सी मैनेजमेंट कंपनी अथॉरिटी के दिन इनके ताऊ ई बम दुंग हम लुकान बितू असम नोगा लोग बाय इलेक्शन में बीजेपी कैंडिडेट देवाशीष शर्मा भी जीती तो 1,42,224 वोट्स के ए आई यू डी एफ सी ब्राउद्दीन अजमल में जीती तो कांग्रेस लोग शिवा मोनि बोरा भी तार लो आमन गेतु 6 तारीख डल बोर्ड एम बीतो मेलो बोर्ड एम की तो को प्रायुट बोर्दोलोनी के रिजिंडेशन बिसी आपको लगे बीजेपी जॉइन रोंग को में सीट दे बेकेंतुं को सुपक 14 लोकसभा एमपी लोग के 10 एमपी बीजेपी पर असम लोग इडुं को अरुणाचल गवर्नमेंट ने पब्लिक नोटिस एमबी कान डॉलूडों ने गवर्नमेंट स्कीम देख के प्रोग्राम आगे लगा पे 5 बिलियन ने में ऑफिसर्स की दिन में घूस बिदर लामा डॉप पब्लिक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्टर बेनिफिशियरीज की दिन में लुकान बीतूं इनको ना पेमेंट को इधर को में ऑफिशियल अप्रूवल करो पे देखो ना आते को केन्या मिलो कम पुलिस स्टेशन लो देख के एंटी करप्शन ब्यूरो लो लगान लुकान बीतो पे देलो व्हाट्सएप नंबर 9436040040 लो डायरेक्ट लुकान डॉ पे लुतूं तन्ना के दिन आदि लुता डगम सिम आकाशवाणी ईटानगर लोक तत्पादूं अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट गे को लोग अमिया पी अदुम तायोम ओमा पारन ओकुट पालो दे कोसन पारन बुलु में अपु अपा 2014 आयोन लोग पते खोतुंग बुलु सियांग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट लोग पी एफ आर एम इमो एमम इतुला पासिगत पते लो लेतुंग डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस 72 na pana istet level wildlife week am bankutol itanaga lolodum bomdum the teams am connecting habitats driving wildlife am lalugom tum copy table board trilogy lo wild green kingdoms am ego glen bom to binasia bawan new delhi lo delo governor kt parnaik union minister kiran rijiju chief minister pema kandu Minister of State for Culture Indrajit Singh, Niti Aayog DC Dr. A. K. Lihari Buluto, Tangok Boto, Siyum Ka Adi Lutadago Mem Soluin Bidung, Tanna Kedinge Aipe.
1: Adi Lutadam Tarno Mem Siyum Ka Adi Pe Bosol Tanna Kedinge Keraya Pe Bajo Jerang Keluli Mirilok Tatpa Bomun Geye.

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

दोस्तों, आप सुन रहे थे आदि समाचार। अगर आप हमारे आदि श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। जी हाँ, मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को, आप सभी के अपनों तक। अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे आज के कलाकार के इस खूबसूरत से सेगमेंट के साथ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी।

0: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के कलाकार के इस सेगमेंट में। दोस्तों ये वो सेगमेंट है जहां पर हम एक ही गायक कलाकार अदाकार फनकार गीतकार संगीतकार के बारे में बातें करते हैं, यानी कि फिल्मी जगत से जुड़ी हुई व्यक्तित्व के बारे में बातें करते हैं और उनके जो है सुपर डुपर हिट फिल्म्स के सॉन्ग्स को आप तक पहुंचाते हैं। आज जिनके बारे में मैं बात करने जा रही हूं, मुझे पता है वो आप सभी के भी बहुत बहुत फेवरेट सिंगर में से है और आपको उनकी आवाज बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत बेहद जो है सबसे अलग सबसे खास है। एंड ही इज नन अदर देन कैलाश खेर। जी हाँ दोस्तों, कैलाश खेर भारतीय गायक संगीतकार और लाइव कलाकार है जो मुख्य रूप से अपनी दमदार और रूहानी आवाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी बॉलीवुड करियर की शुरुआत 2003 में फिल्म अंदाज से की। कैलाश खेर ने अल्लाह के बंदे, चांद सिफारिश, तेरी दीवानी, जय जयकारा जैसे प्रसिद्ध गाने गाए हैं। साल 2017 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया इनको। जी हाँ, और इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हो जाए एक प्यारा सा गीत। अब जो मैं गीत सुनाने आप सभी को जा रही हूँ, वैसा भी होता है फिल्म से अल्लाह के बंदे, इस फिल्म में केवल और केवल गिटार की म्यूजिकल धुन आपको सुनाई देगी और उनका आवाज, और कोई इंस्ट्रूमेंट की यूज ही नहीं किया गया है इस सॉन्ग में। तो लीजिए पेश खिदमत है इस बेहद खूबसूरत सी रूहानी आवाज कैलाश खेर के।
1: टूटा टूटा।

दोस्तों, कैलाश खैर का लाइफ जो है एक स्ट्रगल भरा लाइफ माना जाता है। मेरठ में जन्मे कैलाश खैर जो है 14 साल के जब थे उन्होंने तब वो घर से निकाल गए और तभी से उनका संघर्ष जो है शुरू हुआ। कहा जाता है कि 20 साल की उम्र में दिल्ली में वो जो है एक्सपोर्ट का बिजनेस भी किए हैं। जी हाँ, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। निराश होकर 1999 में ऋषिकेश के गंगा किनारे चले गए। उन्होंने बताया एक इंटरव्यू में कि ऋषिकेश के गंगा नदी में कूदकर उन्होंने अपनी जान देने की कोशिश की थी, लेकिन अब वहां के मौजूद लोगों ने उन्हें बचा लिया। कहा जाता है कि इन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों में जिंगल गाकर भी जो है अपने करियर की शुरुआत की। और मैंने बताया ही है कि इनको फिल्म जो मिली वो सफलता मिली जो है 2003 के फिल्म अंदाज के लिए उन्होंने गाना गाया और ये सफलता पूर्वक ये रहा ये गीत जो है। और इसके बाद 2004 में वैसा भी होता है Part 2 अल्लाह के बंदे जो मैंने अभी अभी आप सभी को सुनाया वो गीत सुपर डुपर हिट साबित हुआ। और इसके बाद इन्होंने अपने एल्बम तेरी दीवानी सैया या रब्बा जैसे कई सारे एल्बम्स अपने आवाज सूफी अंदाज में इन्होंने गाया है गीतों को और आधुनिक संगीत का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। सूफी और आधुनिक संगीत का जो है शानदार मिश्रण इनके गीतों में पाया जाता है। इनकी आवाज हर उम्र के लोगों को बेहद पसंद है। तो चलिए, बातें तो मैंने काफी कर ली, कुछ गीत भी हो जाए इनके सुपर डुपर हिट फिल्म से जैसे कॉरपोरेट 2 और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत। तेरी दीवानी मैं सोचती हूँ सबसे पहले मैं सुना दूँ क्योंकि रियली बहुत ही प्यारा सा गीत है ये। एंजॉय कीजिए।

2017 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किए गए कैलाश खेर को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही गाते रहे और हम यूं ही हमारे जो श्रोता दोस्त हैं उनके लिए ऐसे ही मजेदार गीत आपके बचाते रहे। राल दोस्तों, हमारा ये आज के कलाकार का ये सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। उम्मीद है कि आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। शाम के ठीक 7 बजे का वक्त रहेगा, जी हाँ फ्रेंड्स, निशी समाचार का। बने रहे अरुण एफएम के साथ, सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: FMK.
1: अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स तेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवेंजेलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, Next Gen K Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
8: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

0: सेवा के 24वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा भारत की विरासत संस्कृति और आत्मविश्वास। इसमें भाग ले रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और भारतीय विद्या भवन के डीन प्रोफेसर डॉक्टर शशिबाला। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार और आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है जन सेवा से देश सेवा। आज की जो चर्चा है वो है भारत की विरासत के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में और भारत के आत्मविश्वास के बारे में। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार निहारिका और हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शशि बाला, सीनियर इंडोलॉजिस्ट, डीन सेंटर ऑफ इंडोलॉजी भारतीय विद्या भवन, और डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, मेंबर सेक्रेटरी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। नमस्कार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। पहले हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। हम अक्सर किसी भी सभ्यता को किताबों से, तारीखों से, इतिहास के माध्यम से या स्मारकों के माध्यम से समझते हैं, लेकिन संग्रहालय, उत्सव या विश्वविद्यालय एक नया तरीका है हमारी विरासत के करीब आने का, उसे समझने का और उसे वास्तव में अनुभव करने का। आज के जमाने में अगर मैं बात करूं तो भारत की विरासत के प्रति दृष्टिकोण किस तरह बदल रहा है और ये आम नागरिक के और करीब किस तरह आ रही है। डॉक्टर सच्चिदानंद, पहले आपसे शुरुआत करते हैं।
2: देखिए, क्या है, संस्कृति को हमारे देश में जो समझने का तरीका रहा है वो बिल्कुल अलग रहा है, क्योंकि संस्कृति हमारी जीवन का ऐसा एक अविभाज्य अंग रहा है प्रारंभ से ही, जो लगातार समय के साथ साथ अपने आप को और परिष्कृत करती गई है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है नित्य नूतन चिर पुरातन, इस बात को कहा जाता है। तो हर बार उसमें एक न एक परिष्कार होता है, एवोल्यूशन होता है। तो अभी जैसे ही पिछले कुछ समय से हम देखते हैं कि संस्कृति को जानने और समझने का एक जो पूरा का पूरा नजरिया है, दृष्टिकोण है, वो बदल गया है और किस तरह से संस्कृति हमारे चिंतन की मुख्य धारा में आ रही है, तो निश्चित तौर पर लोगों के बीच में भी संस्कृति को लेकर जो जागृति है, जो प्रेरणा है, वो और अधिक बढ़ गई है। चाहे फिर वो हमारे सिर्फ म्यूजियम्स ही नहीं, म्यूजियम्स हैं, आर्काइव्स हैं, हमारी लाइब्रेरीज हैं, हमारी अलग अलग इंस्टीट्यूट

0: इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, और इतना ही नहीं, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको सबको भी देखने का एक नजरिया अभी पिछले कुछ समय में, इंडिया का जमाना है तो
1: जी
0: वो सोशल मीडिया पर संस्कृति की बात कर रहे हैं, अपने ग्रंथों की बात कर रहे हैं, अपनी परंपराओं की बात कर रहे हैं, तो एक अलग तरह के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं।
1: और शायद मनोरंजन के तौर पे भी लोग और तरीके ढूंढने लगे हैं अपनी सभ्यता के और करीब आने के।
0: जी जी बिल्कुल सही बात है, और इसलिए हम देखते हैं कि जहां भी कहीं संस्कृति पर कोई कुठाराघात होता है या हमारी शाश्वत मान्यताओं पर जब कभी कोई कुठाराघात होता है तो लोग ही इसका प्रतिकार करते हैं, समाज ही इसका प्रतिकार करता है। इसलिए देखा गया कि जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, फिर वो चाहे हमारी परंपराओं की हो, हमारे मेलों की हो, व्रत की हो, त्योहारों की हो, अनुष्ठानों की हो, उनको लेकर एक सकारात्मक भाव, क्योंकि लोगों ने ये भी समझा कि इनके पीछे का तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, और इसके पीछे फैक्ट्स कैसे रहे, तो हमारे ग्रंथों से कैसे वो सारी चीजें आई, तो ये कुल मिला के संस्कृति को देखने का एक नया नजरिया, नवोन्मेष एक तरह से कहा जा सकता है।
1: डॉक्टर शशि, इसमें मैं एक विचार और जोड़ना चाहती हूँ कि आजकल ओटीटी के माध्यम से कई कहानियां हमारी सभ्यता से जुड़ी सामने आ रही हैं। आप अपने विचार किस प्रकार व्यक्त करेंगे इस बारे में?
2: ओटीटी के माध्यम से बहुत कुछ सामने आ रहा है, परंतु बहुत कुछ नहीं भी आ पा रहा। भारत में एक नई चेतना आई, उसके कई कारण है। जैसा कि जोशी जी ने कहा कि एक नवोन्मेष है, परंतु ये आप निश्चित समझ लीजिए कि क्षणे क्षणे नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। हम कहते हैं प्रति क्षण जो एक नए नए वस्तुओं को अपने में संजो रही है, परिवर्तित भी हो रही है, परंतु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी अस्मिता, भारत की आत्मा, भारत की पहचान उसकी संस्कृति है। किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति होती है, और भारत की संस्कृति विलक्षण इसलिए है, क्यों? क्योंकि वो ऋषियों मुनियों के द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर है। जो उसकी अंतरधारा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो आप बाह्य देखते हैं उसमें परिवर्तन होता है। पिछले दिनों हमारे विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में कुछ ये चर्चाएं, कुछ बच्चों को शिक्षण में कुछ ये ऐड किया गया कि आप इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर आइए, आप भारतीय ज्ञान परंपराओं की ओर ध्यान दीजिए। तो दूसरी ओर मैं ये देख रही हूँ कि जब हमारे देश के लोग बाहर अब अधिक जाने लगे, पहले भी जाते थे परंतु अब अधिक जाने लगे, वे देखने लगे भारत का कितना सम्मान है, क्यों है, कहाँ कहाँ हमारी संस्कृति बिखरी पड़ी है। लोग छोटी छोटी बातें भी देखते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है। अरे इंडोनेशिया में रामायण है,
1: जी
2: अरे इंडोनेशिया में, थाईलैंड में रामायण है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें जब उन्हें पता चलती हैं तो उनको एक स्वाभिमान जागृत होता है। दूसरा, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री गए यूरोप यात्रा पे, तो जब आइसलैंड आदि में गए वो लोग, तो वहां पर एक शब्द आया संबंध, कि
1: जी
2: आपकी भाषा में भी है, हमारी भाषा में भी है। तो लोगों में एक चेतना आई, जैसे कि हजारों शब्द सारी यूरोपियन भाषाओं में संस्कृत के बिखरे पड़े हैं, तो जब ये चर्चा के विषय बनते हैं। दूसरा, जैसे जैसे सोशल मीडिया पर इतिहास के विषय में बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी, तो युवा वर्ग उस ओर आकर्षित होने लगा, जाने लगा, तो एक उनमें क्रांति आ रही है। फिर भारतीयों ने बहुत अपमान सहा, जहां भी जाते थे हम, क्योंकि हमारा माइंड इतना कॉलोनाइज्ड है, इतनी दास मानसिकता हो गई थी कि हम लोग सोचते थे जो बाहर है, जो विदेश में है,
1: वही
2: वही
1: अच्छा
2: अच्छा है।
1: है।
2: परंतु जैसे जैसे भारत का सम्मान बढ़ा पिछले 10-12 वर्षों में, जो भारत का सम्मान बढ़ा, वैसे वैसे भारतीयता का सम्मान बढ़ा, भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ा, और जैसे जैसे भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ता है तो हमारी युवा पीढ़ी को स्वाभिमान की अनुभूति होती है, आत्मविश्वास जागता है, फिर
1: बिल्कुल
2: उनको पता चलता है कि अच्छा, ये हमारे पूर्वज थे, इन्होंने विश्व को इतना ज्ञान दिया, तो उनके और आत्मगौरव की अनुभूति होती है। तो बहुत सारे कारण है, मैं कहना चाहूंगी, जिनके कारण से आज भारत में एक आपको क्रांति का सा, क्रांति नहीं कह सकते परंतु उसके जैसा,
1: उसके जैसा
2: क्योंकि
1: अनुभव।
2: मन बदले हैं, लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, क्योंकि केवल मटेरियलिस्टिक अप्रोच में आप कितना रहेंगे। उनको इतने मन ठीक करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए इतनी टेंशन है, उससे रिलैक्सेशन के लिए तो वो योग पर जाते हैं, हमारे ध्यान पर जाते हैं,
1: जी
2: मंदिरों में जाते हैं, उनको कहीं उसकी अनुभूति होती है, तो उन्हें शांति मिलती है। आज का व्यक्ति शांति ढूंढ रहा है, पैसा बहुत हो गया लोगों के पास, पर शांति कहीं खो गई।
1: यानी संस्कृति और सभ्यता एक नया कारण बन गई है आत्मविश्वास और शांति के लिए। आत्मविश्वास की बात

0: करेंगे इन दोनों उत्तरों में, बहुत ही खूबसूरत बातें निकल के आई। लेकिन पहले हम आत्मविश्वास की चर्चा कर लेते हैं। हम अक्सर सांस्कृतिक आत्मविश्वास की जब बात करते हैं तो उसकी क्या परिभाषा होती है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो परिभाषा किस तरह आपको बदलती हुई नजर आ रही है? और इसमें एक विचार हम और ये जोड़ सकते हैं कि जितना सम्मान हम अपनी सभ्यता संस्कृति को देंगे, शायद वैश्विक स्तर पर उतना ही सम्मान और लोग भी इसे देंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद, आपका क्या कहना है इस बारे में?
1: आपने बड़ी अच्छी बात कही, सांस्कृतिक आत्मविश्वास, इसकी जड़ें कहाँ हैं। आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब ब्रिटिश आए थे और ब्रिटिश हुकूमत ने ये सोचा कि हम भारत पर कैसे हम पूरा राज कर सकते हैं, तो उनको ये बात बहुत अच्छे से महसूस हुई कि यहाँ इस देश की सांस्कृतिक जड़ें, जैसा भी प्रोफेसर शशि बाला जी भी बता रही थी कि सांस्कृतिक जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उनका लोगों का विश्वास डिगाना बहुत कठिन है। संस्कृति की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, इसलिए बार बार हम किसका नाम लेते हैं, लॉर्ड मैकाले का नाम लेते हैं, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने इस बात को समझा और इसलिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में लाया। उसमें उन्होंने कहा ही ये कि भारतीयों को अगर किसी तरह से जीतना है तो सबसे बड़ी बात होगी कि हमें उनकी सांस्कृतिक जड़ों को खोखला करें, उनके सांस्कृतिक आत्मविश्वास को डिगाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत में तो उर्दू और संस्कृत में जो ग्रंथ हैं वो तो ब्रिटेन में, यूरोप की किसी भी एक बड़ी लाइब्रेरी की एक कोने में समा जाएं, इतनी उनकी वर्थ है, इतना ही उनका मूल्य है। इस तरह के न्यूनता बोध से शुरू किया। फिर उन्होंने जो हमारी हर एक चीज में कहा कि भाई इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ना आपके मान्यताओं में कोई लॉजिक है, ना आपकी परंपराओं में लॉजिक है, ना आपके शास्त्रों में लॉजिक है, ये सारी चीजें हमारी पीढ़ी के अंदर, तत्कालीन पीढ़ी के अंदर डालना शुरू किया। वहां से न्यूनता बोध प्रारंभ हुआ। तो ये जो इस समय का काल है, जब हमने भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की, आपने देखा होगा आजादी के बाद भी कई वर्षों तक भारतीय ज्ञान परंपरा की उस तरह से बात नहीं की गई। ये आप देख रहे हैं कि पिछले 12-14 साल में लगातार ऐसा हुआ है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर शोध हो रहे हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह से बातें लोगों के सामने ला रहे हैं। तो यानी क्या हुआ कि ये समझ में आया कि जो बातें हमको न्यूनता बोध दिलाती थी अनावश्यक रूप से, ये समझ में आया कि नहीं, उन सबके पीछे तर्क था, उन सबके पीछे शास्त्र था, उन सबके पीछे विज्ञान था, और इसलिए ये सारी बातें फिर से लौट के आई। यही है जो सांस्कृतिक आत्मविश्वास जिसकी आप बात कर रहे हैं।
0: यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहूंगी कि किसी भी संस्कृति की कहानियां और कहानियों को सामने लाने का एक माध्यम होता है संग्रहालय। पिछले कुछ सालों में जैसे आपने जिक्र किया कि कई तरीके से कई सारी कहानियां, कई सारे शास्त्रों की बातें सामने आई हैं, और उसमें से दो महत्वपूर्ण ऐसे संग्रहालय हैं जैसे प्रधानमंत्री संग्रहालय और जैसे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, यानी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। और संग्रहालय एक ऐसा स्थान है जहां हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी कहानियों को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो संग्रहालय एक संस्कृति को आगे बढ़ाने का कितना महत्वपूर्ण जरिया है आपके नजरिए से?
1: पहले तो इस बात को समझना होगा कि भारतीय संस्कृति एक अलग तरह की संस्कृति थी। हमारे जैसे मंदिर हैं, मठ हैं या और भी सार्वजनिक स्थान हैं, वहां पर भी हम समाज की जो एक कलेक्टिव मेमोरी है उसको हम संग्रहित करके रखते थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि मंदिरों में भी कई बार उत्कीर्ण बहुत सारे शिलालेख होते थे, बहुत सुंदर से म्यूरल्स बनाए जाते थे, ये भी एक तरह का संग्रहालय था। लेकिन जब ये संग्रहालय शास्त्र हमारे समाज में आया, तब से हमने संग्रहालय को भी बहुत अच्छी तरह से अंगीकृत किया। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण पहल हुई जिसमें हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय की स्थापना की। भारत में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उनका जीवन कैसा था, उनका संघर्ष कैसा था, उन्होंने अपनी यात्रा को कैसे आगे बढ़ाया, इसका पूरा का पूरा दस्तावेज उस प्रधानमंत्री संग्रहालय में मिलता है। न सिर्फ दस्तावेज मिलता है, आपको उसके साथ अपने आप को इंटरेक्ट करने का, संवाद करने का भी अवसर मिलता है,
0: और शायद इतिहास को एक नए नजरिए से परखने का मौका मिलता है।
1: बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और आप उनके साथ जब संवाद करते हैं तो आप उनके साथ एक अपना एक जीवंत संपर्क बनाते हैं। तो कई लोग उससे अचंभित भी होते हैं कि अरे इनके बारे में तो मुझे ये मालूम ही नहीं था, इनके बारे में तो मैंने ये जानकारी ही नहीं ली थी। तो अपने आप में वो एक प्रधानमंत्री संग्रहालय उस तरह से परिपूर्ण हुआ। दूसरा, ये जो आपने कहा जनजातीय हमारे जो गौरव थे उनके आधार पर जो संग्रहालय बनाना, क्योंकि क्या हुआ कि जब स्वाधीनता संग्राम की बात आई तो फिर कुछ गिने चुने लोगों को ही स्वाधीनता संग्राम का श्रेय दिया जाने लगा। हम ये भूल गए, और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आजादी का अमृत महोत्सव प्रारंभ किया तब उन्होंने कहा था कि हम इसमें ऐसे गुमनाम या जो भुला दिए गए उन तमाम योद्धाओं को भी याद करने का प्रयास करें। और इसलिए आपने देखा होगा कि पूरे देश में एक तरह का एक आंदोलन हो गया कि हम ढूंढे हमारे ऐसे कौन कौन से योद्धा थे। अभी आप जनजातीय विद्रोह की बात करते हैं, ये जो हमारा मान छत्रपुर का विद्रोह है उसको कोई जान

0: पता ही नहीं था, उसमें 1500 लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, किसी को पता ही नहीं था। तो ये जो बातें आई, तो इसलिए उनके जीवन पर एक गौरव गाथा उनकी मालूम पड़े, इसलिए हमारे देश में जनजातीय संग्रहालयों की ये जो योजना बनाई गई, इन तमाम योद्धाओं की जीवन गाथाएं वहां पर आए, लोग समझें कि कहां कहां किस किस क्षेत्र में हमारे किस किस महान योद्धा ने काम किया। तीसरा एक बहुत बड़ा संग्रहालय जो अभी बनने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, वो है युगे युगीन भारत, जो कि संभवतः विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा।
1: अगर हम मंदिरों की बात करें तो काशी, अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, उज्जैन, केदारनाथ, आज के जमाने में ये तीर्थ स्थान है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इकोलॉजी का एक रूप है, ये कंजर्वेशन का एक रूप है, ये अर्बन डेवलपमेंट का भी एक रूप है। इन सब चीजों में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है और ये हमारी संस्कृति के लिए कितने आवश्यक है?
2: हमारे यहाँ मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, हमारे यहाँ धर्मोदय और ज्ञानोदय दोनों का स्थान होता था। मंदिरों के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ होता था, उनके साथ शिक्षा व्यवस्थाएं भी होती थी, उनके साथ धर्म ग्रंथ भी जोड़े जाते थे, उनके साथ विद्वान जुड़े हुए होते थे, बहुत कुछ होता था, समाज कल्याण के भी काम होते थे। और समाज कल्याण जो है वो हमारे धर्म का आधार था, आज भी है। हम लोग दान और तप, त्याग, जो भारत की संस्कृति का भाग है, वो किसी देश में नहीं है। तो मंदिर जो होते हैं, आप बहुत सारे मंदिरों में जाएंगी तो आप देखेंगी कि बहुत कुछ उत्कीर्ण है, परंतु उसको डीकोड करने की भी आवश्यकता है। तो जितने भी म्यूजियम हमारे हैं उनको और अधिक एक्टिवेट किया जाना चाहिए, ये देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे देश का जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय यहाँ दिल्ली में ही जनपद पर है, बहुत कुछ एक्टिवेट करने की और ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हमें अपने संग्रहालयों को और अधिक पुष्ट करने की और अधिक ज्ञान से प्राणवंत करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि वो देश की आवश्यकता है। हम केवल ऐसा नहीं कि एक म्यूजियम में आप गए, आपने ये मूर्तियां देखी, ये पेंटिंग्स देखी, उसका आपने एक फिजिकल रूप देखा और फिजिकली समझ लिया, नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, आध्यात्मिकता है, दर्शन है, ज्ञान है। मूर्ति कोई एक सुंदर वैसे ही कोई पीस ऑफ आर्ट नहीं है, इट्स नॉट मेड बाय कनोइजर्स ओनली। कहीं किसी मूर्ति में आपको नाम नहीं मिलेगा स्कल्प्टर का, किसी मंदिर में नहीं मिलेगा कि स्कल्प्टर कौन था, वो मूर्तिकार जी, जो प्राणवंत कर देते थे और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती थी, फिर भक्तों को उससे शक्ति मिलती थी। तो मंदिर हैं, ये सब कुछ हमारी देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि जापान में एक को नोबेल प्राइज मिला है फास्टिंग पर, ईटिंग द सेल्फी या कुछ करके कुछ टाइटल था। हमारे यहाँ व्रत उपवास की परंपरा इतनी प्राचीन है, पर हम उसका साइंटिफिक रीजंस, उसका हमारे शरीर को क्या लाभ होगा, उसको हम नहीं बता पा रहे हैं।
1: शायद वो कहीं खो के रह गए हैं।
2: खोए नहीं है, उनको हमें पुनः एक ऐसे पटल पर लाने की आवश्यकता है जहाँ दुनिया देखे। जैसे मैं एक रूसी सहेली से बात कर रही थी एकादशी के विषय में, बता रही थी, शी सेड बट आई फास्ट ऑन एकादशी, तो शी वाज सो हैप्पी, बहुत उसको प्रसन्नता हुई बताने में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत भक्त हैं, भारत के मित्र हैं, भारत के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, और अधिक से अधिक यदि हम अपनी संस्कृति के विषय में लोगों को जागृत करें, उनकी इच्छा है, वो करना चाहिए।
1: यहाँ मुझे अंग्रेजी की एक बहुत खूबसूरत कहावत याद आ रही है, कहा जाता है एजुकेशन इज दैट विच कंपेल्स यू टू थिंक, नॉट मेयरली द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। शब्द शायद थोड़े इधर उधर होंगे, लेकिन ले दे के बात एक ही है कि आगे की पीढ़ियों को एजुकेट करने की जरूरत है। उसका एक माध्यम हो गया मंदिर, एक माध्यम हो गया संग्रहालय, और एक माध्यम और है विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे देश में स्थित है और दुनिया भर के विद्वानों को विद्वान बनाने में नालंदा का किसी ना किसी तरह से योगदान रहा है। आज फिर एक बार नालंदा की चर्चा उठती है जब हम संस्कृति की बात करते हैं, और डॉक्टर सच्चिदानंद आपके विचार मैं इस पे जानना चाहूंगा।
0: हम जानते हैं कि जब प्राचीन भारत के समय में भारत के विश्वविद्यालय ऐसे हुआ करते थे जहां पूरे विश्व से लोग आते थे, चाहे वो नालंदा हो, चाहे तक्षशिला हो, चाहे वल्लभी हो, चाहे उज्जैनी हो, तमाम विश्वविद्यालयों में पूरे विश्व से लोग आए, उन्होंने पढ़ाई की, और बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, कहीं 20,000 कहीं 50,000 इस तरह के वहां पर विद्यार्थी हुआ करते थे। और जब आप आज भी नालंदा के वो खंडहर देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये इतना विस्तृत, इतना बड़ा परिसर इसी विश्वविद्यालय का होगा, यानी कितने सारे यहाँ विद्यार्थी पढ़ते होंगे, किस किस तरह की यहाँ पर शिक्षा ली जाती होगी। तो ये हमारी जो हमारे ज्ञान परंपरा का ये वैभव रहा है। लेकिन ये भी सोचा गया कि जब हम हर बार बात करेंगे तो क्या हम हर बार नालंदा के खंडहर ही दिखाएंगे क्या आधुनिक भारत में, या सिर्फ हम बख्तियार

0: जी को ही कोसते रहेंगे कि उन्होंने ये सारा विध्वंस किया, या हम कुछ नवनिर्माण भी करना चाहते हैं, ज्ञान के नए केंद्र भी खोलना चाहते हैं, ऐसे केंद्र जहां पर ज्ञान की नई नई विधाओं का विस्तार हो, नई नई बातें वहां पर हो, नई नई चर्चाएं वहां हो। इसलिए आपने देखा कि आज जो नालंदा विश्वविद्यालय बना है वो अपने आप में एक नया विश्व के लिए एक नया प्रतिमान बना है, एक अपने आप में एक अपना एक स्टैंडर्ड उसने स्थापित कर दिया कि ऐसी वास्तु, ऐसा भव्य परिसर, ऐसी सुंदर वहां सुविधाएं कि वहां कोई भी शोधार्थी, कोई भी ज्ञानार्जन के लिए गया हुआ व्यक्ति अपने आप को उसके साथ जोड़ सके, उस पूरे परिसर की उसकी जो ध्वनि है, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, उसका जो स्पंदन है, उसके साथ वो जोड़ सके, इसलिए वो पूरा विश्वविद्यालय उस तरह से है। और वहां पे फिर नए नए विषयों के ऊपर शोध, नए नए विषयों के ऊपर नवाचार, ये सारी बातें वहां हो रही। और सिर्फ नालंदा का ही विषय नहीं है, देश में आज IITs की संख्या कितनी हो गई। आप जानते हैं आज से कुछ समय पहले तक सिर्फ 5 या 6 IITs हुआ करते थे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की भी संख्या बहुत सीमित थी। आप जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी बहुत सीमित संख्या में हुआ करते थे। आज देश में कितने सारे IITs खुल गए हैं, कितने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैं, कितने एम्स खुल गए हैं, इसके साथ ही आईसर, सोशल साइंस रिसर्च और साइंस रिसर्च, इस पर भी पढ़ाई करवाने के लिए संस्थान खुल गए हैं, जहां वहां पे एक नई तरह की पढ़ाई हो रही है। टेक्नोलॉजी के लिए IIIT कितने सारे खुल गए हैं, ताकि टेक्नोलॉजी की बात हो और श्रेष्ठतम बातों के ऊपर चर्चा हो, आधुनिकतम ज्ञान की चर्चा हो। कौन था, आप देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल 15 अगस्त को एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की कि भारत सेमीकंडक्टर की फील्ड में जाएगा, अपने चिप का निर्माण करेगा। कब सोचा था हमने कि भारत अपने चिप का निर्माण करेगा? आज आप जानते हैं 140 करोड़ का हमारा देश है। सबसे बड़ी लड़ाई पूरे विश्व में आज जो हो रही है वो डिजिटल डेटा की हो रही है। डेटा पे जिसका प्रभुत्व होगा वो पूरे विश्व पर राज करने वाला है, हम आप सब देखते हैं। तो आज भारत ने ये सोचा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हम अगर सेमीकंडक्टर का निर्माण करेंगे, चिप बनाएंगे, तो डेटा हमारा होगा, डेटा पर प्रभुत्व हमारा होगा, तो फिर हम पर कोई राज नहीं कर सकता, फिर हम दुनिया पर राज करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जो एक शिक्षा का एक, ये जो एक नवाचार है, इसको सोचने की जरूरत है। सिर्फ विश्वविद्यालय खोलना नहीं, विश्वविद्यालयों में कौन सा ज्ञान दिया जाएगा, किसी लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको एक तरह से सारे ज्ञान का अमलगमीशन कराती है। भारतीय ज्ञान परंपरा भी है और आधुनिकतम ज्ञान भी है, दोनों को साथ लेके चलती है। वहां आपको संस्कृति का ज्ञान भी है, वहां पर विज्ञान का भी ज्ञान है। तो जिस तरह से भारत की पुरानी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, जहां पर हम एक संपूर्ण विकास, विद्यार्थी के संपूर्ण विकास की बात करते थे, होलिस्टिक डेवलपमेंट की, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर हम उस होलिस्टिक डेवलपमेंट को पाना चाहते हैं। इसलिए हम हमारे शैक्षणिक संस्थानों को भी सुदृढ़ कर रहे हैं।
1: मेरा ख्याल है हर विषय को एक जगह मिल गई है हमारे विश्वविद्यालयों में, जो कि पहले भी हमारी संस्कृति का हिस्सा था, पहले भी परफॉर्मिंग आर्ट्स की शिक्षा दी जाती थी, चाहे कोई भी राजा हो, महाराजा हो, रानी हो, एक, क्योंकि अगर एक किंगडम किसी को चलाना है उसे हर तरीके का ज्ञान होना चाहिए।
0: नहीं, वैसा ही नहीं है। देखिए कंपार्टमेंटलाइजेशन खत्म हो गया। पहले अगर कोई बच्चा या बच्ची मेडिसिन का कोर्स कर रहा है तो फिर उसको इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो संगीत का एक ऑप्शनल ले ले या विजुअल आर्ट का कोई ऑप्शनल ले ले। आज ये सुविधा है ना कि सिर्फ आप कंपार्टमेंटलाइज नहीं है, आप सिर्फ मेडिसिन के विद्यार्थी नहीं है, आप संगीत भी सीख रहे हैं, आप विजुअल आर्ट भी सीख रहे हैं, आप सिरेमिक्स भी सीख रहे हैं, आप सिर्फ इंजीनियरिंग के विद्यार्थी नहीं है, आपको लगता है तो आप थोड़ा सा साहित्य का भी पढ़ रहे हैं कुछ तो भी। यानी आप क्या कर रहे हैं, आपकी सारी ज्ञान की जो चक्षु हैं, ज्ञान की जो सारी दिशाएं हैं, वो खुली रहना चाहिए। ये इतनी बड़ी बात है। आज भारत के पास पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा है और ये युवा ही हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है। आप भी जानते हैं कि अगर ये युवा सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, प्रेरित होंगे, तो ये पूरे विश्व पर एक तरह से अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं। तो इसलिए उन युवाओं को श्रेष्ठतम अवसर प्राप्त हो, ये बात हमने जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सोची और माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर नए नए कोर्सेज की बात करके, नवाचार की बात करके उनको इस दिशा में काम करने के लिए भी प्रेरित किया।
1: एक सवाल मेरा आप दोनों से है और वो ये है, रण उत्सव जैसे उत्सव जो हैं वो जीवन संस्कृति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, तो अगर मैं अपने देश के बाकी राज्यों की भाषाओं को, उनकी जीवन शैली को अपनाने की कोशिश करूं या फिर केवल समझने की कोशिश करूं, क्या वो मुझमें राष्ट्रीय जुड़ाव की एक अधिक भावना जागरूक कर सकता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: भारत में ये देखा जाता है, हम लोग भारतीय जहाँ भी जाते हैं कहते हैं मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं तमिल हूँ, परंतु हम सब भारतीय हैं, ये विलक्षण बात है। उसके पीछे बहुत सारा आधार है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, संपूर्ण भारत ज्ञान संस्कृति और बहुत सारे संस्कृति के आयाम

0: हम उनके माध्यम से एक हैं, स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। हम लोग बहुत सारे उत्सव मनाते हैं, स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। अनेक उत्सवों का उदाहरण आपको दिया जा सकता है। तो भारत कभी भी बटा हुआ नहीं था, और भारत की आत्मा उसकी संस्कृति है, उसका ज्ञान है, जिसके आधार पर भारत भारत है। और मैं तो एक बात और कहती हूँ कि लोग मुझसे कहते हैं, अरे इंडिया कहा या भारत कहा तो क्या फर्क पड़ता है? मैं कहती हूँ नहीं। फिर आज हम केवल नालंदा, तक्षशिला, उदयपुरी, विक्रमशिला इत्यादि थोड़े से जो हमें पता है उन विश्वविद्यालयों की चर्चा करते हैं, परंतु आप थोड़ा सा इतिहास के पन्ने उलट कर देखिए कि भारत में जो विज्ञान था, जो वैज्ञानिक दिए, वो किसने दिए? वो आश्रमों और गुरुकुलों ने दिए। जब अंग्रेज आए, ये तो हमारी प्राचीन परंपराएं रही, अंग्रेज आए तो उन्होंने सबसे पहले गुरुकुल सिस्टम खत्म किया। उस समय पूरा भारत 100% शिक्षित था। आज हम कहते हैं प्रतिशत ढूंढते हैं, कितना भारत कितने प्रतिशत शिक्षित है, तो एक सारी व्यवस्था जो है उसको बदल दिया गया। आज हम कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग और उसकी बहुत सारी बातें चर्चाएं करते हैं, परंतु गुरुकुल में जब विद्यार्थी जाता था तो पहले उसका पूरा टेस्ट लिया जाता था। हम कहते हैं द्विज, जो विद्यार्थी होता था उसको कुछ समय आचार्य केवल अपने मन में रखता था कि ये इसके अंदर क्या योग्यता है, और यथा योग्यता के अनुसार मुझे इसको किस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। तो वो उस समय था, आज भारत में उसके लिए हमें बहुत कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं। जो उस समय की व्यवस्थाएं थी वो चरमरा गईं या समाप्त कर दी गईं, कुछ भी कह सकते हैं। तो भारत का वैज्ञानिक योगदान हमारे गुरुकुलों और आश्रमों से भी आया है। विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे, गुरुकुल और आश्रमों की हम लोग चर्चा नहीं कर पाते हैं। आज यदि हमें अपने बच्चे को गुरुकुल के आश्रम में भेजना है तो हम सोचने में पड़ जाते हैं, परंतु उस व्यवस्था के प्रति हमारे मन में आदर तभी आएगा जब हम उनके इतिहास के विषय में जानेंगे।
1: ये जो आपने भाषा की बात कही उसमें मैं दो चीजें जोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि वो आज की चर्चा के लिए शायद वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये विचार आया माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में।
2: मैं इसी का जिक्र करने वाली थी। पहले हम कहा कहते थे यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
1: हाँ, नहीं, उन्होंने क्या किया उसमें, देखिए कि उन्होंने युग्म बनाए, दो दो राज्यों के युग्म बनाए। अगर आप गुजरात हैं तो गुजरात के साथ पांडिचेरी है, पश्चिम बंगाल है तो उसके साथ तमिलनाडु। यानी क्या किया कि इन प्रांतों के बीच में आपस में मेल जोल बढ़े, इन प्रांतों के लोग आपस में मिले, एक दूसरे के साथ बात करें, संवाद करें, कार्यक्रम आयोजित करें, तो उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को जानने की बात होगी। फिर काशी तमिल संगम प्रारंभ किया। ये काशी तमिल संगम अपने आप में एक बहुत ही अभिनव योजना थी, क्योंकि जैसे तीर्थ यात्रा के लिए तमिलनाडु के लोगों का काशी आना या काशी के लोगों का तमिलनाडु या अन्य दक्षिण प्रांतों में जाना एक आम बात थी, लेकिन एक दूसरे की संस्कृति को जानना, एक दूसरे की परंपराओं को जानना, साथ में रहकर उत्सव मनाना, ये पिछले कुछ सालों से काशी तमिल संगम के रूप में काशी में प्रारंभ किया गया, और उसमें इतनी अपार सफलता मिली, बहुत सारी बातें लोगों को काशी तमिल संगम के माध्यम से सीखने को मिली। अभी एक और नवाचार हुआ है, अलग अलग राज्यों के जो लोक भवन है जहां पर माननीय राज्यपाल रहते हैं, अब वो राज्यपाल उस राज्य के जो राज्य दिवस होते हैं उनको अपने लोक भवन में मनाते हैं। ये अच्छा। कितनी बड़ी बात है। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि केरल के माननीय राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश दिवस है, तो केरल के राज्यपाल अपने लोक भवन में मध्य प्रदेश दिवस मनाएंगे, और उस दिन मध्य प्रदेश का खान पान, मध्य प्रदेश की परंपराएं, मध्य प्रदेश का गीत, ये सब होगा। यानी केरल के लोगों को मध्य प्रदेश की संस्कृति के बारे में जानने समझने का अवसर मिलेगा, या पंजाब के। तो इस तरह से ये अलग अलग नवाचार करके देश को एकता के सूत्र में फिर से मजबूती से बांधे रखना, या तीन भाषा का अभी जो एक सूत्र आया है जिसमें तीन भाषाएं पढ़ना विद्यार्थी को अनिवार्य है, उसके आधार पर वो विद्यार्थी अपनी एक मातृभाषा भी ले सकता है, एक अन्य भारतीय भाषा भी ले सकता है, इसके आधार पर पढ़ाई करेगा विद्यार्थी, या मातृभाषा में शिक्षा भी, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की, तो मातृभाषा में शिक्षा करना, इंजीनियरिंग के भी कोर्सेस मातृभाषा में हो रहे हैं, मेडिकल के भी कोर्सेस मातृभाषा में हो रहे हैं। यानी आप देखिए कि हम कहां से कहां सोच है, इस बारे में विचार करना चाहिए था कि अब हमने अपने आप को कहां तक पहुंचा दिया है।
3: एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था, इसलिए आज सरदार पटेल की जयंती का दिन स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता का महापर्व बन गया है। जिस तरह हम 140 करोड़ देशवासी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26

0: महत्व हमारे लिए प्रेरणा की पल है, गर्व की पल है
1: जी। और इसी में एक बात मैं ये जोड़ना चाहूंगी, प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद ने ये कहा था कि द बेसिस ऑफ लिटरेचर इज लाइफ। सो जैसा हम जीवन को परखेंगे, देखेंगे, जानेंगे, अपनी संस्कृति को जानेंगे, वैसा ही हमारा साहित्य होगा। संस्कृति एक ऐसा शब्द है जिसकी कड़ी और कई विचारों से और शब्दों से जोड़ी जा सकती है। पहला सवाल जो है वो पीपल्स पद्मा पर है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि पीपल्स पद्मा लोगों का ध्यान केवल प्रसिद्ध व्यक्तियों से हटाकर उन लोगों की ओर ले जाता है जो समुदाय में चुपचाप महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और दूसरा विचार ये है कि अगर हमारी सांस्कृतिक विरासत हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई है तो उसके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है और इसे किस तरह हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचा सकते हैं?
2: देखिए, पीपल्स पद्मा की जो बात आपने कही, अभी तक ये जो राष्ट्रीय अलंकरण होते थे, चाहे वो हमारे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारे जो थे, ऐसा लोगों को लगता था कि एक निश्चित अभिजात वर्ग के लोगों तक ही वो सीमित थे, क्योंकि उनकी जो चयन प्रक्रिया थी वो भी बहुत पारदर्शी नहीं थी। और फिर जो लोग चुने जाते थे, बहुत बार ये धारणा होती थी कि अच्छा, इनको तो मिलना ही था क्योंकि ये एक उस अभिजात वर्ग से आते हैं। तो ये एक सामान्य लोगों से बिल्कुल कट के ये राष्ट्रीय अलंकरण रह गए थे। इसका जब से लोकतांत्रिकरण हुआ, आवेदन मंगाए जाने लगे, पोर्टल पे आवेदन आने लगे, और लोगों से कहा गया कि आप अपना आवेदन ऐसे व्यक्ति का भी नॉमिनेट कर सकते हैं जिन्होंने समाज के क्षेत्र में कुछ किया है, और ऐसे में हमने देखा कि ऐसे ऐसे समाज के क्षेत्र के लोग जो अपने कहीं दूर किसी अंचल में बैठकर अपना काम कर रहे हैं, जैसे बीज बचाने का काम करने वाली कोई हमारी माई है जो हमारे मौलिक बीजों को बचा रही है कृषि के लिए, ताकि हमारी जो मौलिक फसल है वो आगे जिंदा रहे, या कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल अपने सीमित संसाधनों से एक लाइब्रेरी का निर्माण कर रहे हैं, मतलब किसी को पेंशन मिली है वो पूरी की पूरी पेंशन झोंक के पब्लिक लाइब्रेरी बना रहे हैं, या कोई है जो हमारी पारंपरिक दवाइयों को अपने खर्चे पे ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिनके पास चिकित्सा की सुविधा नहीं पहुंची। ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढना जब शुरू किया गया और खोजा गया कि भाई ऐसे लोग जिनके पास कई बार पैर में पहनने की चप्पल तक नहीं है, वो लोग अपने पूरा का पूरा जीवन दूसरे के उत्कर्ष में लगा रहे हैं, तो क्या एक अच्छे देश का ये कर्तव्य नहीं कि हम उनको सम्मानित करें, हम उनको जनता के प्रकाश में लाएं कि जनता देखे उनको कि ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में। तो ये पीपल्स पद्मा की जो अवधारणा आई, और इसकी प्रक्रिया में हमने देखा कि एक ऐसा व्यापक समुदाय जुड़ा और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हाँ, ये हैं हमारे सही हीरोज, ये हैं हमारे राष्ट्र के नायक जिनका अनुकरण हमें करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी पहल, और इसलिए आप देख रहे हैं कि हर साल पद्मा के लिए नॉमिनेट करने वालों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे तमाम लोग इसमें रुचि ले रहे हैं। अब जो लोग हमारे पद्मा अवार्ड विनर्स हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में हैं, अब समाज में उनके प्रति देखने का नजरिया एकदम बदल गया है, एक अलग तरह का सम्मान है, और न सिर्फ उन अवार्डीज के प्रति बल्कि ऐसे अनेक लोग जो काम कर रहे हैं उनके प्रति भी समाज का एक बहुत सकारात्मक, बहुत सम्मानजनक नजरिया होगा।
1: जी डॉक्टर शशि, आप क्या कहेंगी?
3: जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले हम प्रसिद्ध लोगों को प्रसिद्ध कर रहे थे, अब हम समुद्र मंथन कर रहे हैं। समाज का आलोडन होता है और उसमें जो सेल्फ नॉमिनेशन है उसको भी एड कर दिया गया है, जिससे कि ये आत्मस्तुति नहीं है, परंतु व्यक्ति ने यदि कोई कार्य किया है तो देश के समक्ष आने का एक साधन बना है। तो इससे क्या है कि अनेक प्रकार के लोग जो अनजाने हैं, जिनको कोई जानता नहीं, जिनके कार्य को कोई नहीं जानता, वो उनके नाम उभर कर आ रहे हैं और उनको उससे मनोबल मिलता है। वो कोई एकमात्र अलंकरण नहीं होता, उससे व्यक्ति को मनोबल इतना मिलता है कि अच्छा, मुझे इस कार्य के लिए इतना बड़ा सम्मान दिया गया, अब मेरे ऊपर और बहुत बड़ा दायित्व आ गया है, मुझे और बढ़ चढ़ कर ये कार्य करना है, तो वो और बढ़कर करता है। दूसरा, आपने प्रश्न किया संस्कृति के विषय में, संस्कृति का अध्ययन जो है वो भी हमारी पीढ़ी को और करना पड़ेगा, हमारे से अगली पीढ़ी और उससे अगली पीढ़ी भी आ गई है। तो मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे ये ऐसा अनुभव होता है कि संस्कृति का अध्ययन करके ठीक से लॉजिकली और एक ज्ञान के आधार पर हम बच्चों को देंगे तो बच्चे तैयार हैं, अगली पीढ़ी तैयार है। यदि हमने नहीं दिया तो हम चूक जाएंगे, बहुत सा ज्ञान विस्मृत हो जाएगा।
2: 2022 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण की घोषणा की थी, उसमें एक प्रण था अपनी विरासत पर गर्व
1: जी।
2: तो यही मुझे लगता है कि बॉटम लाइन है, यही सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी विरासत पर गर्व करें और अपनी

0: पीढ़ी को भी एक ऐसा वातावरण दें कि वो भी अपनी विरासत पर गर्व कर सके, तो वो संस्कृति को आगे ले जाएंगी।
1: और वो विरासत पर गर्व तब होगा जब हमें उसकी महानता का ज्ञान होगा।
2: शायद हमारा एक गोल, हमारा एक इंटेंशन इस चर्चा के जरिए वही था कि अपनी विरासत की महानता को सामने लाया जाए। ये हमारी स्पेशल सीरीज है जन सेवा से देश सेवा, और संस्कृति के कई ऐसे विचार हैं जो शायद अगली वार्तालाप में हम जिनका जिक्र करेंगे। फिलहाल आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 24वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, भारत की विरासत, संस्कृति और आत्मविश्वास। इसमें भाग ले रहे थे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और भारतीय विद्या भवन के डीन प्रोफेसर डॉक्टर शशि बाला। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

दोस्तों, अभी आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा की विशेष श्रृंखला सुन रहे थे। एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। दोस्तों, अब आप आनंद उठा पाएंगे चंद हिंदी फिल्मी गीतों के साथ। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: सत्संगी
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, आप सब आनंद उठा रहे थे हिंदी फिल्मी गीतों के साथ एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। अब से बस कुछ ही देर में, यानी कि रात्रि के ठीक 8 बजे का वक्त रहेगा वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप का, तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: That is all for today, listeners. I hope you all enjoyed the songs today and that you'll catch us back tomorrow only on Akashvani Itanaga. This was your host, Sam, signing off for the day. Goodbye.
1: दोस्तों अभी आप आनंद उठा रहे थे पाश्चात्य संगीत के कार्यक्रम से और बस रात्रि के ठीक 9 बजे का वक्त रहेगा. जी हाँ फ्रेंड्स, आपके मन पसंदीदा कार्यक्रम भूले बिसरे गीतों का, तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को.

0: अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स तेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवेंजेलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।
1: HIV के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
2: HIV संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
1: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता।
2: HIV की जांच कराएं।

0: समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
1: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
0: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
6: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
7: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
6: बन गया बजट?
7: हाँ,
6: 5,000 बच गए।
7: तो नई साड़ी ले ले।
6: ना,
7: पिछले महीने तो ली थी।
6: एक और
7: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
6: बढ़िया,
7: जाओ भाई।
8: RBI कहता है,
9: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
10: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
11: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम में। ये भले ही भूले बिसरे गीत क्यों ना हो, लेकिन होते हैं। जी हाँ, सदाबहार नगमों का कारोबार। संगीत की दुनिया में कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सीधे हमारे दिल को छू जाते हैं। उनकी धुन में सुकून होता है, उनके शब्दों में एहसास होता है और उनकी आवाज में एक अलग ही जादू होता है। तो आज हम लेकर आए हैं ढेर सारे ऐसे ही प्यारे प्यारे सुकून देने वाले गीत। एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, चलते चलते कब वक्त हो गया आपके साथ चंद लम्हों का ये खूबसूरत सफर को संपन्न करने की पता ही नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, आप सब आनंद उठा रहे थे भूले बिसरे गीतों के सेगमेंट के साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। आप इसे सुन रहे थे एफएम बैंड के 103.1 MHz पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया कि चलते चलते वक्त हो चला है कि आज के इस चंद लम्हों के खूबसूरत सफर को संपन्न करने की हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे आज के इस तीसरे प्रसारण सेवा में पेश किए गए सभी कार्यक्रम बेहद पसंद आए होंगे। इन्हीं तरह के तमाम ज्ञानवर्धक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों को लेकर हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो जाएंगे कल सुबह के ठीक 5:48 पर। कल का सवेरा आपके जिंदगी में ढेर सारे खुशियां लेकर आए। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सेहतमंद रहे, और जी हाँ, शरीर के साथ साथ मन को भी तंदुरुस्त रखे। जी हाँ दोस्तों, और याद रखे, कल धूप से परेशान, आज तकलीफ बारिश से। शिकायतें बेशुमार है इंसान की आदत में, है ना दोस्तों? तो शिकायत करना छोड़िए और जो रब देता है उसे खुशी से अपनाइए। और जी हाँ, मैंने पहले ही कहा है, तन के साथ साथ

मन का भी बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और जी हाँ, अरुण एफएम को यूं ही प्यार बरसाते रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, और इन्हीं शब्दों के साथ संचार निष्पादक गोपाल राय, तकनीकी अभियंता गोलो कालो तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ आप सभी के अपने दोस्त, आप सभी के होस्ट आरजे अपर्णा आप सभी से रुखसत होने की इजाजत चाहती है। और आपके मंगलमय कामना करते हुए अब हम अलविदा कहेंगे। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद। और आगे के कार्यक्रमों के लिए एफएम गोल्ड को सुनना ना भूलें।

आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। संस्कृति के इस सफर में आज सुनेंगे एक नए सांस्कृतिक गांव की कहानी, एक कलाकार की अनुपस्थिति से बातचीत, शहर की छतों पर उगती हरियाली और कुछ ऐसे नाम जिन्हें हम आज याद करेंगे। सबसे पहले हमारा संपादकीय। कल 11 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2011 में एक प्रस्ताव पारित कर 11 अक्टूबर को बालिका दिवस घोषित किया। पहली बार ये दिवस 2012 में मनाया गया और इसकी जड़ें 1995 की बीजिंग घोषणा में हैं, जहां पहली बार बालिका को नीति विमर्श के केंद्र में रखा गया था। यानी दुनिया को ये मानने में भी सदियां लगी कि लड़की सिर्फ किसी की बेटी या बहन नहीं, अपने आप में एक स्वतंत्र नागरिक है। भारत की कहानी भी इस मायने में ज्यादा अलग नहीं थी और कुछ मायनों में अलग भी है। 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने लड़कियों का स्कूल खोला था। यानी बालिका शिक्षा का बीज हमारी ही मिट्टी में बहुत पहले पड़ चुका था। फिर भी आज के आंकड़े हमें एक आईना सा दिखाते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 2019-21 के अनुसार 20 से 24 साल की लगभग 23% लड़कियों का विवाह 18 साल से पहले ही हो गया था। NFHS 4 में ये आंकड़ा करीब 27% था। इन आंकड़ों में ये गिरावट सुकून तो देती है, पर हर चौथी पांचवी बच्ची की शादी का बचपन में हो जाना कोई छोटी बात नहीं। जन्म के समय लिंगानुपात में भी थोड़ा सुधार दिखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में शुरू हुआ और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं भी आई। स्कूलों में लड़कियों का नामांकन बढ़ा, मगर कार्यबल में उनकी भागीदारी का सवाल अब भी खड़ा है। सवाल अब सिर्फ स्कूल तक पहुंचने का नहीं, स्कूल के बाद आसमान तक पहुंचने का है। पढ़ने की आजादी के बाद चुनने की आजादी चाहिए, विषय चुनने की, पेशा चुनने की, साथी चुनने की और न चुनने की भी। हमारी संस्कृति में कन्या को देवी कहने की परंपरा है, पर देवी बना देना अक्सर इंसान ना बने रहने देने का तरीका भी बन जाता है। बालिका दिवस हमें याद दिलाता है कि उसे पूजा नहीं, पर्याप्त हवा, पर्याप्त पोषण, पर्याप्त पढ़ाई और बिना डर के एक रास्ता चाहिए। उसके हिस्से का आसमान उसे दान में नहीं मिलना चाहिए, वो उसका अपना है। हमें बस उसकी परवाज को संभालना है और उसके रास्ते की दुश्वारियां हटानी है। आसमान की बात के बाद अब बात जमीन की। एक ऐसी जमीन की जहां भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत एक गांव का रूप लेने जा रही है। नाम होगा कलाग्राम। इसकी परिकल्पना पर सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र द सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग यानी CCRT के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर से बातचीत की गुलनिगार चौधरी ने।

0: आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सीसीआरटी क्या है, इसका इतिहास क्या है और ये कला के किन क्षेत्रों में काम करता है?
1: देखिए, ऐसा है कि सीसीआरटी दैट इज सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग, नाम में ही बहुत कुछ है कि ये कल्चरल रिसोर्सेस तैयार करती है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो देश भर के स्कूल टीचर्स हैं, खास करके गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, उनको हम आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर, इसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ये कोर्स नहीं है। तो देश भर के जो स्कूल टीचर्स है उनको जब हम इसमें ट्रेन करते हैं तो वो हमारे एक कल्चरल एम्बेसडर्स बन जाते हैं। अब उनको सिर्फ आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये चारों स्पर्धाओं में सिर्फ उनको ट्रेनिंग करना, उससे संबंधित जो जो बातें हैं, फिर सारी कलाएं हैं, 64 कलाएं हैं, ललित कलाएं हैं, तो इनको लेकर भी क्राफ्ट है, फोक आर्ट्स है, इनको भी लेकर के डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, तो ये जो सारी बातें हैं जिनका संबंध आर्ट और कल्चर से है, और फिर ये आर्ट और कल्चर को हम एजुकेशन के भी साथ में जोड़ते हैं। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो सीसीआरटी ये आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर में कला के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से एक ऐसी पर्सनैलिटी टीचर की बनाते हैं कि वो सही में एक कल्चरल एम्बेसडर करके काम करता है। ये फिर हमारे देश भर में काम करते हैं, फिर वो अपने बच्चों को ये सारी बातें पढ़ाए जो उन्होंने ट्रेन किया है, वो बातें सारी वो बच्चों को तक पहुंचाते हैं। इसलिए देश भर में जो स्कूल के बच्चे हैं उन तक हमारी बात पहुंचती है। ये बहुत अहम, एक बहुत अच्छा एक कार्य है, ऐसा मैं समझता हूं। तो इन सारी बातों को लेकर हमारा एक सेंटर है, 1979 में शुरू हुआ था द्वारका में। यहाँ पर फिर हमारी एक बहुत अलग, बहुत सुंदर ऐसी एक बिल्डिंग यहाँ पर बनी। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बिल्डिंग बहुत ही शानदार है। यहाँ पे हम सब गतिविधियां करते हैं।
0: सीसीआरटी के द्वारा कला ग्राम नाम के इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं आप।
1: कला ग्राम तो निश्चित ही ये दो डिवीजन है और इसके पीछे सोच है। कला गुरुकुल जहाँ हम बात करते हैं, हमारा कहना है कि कला गुरुकुल में हम पूरा जो रिसर्च वर्क है, जो एकेडमिक फ्रेमवर्क है आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर का, हम बड़े डिटेल में यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग भी आएंगे जो बच्चों को भी पढ़ाएंगे, जो स्कॉलरशिप होल्डर्स को भी पढ़ाएंगे, फेलोशिप होल्डर्स को भी पढ़ाएंगे, टीचर्स को भी पढ़ाएंगे। एकेडमिक पार्ट जो होता है आर्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें हो सकता है कि आगे चल के कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हम इसमें आर्ट और कल्चर को लेकर शुरू करेंगे। और दूसरा हमारा कलाग्राम का, क्राफ्ट में, आर्ट्स में, तो उन लोगों को यहाँ पर बुलाने वाले हैं, उन लोगों के वर्कशॉप्स होंगे, वो लोग यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार करेंगे, वो लोग बच्चों को भी पढ़ाएंगे, वो प्रोडक्ट बच्चे भी तैयार करेंगे, टीचर्स भी तैयार करेंगे, उसका हम मार्केटिंग करेंगे और हम ये देखेंगे किससे कुछ रेवेन्यू जनरेशन भी होगा, ताकि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं आर्ट के क्षेत्र में उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी इंडिजिनस जो भी कलाकृतियां बनती है उसको भी कहीं कहीं मार्केट मिलेगा। तो कलाग्राम में हम जैसे है कि आर्टिजन क्लस्टर्स क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए हम बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में कुछ एग्जीबिशन और कल्चरल परफॉर्मेंस के लिए कुछ स्पेसेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हमने और एक सोचा है कि कल्चरल टूरिज्म और इंटीग्रेटेड जोन्स, इस प्रकार से हम उसमें तैयार करने की कोशिश करेंगे। उसका एक हमारा इकोनॉमिक मॉडल भी रहेगा जिसमें डायरेक्ट क्राफ्ट सेल्स, एग्जीबिशंस, कल्चरल फेस्टिवल्स, ऐसे सारी बातें रहेंगी। तो ये कला गुरुकुल और कला ग्राम ये दो लेवल पर काम करेंगे और दो लेवल पर काम करने के बाद में जब हम सोचेंगे तो हमको दिखाई देगा कि एक और जहां पर एकेडमिक है वहीं दूसरी ओर प्रैक्टिकल भी, तो दोनों बातों में ट्रेनिंग यहाँ पे सबको दी जाएगी। देश भर के जितने आर्टिस्ट हैं उन सबको फायदा होगा उसका, क्योंकि यहाँ से आर्ट वर्क जो बनने वाले हैं वो बेचे भी जाएंगे, जिसमें एक रेवेन्यू जनरेशन भी होगा।
0: डॉक्टर साहब, तो इस प्रोग्राम में इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप किस तरह रहेगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रेवेन्यू जनरेट किस तरह करेंगे आप?
1: हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक और जहां आप बोलते हो कि हम एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग बनेंगे या प्रैक्टिकली हम बहुत अच्छा बनेंगे, लेकिन इसमें ऐसा है कि अकेले के भरोसे तो होगा नहीं, तो पार्टनरशिप जो है वो भी करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में हमने सोचा है कि इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप जो है ये हमारे सोसाइटी के साथ किन किन के साथ हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो गवर्नमेंट की कल्चरल बॉडीज है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, फिर यूनिवर्सिटीज है और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, उनके साथ में भी हम मिलकर के काम करेंगे, हो सकता है उनके साथ हम एमओयू भी करेंगे। कुछ इंटरनेशनल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो बहुत अच्छा काम करती है आर्ट और कल्चर को लेकर, हम उनके साथ भी काम करेंगे, उनके साथ में शायद कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स भी हम बना सकते हैं। कुछ एनजीओज जो है जो हेरिटेज और आर्ट्स पर बहुत काम करते हैं, सीएसआर पार्टनर्स या प्राइवेट फाउंडेशन वगैरह जो होते हैं उनके भी साथ हम देखेंगे कि फंडिंग हमको सपोर्ट कैसा मिल सकता है, उनके साथ में एकेडमिक कोलैबोरेशन कैसा हो सकता है, एक कल्चरल एक्सचेंज।

0: प्रोग्राम्स हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो रेवेन्यू जनरेशन का है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और जब तक कि हम रेवेन्यू जनरेशन करेंगे नहीं तब तक ये ढंग से चलेगा नहीं। तो रेवेन्यू जनरेशन प्लान में भी एक्टिविटीज में भी हमने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है जिसकी फी रहेगी, टिकटेड कल्चरल इवेंट्स रहेंगे, फेस्टिवल्स रहेंगे, फिर कुछ कंसल्टेंसी भी रहेगी और कल्चरल सर्विसेज भी हम देंगे जिसका हमको पैसा मिलेगा, फिर पब्लिकेशन रहेगा, सेल्स ऑफ बुक्स रहेंगे, एजुकेशनल मटेरियल भी हम सेल करेंगे, फिर प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स कल्चरल प्रोडक्ट्स ये भी हम जो तैयार करेंगे उसका भी हम प्रमोशन करेंगे, कल्चरल टूरिज्म एक्टिविटीज को हम बढ़ाएंगे, परफॉर्मेंसेज जो है प्रोडक्शन हम हमारे बढ़ाएंगे।
1: कलाग्राम कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइए, और कितने समय में कला प्रेमियों को ये सब देखने का मौका मिलेगा?
0: हमारे सीसीआईटी जो जहाँ पर स्टैब्लिश है द्वारका में, तो करीब करीब 10 एकड़ लैंड में सीसीआईटी है, हमारे प्रांगण में हम वहाँ पर एक कलाग्राम वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन वर्क भी हमारा अभी करीब करीब खत्म होते आ रहा है, 80% काम हमारा हो गया है और हमारी जो एक्टिविटीज है वो अभी से वो शुरू हो जाएगी, मतलब वहाँ पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, बाकी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, ये सारा हमारा जो है ये एक्टिविटीज, एक्सटेंशन एक्टिविटीज वगैरह, फेलोशिप्स स्कॉलरशिप्स जो बच्चों को दी जाती है उनके साथ में लेकर जो एक्टिविटीज है वो सारा हमारा शुरू हो जाएगा। पब्लिक जो यहाँ पर आने वाली है उनको भी एक करीब करीब एक 6 महीने के अंदर में उनको यहाँ पे ये लोग विजिट कर सकेंगे और यहाँ पे उनको ऐसा लगेगा कि ये सही में एक बहुत बड़ा कल्चरल हब बनाया गया है सीसीआईटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा।
1: आर्टिजन्स के लिए स्टॉल्स या शॉप्स का क्या प्रावधान रहेगा कलाग्राम में?
0: अब इसमें क्या दो लेवल पर काम होगा, एक तो ऐसा है कि जो हमारे यहाँ स्कॉलरशिप फेलोशिप होल्डर्स जो लड़के रहते हैं जो काम करने वाले आर्टिस्ट है, एक अमेच्योर लेवल पर काम होता है, तो फेलोशिप और स्कॉलरशिप होल्डर्स जो बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों के लिए हमारी अलग स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि उनको हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए यहाँ पर हम एक्सपर्ट्स लोग लाएंगे, है ना, उनके लिए कुछ कोर्सेज शुरू करेंगे, ये एक लेवल का काम हो गया। दूसरा ऐसा है कि हमको सिर्फ इतना ही नहीं करना है, हमको प्रोफेशनल लेवल पर भी काम करना है, तो प्रोफेशनल लेवल पर जब काम होगा तो देश भर में क्राफ्ट के बारे में इतना वर्क लोग करते हैं जैसा बेल मेटल का वर्क है छत्तीसगढ़ में काम करते हैं, वो प्रैक्टिकल काम करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, उन लोगों के यहाँ पर वर्कशॉप्स होंगे। दूसरी बात ऐसी है कि एकदम हाई प्रोफेशनल लोग भी जो रहते हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा पेंटर है, बहुत बड़ा स्कल्प्टर है, वो यहाँ पे आके रह सकेंगे, वो यहाँ रहेंगे, वो काम करेंगे और उनको हम जगह भी देंगे और उनके माध्यम से बाकी लोग भी काम सीखेंगे, वो भी एक काम यहाँ पर होगा। दूसरी बात ऐसा है जो हम स्टॉल्स यहाँ पर तैयार करने वाले हैं, तो जो स्टॉल्स हम तैयार करेंगे वो स्पेशली रेंटल बेसिस पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऐसे देश भर में है लोग की जो प्रोफेशनल भी काम करते हैं, कमर्शियल लेवल पर काम करते हैं, उनको हम ये फैसिलिटी अवेल करके देंगे, उनको यहाँ पे स्टॉल्स के लिए जगह देंगे, लेकिन उसका एक रेंट रहेगा, उसके सिवा हमारा रेवेन्यू जनरेशन होगा नहीं।
1: डॉक्टर साहब जैसे आपने प्रोफेशनल्स का बताया अभी हमें, तो क्या इसमें छोटे स्तर पर काम करने वाले आर्टिजन्स को भी कोई सुविधा मिलेगी या कोई डिस्काउंट जैसी कोई चीज मिलेगी जिससे कि वो भी कला को आम लोगों तक पहुंचा सकें या अपनी कला को दुनिया को दिखा सकें?
0: बिल्कुल, हमने सोच के रखा है, क्योंकि सारे के सारे पैसा कमा लेते हैं ऐसा नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम उनका काम प्रोफेशनल रहता है, वर्क उनका बहुत शानदार रहता है, तो उन लोगों को हम सपोर्ट करेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग तो डाइंग आर्ट फॉर्म पे भी काम करने वाले हैं, बहुत सारे डाइंग आर्ट फॉर्म्स है भारत में, कई सालों से चल रहे हैं, वो लोग ऐसे आइसोलेशन में पड़े हुए हैं, उनको हम यहाँ पे लाएंगे, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे और वो आर्ट मरनी नहीं चाहिए।
2: आपने सुनी ये भेंट वार्ता साझा विरासत का गांव कलाग्राम। सौजन्य गुल निगार चौधरी, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश।

सार्थकता का एक पहलू ये भी है कि कला समुदाय के साथ कैसे चलती है, उसके साथ कैसे निभाह करती है। और इसी क्रम में हमारी अगली प्रस्तुति में हम मिलते हैं एक ऐसी कलाकार से जिनका काम अकेले में खामोशी में चलता है। आशिमा धीर सहगल की कला उन चीजों की हाजिरी लगाती रही है जो अब नहीं है, यानी अनुपस्थिति की हाजिरी। स्मृति अक्सर चीजों में नहीं, चीजों के ना होने में बसती है। आशिमा की कला इसी ना होने की पड़ताल है। गुजरा हुआ कल यहाँ एक धुंधला अक्स बनकर लौटता है, छूटी हुई

0: जगहें, मिटे हुए निशान और बीते रिश्तों की परछाइयां अलग अलग माध्यमों में दर्ज हो जाती हैं। उनकी कला हमें बताती है कि अनुपस्थिति भी एक उपस्थिति है और याद करना भी एक तरह की हाजिरी लगाना है।
1: मुझे आर्ट और कल्चर में बहुत दिलचस्पी थी शुरू से, जब से मैं छोटी थी। व्हाट वाज हियर, ये उसके बारे में है। डज मैटर हैव मेमोरी? तो मैं एक आर्ट रेजिडेंसी के लिए गई 45 डेज के लिए हिमालयाज में, विच इज वहां पर ना रॉरिक म्यूजियम है नगर में, और वहां पर इस रेजिडेंसी में मुझे बहुत सारी चीजें समझ आई। आई बिगन टू इन्वेस्टिगेट दोज थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स की तो मेमोरी होती है, पर मैं सोचती थी कि इतनी अच्छी ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स है यहाँ पर, सब गिरी हुई, कोई दिखता नहीं है इसको। वेरी ऑफन आई यूज्ड टू थिंक दैट, मतलब ये रिमेम्बर करते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ, सेलिब्रेशन हुई, और साथ में यंगर पीपल कभी भी देखते भी नहीं है उसकी तरफ। सो आई डिसाइडेड टू ब्रिंग दोज इन टू कंटेम्प्रेरी आर्ट।
2: जब मैं अपने ट्रेवल्स पे होती हूँ तो आर्किटेक्चर जब मैं देखती हूँ, उनकी डिटेल्स, जो मटीरियल और मैटर होता है जिससे वो बिल्डिंग्स बनी है, तो वो मैं कैप्चर करना चाहती हूँ। और बहुत बारी सोचती हूँ कि कैन द वॉल स्पीक, साथ में इन्वेस्टिगेट द आइडिया ऑफ डज मैटर हैव मेमोरी। तो ये स्लोली स्लोली मैं इन्वेस्टिगेट कर, जैसे मैं करती गई, मैंने रियलाइज किया कि मैटर तो बोल नहीं सकता, बट वी कैन स्टिल फाइंड आउट दैट मैटर हैज मेमोरी। बिकॉज जब आप कोई दरवाजे से आप जाते हो, स्पेशली नगर में, वहां जब वुड से और स्टोन से बना हुआ है, तो वो ना वेयर आउट हो जाता है। तो दोज आर द एविडेंसेस दैट मैटर डज रिमेम्बर, बिकॉज थ्रू दीज एविडेंसेस ऑफ चेंज ऑफ मैटर यू कैन मेक आउट दैट दे डू रिमेम्बर थिंग्स। एंड वेरी ऑफन यू गो टू अ टेम्पल, वहां पर भी आपको वाइब्रेशंस मिलती हैं। वहां पर जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव कम देयर, और उधर उन्होंने दुआएं मांगी हैं, विशेस मांगी हैं, तो जब आप जाते हो तो यू ऑटोमेटिकली गेट सम सुकून मिलता है। तो मैटर एक्चुअली रिमेम्बर करता है कुछ चीज, और वो हमारे को ट्रांसमिट करता है साइलेंटली। और फिर मैं लोगों को बोल रही हूँ कि ये मेरे आर्टवर्क है, उसमें देखो अंदर और पूछो कि इसमें क्या था, ये क्या था पहले और अभी क्या बन गया है। क्योंकि ना मैंने ये कपड़ा जौन सा है, ये मैंने अपने आप बनाया है, ये बनाया है वेस्ट सिल्क का, और वेस्ट सिल्क बहुत फ्रेजाइल होता है। सो मैं दिखाना चाहती थी कि मेमोरी भी बहुत नाजुक है चीजों की, ये सब चीजों की मेमोरी, सब मेमोरी फ्रेजाइल है, और ये सब मेरे आर्टवर्क में मैं नाजुकपन दिखाना चाहती थी। तो इसीलिए मैंने ऑर्गेन्जा यूज किया है क्लॉथ में, डबल ट्रिपल लेयर के, काफी लेयर्स के ऑर्गेन्जा किए हैं, और फिर हैंड स्टिचिंग करी है, और वो भी नाजुक दिखा रही है। और फिर ये सारी चीजें आप जब सब तरफ से देखोगे तो इनमें बहुत ज्यादा फ्रिजिलिटी या नाजुकपन है। तो मैंने ये सब चीजें जो फेंकी हुई चीजें थी उनको मैं ट्रांसफॉर्म करके आर्ट में लाना चाहती थी, ताकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि हमारे को मैटर जो होता है, चीजें जो होती है, उनका थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे जापानीज कल्चर में भी है, कुछ भी ओल्ड हो जाता है ना उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो पहला आर्टवर्क है ट्रेसेस ऑफ आर्किटेक्चर, उसमें दिख रहा है कि एक्चुअली बिल्डिंग्स काफी पूरी है, इमेजेस कंप्लीट। उसके बाद मतलब टू क्रिएट मेमोरी मैंने उनको थोड़ा सा डिसॉल्व किया है, ये डिसॉल्व किया है बाय बर्निंग, बाय स्टिचिंग, बाय यू नो फोटोग्राफिकली ट्रांसफरिंग।

अनुपस्थिति की हाजिरी। अभी आपने ये लघु प्रस्तुति सुनी। सौजन्य नेत्रा प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। अनुपस्थिति को रंग और आकार देना आसान नहीं, पर अब हम चलते हैं मौजूदगी की ओर, एक ऐसी हरी मौजूदगी की ओर जो शहर की छतों पर उग रही है और इसी निजी हरियाली के ठिकाने पर आधारित

0: हमारा लघु रूपक छत पर उगती जिंदगी।
1: सुबह सुबह छत का दरवाजा खुलता है
2: और कई मंजिला इमारतों के बीच एक छोटा सा हरा संसार मुस्कुराता है।
1: गमलों में तुलसी, पुराने टब में पुदीना, खाली पेंट के डब्बों में टमाटर,
2: कहीं ड्रमों में मौसमी सब्जियां, कहीं बोतलों में लटकती बेले।
1: ये छतें अब सिर्फ सामान रखने की जगह नहीं, मन के ठिकाने हैं।
2: पौधे सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वो इमारतों को ठंडा रखते हैं, धूल सोखते हैं, बारिश का पानी थामते हैं और शहरी गर्मी को घटाने में मदद करते हैं।
1: और सबसे बड़ी बात, ये हमें धैर्य सिखाते हैं, बीज रोपकर इंतजार करना, उस दौर में जब हर चीज इंस्टेंट है।
2: शुरुआत सिर्फ एक गमले से ही हो सकती है।
1: धूप कितनी आती है ये देखिए, हल्की मिट्टी, गोबर की खाद और रसोई का जैविक कचरा, और छत की सुरक्षा का ध्यान जरूर रखिए।
2: कंक्रीट के इस जंगल में अपना एक पेड़, अपना एक फूल, अपना एक छोटा आसमान। प्रसिद्ध अर्बन गार्डनर किशी अरोड़ा कहती हैं,
3: अगर आपके पास कोई भी पौधा नहीं है तब भी आप एक गार्डन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक्चुअली बीज पहले से ही होते हैं, किचन के अंदर हमेशा बीज होते हैं। आप अपना नमकदानी खोलिए, आपको उसी में 3 बीज मिल जाएंगे, धनिया, मेथी और राई, उसी से स्टार्ट कर लीजिए। और अगर वो नहीं तो टमाटर है, और टमाटर नहीं तो खीरा है। अगर आप इनकी सिर्फ एक स्लाइसेस काट के मिट्टी में लगा के गाड़ देंगे, आई प्रॉमिस यू एक सैपलिंग निकलेगा उसके अंदर से। तो हमको बीज ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, हमारे घर के अंदर ही है। शुरुआत में सबसे पहले 2 चीजें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो आप देखिए आपके घर में सूरज की किरणें किस तरफ गिरती हैं। अगर आपकी बालकनी है, सोचिए आप अपार्टमेंट में रहते हैं, अगर आपके पास बड़ा गार्डन है तब तो बात अलग है, क्योंकि वहां पे दोनों वर्जन होंगे, छाया वाला एरिया और धूप वाला एरिया। बट लेट्स हम अज्यूम करते हैं कि आप एक घर में हैं जहां बैल्कनीज हैं, तो आप तो पहले देखिए कि आपके सूरज कितना आता है। अगर खूब धूप आती है तो धूप वाले पौधे रखेंगे, फूल वाले पौधे रखेंगे, और अगर छाया वाला है तो छाए वाले भी पौधे हैं, हर तरीके के पौधे होते हैं। तो पहले सूरज की किरणें कितनी आती हैं, एंड दूसरी चीज मिट्टी बनाना, जो मुझे लगता है हम बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, नहीं करना चाहिए वो। अगर आपके आसपास कोई पार्क है, वहां के माली से बात करिए, उनको थैंक यू बोलिए और एक कट्टा मिट्टी लेकर आइए, और उस मिट्टी के अंदर आप अपने घर के थोड़े बेसिक मसाले डालिए, जैसे हल्दी और जरा सा दालचीनी का पाउडर और जरा सा काली मिर्ची की, कोई कीड़ा वगैरह लगा हुआ हो तो वो अपने आप ठीक हो जाए। घर में हमारे पास ऑलरेडी बहुत चीजें होती हैं, पर हम उसे देखते नहीं है, नजरअंदाज कर देते हैं। मिट्टी, धूप का जब ध्यान रख लें, उसके बाद आप पौधा लगाएं। धूप के जगह अगर मिल रही है तो वहां पे धूप के पौधे, बहुत धूप के पौधे होते हैं, और नहीं तो फिर इंडोर पौधे, छाए वाले, वो लगाएं। और मिट्टी में जब आप कभी घर में खाना बना रहे होते हैं तो थोड़ा याद रखिए कि घर में हमारे जितने भी खाने के छिलके होते हैं उनकी कॉम्पोस्ट हमें बनानी चाहिए। खाद बनाना बहुत सिंपल है। अगर आपके घर में किचन है और वहां पे कुछ भी खाना बन रहा है तो 2 चीजें, वहां पे जितने भी खाने के चीजें जो आप फेंकते हैं डस्टबिन के अंदर, प्लीज उसे मत फेंकिए। घर में हर किसी के दूध का बर्तन होता है, प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, कुछ भी होता है, आप उसमें कलेक्ट करिए एक दिन का। तो जैसे मेरे घर में सब्जियां बनी, एंड्स, ट्रिमिंग्स होता है, कुछ होता है जिसे हम ग्रीन पार्ट कहते हैं। मैं बहुत बेसिक एक डेफिनेशन बता रही हूं। मैं यहां पे नींबू हमेशा अलग कर देती हूं कि मैं अपने नींबुओं से एंजाइम्स बनाती हूं। तो पहली बात यह है कि जो भी खाने का जितना भी वेस्ट होता है डस्टबिन में मत डालिए, प्लीज एक डब्बे में इकट्ठा करिए। दूसरी चीज, घर में हर किसी के एक ढक्कन वाली बाल्टी जरूर होती है, वो बाल्टी लीजिए, उस बाल्टी के नीचे एक या तो टब रख दीजिए, एक ट्रे रख दीजिए, बड़ी थाल रख दीजिए, कुछ ऐसा रख दीजिए नीचे कि आप जब उस बाल्टी में छेद कराएंगे कारपेंटर से, चारों तरफ छेद करा लीजिए एयर फ्लो के लिए। हम उस बाल्टी में छेद करा रहे हैं चारों तरफ। हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर सबसे पहले अपने खाने का जो भी हमारा ट्रिमिंग्स होती है वो डालते हैं, और फिर ये नाइट्रोजन पार्ट हुआ, फिर डालते हैं हम कार्बन पार्ट, जितने भी सूखी हुई चीजें होती हैं। कहीं से डिलीवरी आती है चेक करिए, अगर वो पेपर कार्डबोर्ड रिसाइक्लेबल है तो उसको फाड़िए, छोटा छोटा करिए, जितने सूखे पत्ते गिर, थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट होइए, ये पत्ते डालिए, इसे हम कार्बन बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हम कर रहे हैं ग्रीन एंड ब्राउन का ऑल्टरनेटिव लेयर। पहले हमने खूब सारा नीचे ग्रीन ये ट्रिमिंग्स डाल दिया, फिर ब्राउन कार्बन डालिए, आपने ये ऑल्टरनेटिव लेयर बनाई और इस पे हल्का सा पानी का छिड़काव करा और फिर लास्ट में कार्बन डाल दिया और ढक दिया। थोड़े टाइम में ये कॉम्पोस्ट बन जाता है, इसको हिलाते रहना।

0: और इसको एक थोड़ा सा शेडी डार्क सेमी शेड एरिया में जहां पे आपको लगता है थोड़ा अलग कर सकते हैं उसे कर दीजिए, जिससे कि कई लोगों को जैसे रिगली चीजों से इनसे के अंदर लगेंगी थोड़े कीड़े जो अच्छे होते हैं हमारे लिए बहुत, तो इसको थोड़ा सा कोने में करिए और ये डेली फॉलो करिए तो आपके पास कॉम्पोस्ट थोड़े टाइम में रेडी हो जाएगी। नहीं बनाना चाहते कॉम्पोस्ट और आपको थोड़ा अजीब लगता है तो जिस गमले में या जगह पे पौधा लगा हुआ है उसके साइड में आप थोड़ा सा खोद के ये खाने का जो मिक्सचर है अंदर डाल के मिट्टी से ढक दे, अर्थ वो अपने आप उसको तोड़ेगी और नीचे पोषण देगी इन सब पौधों को। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कभी चावल बनता है, दाल बनता है, इनको धोइए, इनका पानी आप फेंकिए मत, इनका पानी आप अपने पौधों को दीजिए, उसे थोड़े दूसरे पानी में डाइल्यूट करें, डाल दें। बहुत सारे सिंपल तरीके हैं अपने पौधों को पोषण देने के, बट जो मेन चीज है पहले धूप देखिए, उसके बाद आप मिट्टी देखिए और फिर हम डिटेल में जाते हैं कि अच्छा इसको और कैसे बड़ा करें। पर ग्रोइंग अ प्लांट बहुत सिंपल है, जिसे हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। मेरा छत ना, जिसे बोलते हैं एक बायोडाइवर्स एरिया है, मेरे छत पे पेरेनियल्स हैं जो पूरे साल उगते हैं, थोड़े ऑर्नामेंटल्स भी हैं, सब्जियां हैं, सीजनल है, सीजनल फूल है। जैसे अभी मौसम बदल रहा है, एक गार्डनर के लिए ये बहुत अच्छा मौसम होता है क्योंकि इस मौसम में प्रति मत सब कुछ उगता है। गर्मी से हम थोड़ा परेशान होते हैं बट ये मौसम बहुत अच्छे वाला मौसम है जहां धूप भी होती है और एक हल्की सी ठंडक भी होती है रात में। एक चीज जो मैं अपने गार्डन में ऊपर फॉलो करती हूँ, मैं कोई भी केमिकल नहीं डालती हूँ, मुझे पेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक चेन है जो हमको जिस दिन समझ आ गई तो हम शायद इतना पेस्टिसाइड नहीं यूज करेंगे। अगर छिपकली है तो वो एक कीड़े को खाती है तो वो कीड़ा उसका खाना बनता है और वो हमारे को उस कीड़े से बचाती है, तो ये एक चेन है जिसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए और उसको एक्चुअली रहने देना चाहिए। जितने बर्ड्स इंसेक्ट्स आपके टेरेस पे होंगे उतना अच्छा बायोडाइवर्सिटी होगा, उतना अच्छा फ्लोरा फौना होगा और वो बहुत हेल्प करता है पौधों को खुश रहने में। ये ना सिर्फ मेरे को खाना और रिटर्न में हर डेली कुछ ना कुछ देता है, ये मेरी मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छा खुश रखता है। मतलब मुझे शायद अब इंसान इतने पसंद नहीं है जितने मुझे पौधे पसंद है।
1: ये शहर के बीच प्रकृति के लिए बचाई गई एक छोटी सी जगह है
2: और शायद ये भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जीवन के साथ सह अस्तित्व की संस्कृति।
1: छत पर उगती जिंदगी के साथ संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
2: और मैं प्रांजल।

हरियाली की इस बात के बाद अब पतझड़ का वो हिस्सा जब हम उन्हें याद करते हैं जो जाकर भी कहीं नहीं गए। कुछ जीवन समय से बड़े होते हैं, कुछ राग रंग शब्द अपने रचयिता के जाने के बाद भी हमारे सांस्कृतिक जीवन में बजते खिलते और दर्ज होते रहते हैं। आज के स्मृति शेष में हम याद कर रहे हैं भारतीय कला संस्कृति की कुछ ऐसी विभूतियों को। सेमनगुडी श्रीनिवास अय्यर, जिनकी गायकी में कर्नाटक संगीत की परंपरा, अनुशासन और भाव संपन्नता का एक अद्भुत संगम दिखाई देता है। उस्ताद अब्दुल करीम खान, जिनकी गायकी ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्वर की ऐसी कोमल और भावपूर्ण दुनिया रची जिसकी छाप आगे की पीढ़ियों तक पहुंची। राजा रवि वर्मा, जिन्होंने भारतीय पौराणिक और सांस्कृतिक कल्पना को आधुनिक चित्रकला के माध्यम से एक बिल्कुल नई दृश्य भाषा दी। उस्ताद अली अकबर खान, सरोद का वो महान साधक जिनकी साधना ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व के मंचों तक पहुंचाया। बेगम अख्तर, जिनकी आवाज में गजल, ठुमरी और दादरा केवल संगीत नहीं, एक पूरा भाव जगत बन जाते थे। इन सभी को याद करना सिर्फ श्रद्धांजलि देना नहीं है, ये अपनी सांस्कृतिक स्मृति को फिर से सुनना है, गुनना है। संस्कृति भारती के इस अंक का समापन हम बेहद भारी मन से कर रहे हैं। बीती 8 अक्टूबर को हिंदी और मराठी रंगमंच और सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर इस फानी दुनिया से गुजर गए। उनकी उम्र 75 साल की थी। में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

0: सिर्फ अभिनय के लिए ही नहीं याद किया जाएगा। सूखे से जूझते किसानों के लिए काम हो या करगिल युद्ध के समय सैनिकों के बीच होना, और हाल ही में सीमा पार गोलाबारी से प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाना, उनके संवादों की धार हमें हमेशा याद रहेगी। और ये भी कि वो एक ऐसे शख्स थे जो अपने कहे को जमीन पर निभाते थे। कला की सबसे बड़ी ताकत सच्चाई है, चाहे वो चीख में हो या खामोशी में। नाना पाटेकर ने ये बार बार साबित किया। पत्रिका की ओर से हम इस महान कलाकार को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी के साथ संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
2: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली।
3: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर के हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात के निवासी कैप्टन स्मिथ पर 30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन स्मिथ के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर तक आवश्यक नगद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूद तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा। सरकार ने सोशल मीडिया के उस भ्रामक पोस्ट को खारिज कर

किया है, जिसमें ई कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं पर 5% का नया माल और सेवा कर जीएसटी लगाने की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि ये दावा गलत है। उसने बताया कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया कि 57वीं जीएसटी परिषद की सिफारिश के बाद जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत कर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आशुतोष मिश्र। मुख्य समाचार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर पर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में 15 लोगों की मौत और कल इंदौर में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
2: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि भारत और अफ्रीका वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में कम प्रतिनिधित्व वाले नहीं रह सकते। अदिस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों को याद किया।
3: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली।
4: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
1: अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि पूरे अफ्रीका में भारत के सहयोग से 4.5 अरब डॉलर की लागत वाली 220 से ज्यादा विकास परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। यह हमला कैप्टन स्मिथ मच्छर पर किया गया था। गुजरात के निवासी कैप्टन स्मिथ मच्छर पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमरीकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह सोमवार से साइप्रस और ग्रीस का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान समुद्री सुरक्षा और रक्षा औद्योगिक सहयोग जैसे मुख्य क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 12 और 13 अक्टूबर को साइप्रस की यात्रा के दौरान श्री सिंह साइप्रस के रक्षा मंत्रालय के सचिव के साथ बैठक करेंगे। इस यात्रा से विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग सशक्त होने की आशा है। ग्रीस में रक्षा सचिव वरिष्ठ रक्षा और सैन्य नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करेंगे। इस यात्रा का काफी महत्व है। भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत अपने सहयोगियों के साथ रक्षा और सामरिक सहयोगों को और सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोस और उसके

0: बड़े घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और राजनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ देश को विश्व से अलग थलग करना नहीं है, बल्कि इसमें महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों के डिजाइन, विकास, निर्माण, रखरखाव और उन्नयन के लिए घरेलू क्षमताओं का निर्माण करना शामिल है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में 15 लोगों की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिज़्या के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्षों से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। यह समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमेरिकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के वित्त विभाग ने कल रात इस फैसले की घोषणा की। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेन देन को अधिकृत किया गया है। ईंधन आपूर्ति में व्यवधान के कारण वैश्विक स्तर पर डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। यूक्रेन के हमलों से रूस की तेल रिफाइनरियों में उत्पादन प्रभावित हुआ और इस कारण डीजल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए गए। वहीं यमन के ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती द्वारा सऊदी अरब में किए गए हमलों में ईंधन आपूर्ति को और भी बाधित कर दिया है। मीडिया से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि रूस तुरंत 3 लाख टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। इसके बाद नवंबर में 5 लाख टन, उसके बाद 1 मिलियन टन और रूसी रिफाइनरियों की स्थिति के आधार पर अतिरिक्त 3 मिलियन टन की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आपूर्ति साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका का नियंत्रण डीजल की कीमतों को कम करने में मदद करेगा। उन्होंने अमेरिका के किसानों, पशुपालकों और ट्रक चालकों के लिए ईंधन की लागत कम करना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: पाकिस्तान में पिछले एक दशक में दर्ज ईश निंदा मामलों का रिकॉर्ड आपराधिक कानून के अंतर्गत धार्मिक आरोपों से मानवीय जीवन पर खतरे को उजागर करता है। इस वर्ष इस तरह के मामलों की संख्या और बढ़ गई है। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे आरोप फुसफुसाहट से शुरू होकर कारावास, मृत्युदंड या परिवारों के घरों के बाहर भीड़ के जमावड़े में बदल सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में ईसाई, हिंदू और अहमदी समुदायों के लिए खतरा कानून के बाहर काम करने वाले चरमपंथियों से कहीं अधिक व्यापक है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के इश्निंदा प्रावधानों का बार बार व्यक्तिगत दुश्मनी, संपत्ति विवाद और अन्य प्रकार की सामाजिक शत्रुता को निपटाने के लिए दुरुपयोग किया गया है। ईसाई, हिंदू और अहमदी समुदायों से जुड़े मामले दर्शाते हैं कि कैसे धार्मिक आरोप गिरफ्तारी, कारावास, मृत्युदंड या भीड़ हिंसा में परिवर्तित हो सकते हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला कल इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। कल शाम रांची में खेले गए दूसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया था। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया के बरहम में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर पर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में 15 लोगों की मौत और कल इंदौर में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मुकाबला। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।